100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि और विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि, तदनुसार 5 जून 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की यह सभा आरंभ होती है।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

समय है ईश्वर की भक्ति से स्वयं को जोड़ लेने का। तो आइए आपको ले चलें कार्यक्रम पुष्पांजलि में, और आज इसमें आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त सुस्मित 100.7 FM रेनबो पर। और इस कार्यक्रम की प्रथम पुष्पांजलि समर्पित है प्रथम सुपूजित भगवान श्री गणेश को इस वंदन के साथ।

भक्ति का भाव जिस मन में हो वहां स्वयं ईश्वर का वास होता है, क्योंकि ईश्वर वहीं रहते हैं जहां प्रेम हो, दया हो, करुणा हो और किसी भी विषय के प्रति आसक्ति न हो। तो ईश्वर प्राप्ति की कामना के साथ प्रेम भाव से जुड़े ईश्वर की भक्ति से

यदि हम ध्यान दें तो हमारे जीवन का अधिकांश दुख मानसिक ही होता है और हम इसी दुख से परेशान रहा करते हैं। इसका जड़ हमारा चंचल मन है और जब हम इस बात को समझ पाते हैं तो हम जुड़ जाते हैं ईश्वर की भक्ति से, जिससे हमारा ये मन चंचलता से मुक्त होकर ईश्वर से जुड़ जाता है।

इस भजन में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं, तो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है।

हम जिसका बार बार चिंतन करते हैं उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, उसके लिए हमारा मन पिघलने लगता है। जैसे पिघले लोहे को जिस सांचे में डालते हैं वो लोहा ठीक उसी सांचे में ढल जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे मन का लगाव भी जिस भी वस्तु या व्यक्ति से होता है उसी का गुण हमारे मन में आ जाता है। तो क्यों ना हम अपने चिंतन को जोड़ लें ईश्वर से।

100.7 FM रेनबो पर मेरे यानी सुस्मित के साथ आप प्रभु की भक्ति के अमृत रस का रसपान कर रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि में। तो आइए संपूर्ण सृष्टि की भलाई के लिए विष को अपने कंठ में धारण करने वाले भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें इस भजन के साथ।

जीवन में परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं और संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, उन पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। असल में परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। तो इस बात को मन में धारण कर जुड़े रहें ईश्वर की भक्ति से।

हमारे अनेक यत्न करने पर भी हम ईश्वर के निकटता को नहीं पाते। और यदि इसका जवाब हम ढूंढें तो हम पाएंगे कि बिना पुरुषार्थ के भक्ति बेकार है। यदि ईश्वर को पाना है तो पुरुषार्थ करते हुए परमात्मा की आराधना करनी होगी, तभी हमारी भक्ति सफल होगी।

ईश्वर की भक्ति हमारे मन को पवित्रता से भर देती है। इसलिए अपने मन में सदैव भक्ति को धारण कीजिए और अपने मन और कर्म को सही दिशा में रखकर जुड़े रहिए उस ईश्वर से। इसी कामना के साथ मुझे यानी सुस्मित को अनुमति दीजिए कार्यक्रम पुष्पांजलि से, लेकिन आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विश्व पर्यावरण दिवस पर आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा। इसी क्रम में प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुकरैल वन क्षेत्र से इसका शुभारंभ करेंगे। उनके नेतृत्व में पूरे राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधरोपण किए जाएंगे। इसके लिए सभी विभागों व मंडलों के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। पर्यावरण दिवस पर वन विभाग की तरफ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्य आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज लखनऊ छावनी स्थित दिलकुशा लॉन में आयोजित होने वाले बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 में पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने की पहल का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड और लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञों का संगम देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी सुरक्षा बल की वास्तविक शक्ति उसके प्रशिक्षित, अनुशासित और तकनीकी रूप से दक्ष कार्मिक होते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक और तकनीक आधारित बनाया जाए, ताकि सुरक्षा बलों के जवान हर परिस्थिति में प्रभावी और त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम हों। कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी पीएसी, एसडीआरएफ तथा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, प्रशिक्षण, अवसंरचना, विकास एवं भावी कार्य योजनाओं के विस्तृत समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ प्रदेश की सुरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और इन्हें भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने पीएसी बल का गणवेश सिविल पुलिस से अलग करने की आवश्यकता भी जताई। मुख्यमंत्री ने

कहा कि आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 624 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इंटरव्यू 15 जून से प्रारंभ होकर 27 जून तक विषयवार आयोजित किए जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र आज से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवक्ता पद की लिखित परीक्षा 9 एवं 10 मई 2026 को आयोजित की गई थी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 9 बजे अखबारों के सुर्खियों के साथ प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

प्यार एक एहसास जो शब्दों से परे है, लेकिन जब उसे सुर मिल जाते हैं तो वो गीत बन जाता है। तो दोस्तों, सुर में ढले कुछ ऐसे ही तराने लेकर मैं सुस्मित आ चुका हूं प्रोग्राम सदाबहार गीत के साथ। तो आइए कुछ प्यारे प्यारे गीतों के साथ, इन मधुर नगमों के साथ डूब जाइए मोहब्बत और खुशी के इस सुरीले सफर में इस गीत के साथ।

कभी-कभी बिना बोले भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। आंखों की गहराई से, खामोश निगाहों से और उन अनकहे लफ्जों से जो दिल तक सीधे उतर जाते हैं। जब दो दिल एक दूसरे की धड़कनों को सुन सकते हैं, तब फिजाओं में बस एक ही बात गूंजती है।

0: है बब्बर जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की

कभी कभी दिल किसी ऐसी उड़ान को तरसता है जहां पंख जरूरी नहीं होते, बस भावना ही काफी होती है। मन जो किसी रंग में घुल जाए, किसी हवा के संग उड़ चले और किसी की मुस्कान से अपनी राह बना ले। जी हां, अगला गीत उसी मन की कहानी है जहां कोई कहता है पवन के संग उड़ने की बात। एक अबोध निश्चल प्रेम जिसमें ठहराव की चाह नहीं, बस साथ चलने की मासूम जिद।

कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, आंखों से, एहसासों से और धड़कनों से जुड़ते हैं। इनमें ना कोई वादा होता है, ना कोई शर्त, बस होता है समर्पण। तो आइए खो जाते हैं प्रेम की रूहानी गहराइयों में इस गीत के साथ।

जब दिल में कोई बस जाए तो उसकी एक मुस्कान जिंदगी का मकसद बन जाती है। प्रेम तब सिर्फ चाहत नहीं रहता बल्कि एक प्रार्थना बन जाता है। वो साथ हो तो सुकून है, वो दूर तो तड़प भी इबादत बन जाती है। ये गीत उस दिल की आवाज है जो टूट कर भी सच्चा रहना चाहता है।

हर मुसाफिर को किसी न किसी छांव की तलाश होती है, कोई ऐसा मोड़ जहां कुछ पल ठहर कर दिल को सुकून मिल जाए। इश्क भी एक सफर है, कभी बेपरवाह तो कभी संजीदा, लेकिन ऐसे सफर में डर भी है कि कहीं ये ठहराव सिर्फ एक पड़ाव ना हो, कहीं वो मुसाफिर जो अब तक ख्वाब बना हुआ है अचानक अलविदा ना कह दे। और यही सोच दिल को डराती है, घबराती है।

कभी एक नज़र सैकड़ों अल्फाज कह जाती है और कभी किसी की आंखों का काजल दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। ये है वो जादू जो नज़रों से दिल तक पहुंचता है और फिर वहीं बस जाता है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: कभी कभी दिल चुराने के लिए ना आवाज चाहिए होती है और ना ही अल्फाज। जी हाँ, बस एक नजर, एक इशारा और ये दिल, जी हाँ, बे आवाज गिरफ्तार। तो आइए हम भी गिरफ्तार हो जाते हैं इस दिल के नाम।

जब दो दिल एक साथ धड़कते हैं, जब दो आंखों में एक ही सपना बसता है, तब प्यार का एक नया रंग उभरता है। जहां मेरा हर ख्वाब तेरा हो जाता है और तेरा हर सपना मेरा। यही तो प्यार की सबसे खूबसूरत परिभाषा है। तो आप भी इस खुशी के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल अब मेरे चलने का समय आ गया है प्रोग्राम सदाबहार गीत से, लेकिन समाचारों के बाद आपसे फिर मिलूंगा गुड मॉर्निंग लखनऊ के मंच पर। तो बस आप सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, जिस पर पहुंच रहा है ये गीत। और इस गीत के साथ ही साथ बस ये प्यार यूं ही बनाए रखिए और जुड़े रहिए 100.7 एफएम रेनबो के साथ।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा।

0: जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल

0: एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधान

0: प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे, लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल, सांस्कृतिक गतिविधियां और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियां और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: और ये लीजिए, आ चुके हम आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। गुड मॉर्निंग सुस्मित।
3: गुड मॉर्निंग डोली, और गुड मॉर्निंग सभी साथियों को भी भाई बहुत प्यार से इस खूबसूरत सी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो तपिश थी उससे थोड़ी सी राहत देता हुआ ये मौसम और उसमें खूबसूरत सी सुबह आप सभी को बुला रही है अपने साथ जोड़ने के लिए।
2: तो आपको बुला रही है ना सिर्फ अपने साथ जोड़ने के लिए, बल्कि धूम मचाने के लिए और ढेर सारे गाने गाने के लिए।
3: क्या बात है रोली, वाह,
2: है ना?
3: बिल्कुल।
2: तो अब क्यों ना, जब इतना अच्छा सा मौसम है और सब कुछ इतना प्यारा सा है, तो एक प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, क्योंकि गुड मॉर्निंग लखनऊ शुरू हो चुका है। ढेर सारी जानकारियां तो पहुंचेंगी, लेकिन गाने भी तो पहुंचेंगे ना।
3: बिल्कुल सही कहा रोली। तो आइए जुड़ते हैं इस गीत से, बढ़ते हैं आगे के सफर पर।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ सिर्फ और सिर्फ 100.7 एफएम रेनबो पर।
1: आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
2: रोली, मॉर्निंग मंत्र का इशारा हुआ है। मॉर्निंग मंत्र एक ऐसी बात लेकर आता है जो हम तक बहुत एक ऐसी बात पहुंचाती है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक संजीवनी का काम करती है, अगर हम उसे समझ सकें और अपने जीवन में उतार लें।
3: बिल्कुल सही बात है, आपका इशारा है। और वैसे भी आज एक खास दिन है, आज है विश्व पर्यावरण दिवस, जो हमारे और आप सबके लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि हमारा पर्यावरण ही है जो कि जिसमें हम रहते हैं और हमें प्राणवायु मिलती है, हमारी जरूरतों की सारी चीजें यही सही मिलती है, तो हमारे लिए हो जाता है ना कितना जरूरी।
2: बिल्कुल सही कारोली, और इसी जरूरी बात के साथ ही साथ हमको एक और जरूरी बात आप तक पहुंचानी मॉर्निंग मंत्र की भी, और मॉर्निंग मंत्र में आज का मॉर्निंग मंत्र आपसे कह रहा है इसी पर्यावरण की बात।
3: धरती हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है लेकिन हमारा लालच नहीं।
2: अब सवाल ये उठता है कि हमें ये क्या हम सोचते भी हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कहीं हमारा लालच तो नहीं, कहीं जो भी चीज़ें हैं वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं, जो हम लेते जा रहे हैं इस पर्यावरण से, इस धरती से, और वापस करने को कुछ भी तैयार नहीं, ये सोचना होगा। और यही बात कह रहा है आज का मॉर्निंग मंत्र।
3: तो बस इस मॉर्निंग मंत्रा को अच्छे से कहते हैं ना कि धारण करिए अपने अंदर, सोचिए इस बारे में, और फिलहाल एक ट्रैक से जुड़ते हैं और इस ट्रैक के बाद वापस आते हैं हमारे आज के मुद्दे के साथ।
2: बिल्कुल, और एक बात जिससे जुड़ेंगे आप भी।

0: मुद्दा आज का।
1: बोली कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि क्या ये काम अकेले हम कर सकते हैं, अकेले तो नहीं हो सकता साहब, इतना बड़ा काम है और इसके लिए तो बहुत लोग चाहिए, बड़ा एक ग्रुप होना चाहिए, एक ऐसा कुछ हो जहां पर ढेर सारे लोग हों, तभी ये चीज़ संभव हो सकती है।
2: बिल्कुल सुस्मित सही कहा, अक्सर ऐसा होता है कि हम कई काम ऐसे होते हैं हमसे अकेले ठान नहीं पाते, हम सोचते तो हैं कि हम कर लेंगे लेकिन अंटिल अनलेस हमारे साथ एक बड़ा ग्रुप अटैच ना हो जाए, कई

0: सारे लोगों की मेहनत ना हो हमारे साथ तो वो काम नहीं हो सकता।
1: तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या कोई काम जो है, कोई भी ऐसी सोच के साथ एक बढ़ने की जो एक हमारी कोशिश होती है, उसमें क्या एक आदमी अपनी कोशिश नहीं कर सकता, एक आदमी अपनी पहल नहीं कर सकता?
0: आपका इशारा किस ओर है मैं समझ गई। आप इशारा कर रहे हैं शायद पर्यावरण में अपना एक छोटा सा योगदान देने की।
1: बिल्कुल सही कारोली, और यही है हमारा आज का मुद्दा कि साहब हम में से हर एक कोई ये क्यों सोचे कि और लोग मिलेंगे, ढेर सारे लोग होंगे तभी कुछ होगा। क्या कोई एक व्यक्ति अपनी छोटी सी पहल पर्यावरण बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इसको नहीं सोच सकता क्या? और अगर इस बारे में सोचे और कुछ करे तो कैसे?
0: आपको अगर लगता है कि क्या एक व्यक्ति की छोटी सी पहल पर्यावरण बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, अगर हाँ तो वो कैसे निभाया जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है, ये हमें बताइए fmakashwanilakhnau@gmail.com पर।
1: बिल्कुल, ये वो रास्ता है, ये वो पता है जहाँ पर आपको पहुँचना है अपनी बातों के साथ, और हमें बताना है कि आप क्या कुछ सोचते हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए कि क्या एक व्यक्ति की छोटी सी पहल पर्यावरण बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
0: बिल्कुल, तो जनाब आप हमें अपने मैसेजेस भेजिए, और तब तक हम चलते हैं एक ट्रैक की ओर, और ट्रैक के बाद वापस आते हैं, कार्यक्रम जारी रखते हैं, और ढेर सारी जो जानकारियां और बातें हैं वो तैयार हैं। बिल्कुल, सो फिलहाल सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो जो है धड़कन
1: लखनऊ की।

0: और 8:35 और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी बातों की, और उनमें सबसे पहली बात ये कि हमारे कुछ साथी जो हैं वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि आज बिजली उन्हें थोड़ा सा परेशान करने वाली है। और ये बात मैं कहाँ की कर रहा हूँ ये बता देते हैं। ये बात है कूपर रोड, गोमती नगर और बाबूगंज सहित आसपास के एरियाज़ की। और इसमें बात करें तो कूपर रोड की उपकेंद्र की मरम्मत होनी है, वहाँ पर बहुत काम होना है, और इसके चलते क्रिश्चियन कॉलोनी में आज दोपहर 1 बजे से शाम के 6 बजे तक बिजली गुल रहेगी। और बाकी जो मैंने एरियाज़ बताए हैं गोमती नगर और बाबूगंज, यहाँ पर भी काफ़ी समय तक थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है। और ये काम इसलिए भी है क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसके चलते ये दिक्कत थोड़ा सा हो सकती है। तो अलर्ट रहिएगा और सतर्क रहिएगा, जो भी काम है अपने उनको समय से मैनेज कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो।
1: बिल्कुल, तो ये तो रही बिजली की बात। आगे बढ़ते हैं हम। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक राज्य पुरस्कार पाने के लिए 7 जून से लेकर 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। और आपको बता दें बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से समय सारिणी और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चयन प्रक्रिया में ये देखा जाएगा कि स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट घटाने के लिए शिक्षक ने क्या कदम उठाए, परीक्षा परिणाम कैसा है, पढ़ाई के लिए कौन से अभिनव प्रयोग किए गए, कक्षावार कितने छात्र निपुण बने।
0: क्या बात है, ये एक बढ़िया मौका है। तो इसमें वो सभी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं जो ये पात्रता पूरी करते हों। और इस अच्छी सी बात के साथ ही साथ एक और अच्छी बात भी है मेरे पास रोली, लोगों के लिए, हमारे साथियों के लिए। एक बस सेवा है जो शुरू हुई है, और ये बस सेवा शुरू हुई है एसी जनरल बस, और ये रूट होगा लखनऊ से हरदोई। और इस बस का संचालन शुरू हो चुका है कल से, और ये बस कैसरबाग बस अड्डे से सुबह 7 बजे से हर घंटे हरदोई के बीच संचालित होगी। और इसका जो किराया रखा गया है, कैसरबाग से हरदोई के बीच 110 किलोमीटर की यात्रा के बदले 188 रुपये किराया देना होगा, और आप यहां से हरदोई तक की यात्रा एसी बस में पूरी कर सकते हैं।
1: और इसी के साथ अगले अपडेट की तरफ चले तो आपको बता दें पीजीटी भर्ती 2022 के तहत 624 पदों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। और आयोग की ओर से जारी विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार साक्षात्कार 15 जून से शुरू होकर 27 जून तक विषयवार होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 जून को वाणिज्य, कला, मनोविज्ञान, कृषि और गृह विज्ञान विषयों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। 16 जून को भौतिक विज्ञान और इतिहास, 17 जून को रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र, 18 जून को नागरिक शास्त्र और गणित तथा 19 जून को जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा।
0: ये सभी बहुत उत्साहित होंगे क्योंकि ये एक ऐसा पल होता है जहां पर लगता है वाह हमारी मेहनत सफल होने वाली है। तो साहब जितने भी लोग इस इंटरव्यू

0: के लिए आगे पहुंचे हैं रिटर्न से आगे, उन सभी को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत हमारी विशेष हैं उनके लिए कि वो और बढ़िया करके और सफलता
1: पाएं। और अगर वही लोग और उनके साथ साथ और लोग हमें सुन रहे हैं तो आपको बता दें कि भाई आज हम आपसे क्या पूछना चाहते हैं, आज हमारा मुद्दा क्या है सुष्मित?
0: आज हम बात कर रहे हैं कैसी जो पर्यावरण से जुड़ती है, और वो बात ये है कि क्या एक व्यक्ति और उस एक व्यक्ति की छोटी सी पहल पर्यावरण बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, अगर हाँ तो कैसे, क्या सोचते हैं आप हमें बताइए हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से
1: fmakashwani@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है। फिलहाल ये ट्रैक आप सबके लिए, एंजॉय दिस।

0: I wish you happy happy birthday. जिनका है आज happy happy birthday, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं.
1: क्या बात है, और हमारी भी शुभकामनाएं. जी हाँ, हम दोनों आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं आज के दिन पर, अगर आज है आपका बर्थडे. और वैसे रोली आपको बताएं, हमारे पास जो मेल्स आए उससे में पता चला कि हमारे दो साथी हैं जिनका आज बर्थडे है. और इसमें एक नाम है घनश्याम सिंह जी का, नारायण नगर फैजाबाद रोड से इनका मेल आता है अक्सर हमारे पास. और दूसरे हैं वारिस अली जी. दोनों ही लोग आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.
0: क्या बात है भाई, हमारे रेगुलर लिसनर हैं आप, और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. आपका दिन आज बहुत ज्यादा खुशियों से भरा हो, और आने वाला साल और आने वाला हर दिन आपका यूं ही खुशियों से भरा रहे.
1: बिल्कुल, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों के लिए ही, और साथ ही साथ उनके लिए भी जिनका आज बर्थडे है. भाई ये दिन आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए, ये हमारी मन से, पूरे मन से आपके लिए शुभकामनाएं हैं.
0: और साथ ही आज है जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, उनको भी हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं. आपका जीवन यूं ही खुशियों से भरा रहे, हंसती खिलखिलाती सी हंसी यूं ही आपको गुदगुदाती रहे.
1: जी हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हंसी खुशी आपस में बनी रहे तो रिश्ता और बढ़िया चलेगा, और फिर तो क्या कहने.
0: और वैसे अगर कभी कभार झगड़ा हो भी जाए तो कोई बात नहीं, झगड़े का भी अपना मजा है.
1: साहब ये बात बड़ी रिस्की लगती है, ये आप लोग ऐसा कहते क्यों हैं?
0: क्योंकि जिस रिश्ते में झगड़ा ना हो उसमें ना एक फ्रेश एयर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है.
1: माय गॉड,
0: तो झगड़े के बाद जब वापस से रिश्ता सुलझता है तो एक फ्रेश एयर आ जाती है रिश्ते में, मिठास और ज्यादा बढ़ जाती है.
1: कभी इस बारे में भी अपने साथियों के साथ बातें करेंगे, मुद्दे पे चर्चा करेंगे, अपने साथियों से पूछेंगे साहब वो क्या सोचते हैं इस बारे में.
0: बिल्कुल,
1: बात बर्थडे की है तो आज उनका भी जिक्र कर लेते हैं जिनके साथ आप अपना बर्थडे आज शेयर कर रहे हैं.
0: भाई साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस रंबा आज यानी 5 जून को अपना बर्थडे मना रही हैं. 17 बॉलीवुड और 100 से ज़्यादा साउथ फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस अब लाइमलाइट से वैसे दूर रहती हैं, लेकिन बॉलीवुड में उन्होंने फिल्म जल्लाद से एंट्री की. इसके बाद दानवीर, जंग, कहर, जुड़वा, सजना, घरवाली, बाहरवाली, बंधन, मैं तेरे प्यार में पागल और जैसी तमाम फिल्में इन्होंने की और उसमें नजर आई. तो इनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं.
1: क्या बात है, और इसके साथ ही साथ आज बर्थडे है भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी पद्मश्री रमेश कृष्णन का, जो कि डेविस कप मैचों में भारत के हीरो हुआ करते थे. उन्होंने 1985 में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग 23 हासिल की और मैट्स विलेंडर, जिमी कॉर्नर्स और पैट कैश सहित दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों पर जीत दर्ज की. और डेविस कप में भी उनका शानदार करियर रहा है, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसी शीर्ष क्रम की टीमों पर भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. एक बड़ा नाम स्पोर्ट्स के फील्ड से.
0: और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं, आज जन्मदिन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का. एक संत, जनप्रतिनिधि और प्रशासक के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने सार्वजनिक जीवन में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है. प्रदेश के विकास, सुशासन, जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें निरंतर सक्रिय और कर्मशील बनाए रखती है.
1: जी, और ये उनका कौशल है, ये उनकी ऐसी बात है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, बताती है. तो आज इन सभी के जन्मदिन पर, जन्मदिवस पर उनके स्वस्थ, सुखद और दीर्घायु जीवन की कामना के साथ ही साथ हम यहाँ पर आशा करते हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ जनसेवा के पथ पर आगे अग्रसर रहें. तो इस बात के साथ ही साथ 8:48 हो चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर वक्त है गीत का, और इसके बाद भी ये सफर जारी रहेगा, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, और हमारे मुद्दे से जरूर जुड़ते हुए अपनी बातें हम तक पहुँचाते रहिए. और बताइए कि क्या एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के लिए या अपनी जो पर्यावरण को बचाने की पहल है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्या, और अगर हाँ तो कैसे.

0: और भाई दुनिया में अगर आए हो तो प्यार के साथ साथ एक दूसरे से ढेर सारी बातें भी कर लो, ढेर सारी चिटचैट कर लो, जिससे कि एक दूसरे से रिश्ता बहुत ही स्वीट बना रहे, क्या कहते हैं?
1: बिल्कुल सही कहा रोली, और ये जो रिश्ता है ये बना रहना चाहिए, और इस रिश्ते को बनाते हैं हमारे वो सभी साथी जो हमें सुनते हैं और हम तक अपनी बातें भी पहुँचाते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसे ही साथियों की बातों को यहाँ पर शामिल कर ले। रोशनी रावत जी का मेल मेरे सामने है और सुबह सुबह इन्होंने सबको शुभ प्रभात कहा है, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है इनका कहना, मन प्रसन्न हो जाता है। और इनके मेल से इन्होंने आगे बात कही कि चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूँ, और नाम बताया इन्होंने कि बबीता राव, नीतू, नीलू शर्मा, गुलबशा दीदी, हम सभी एक साथ मिलकर अलग अलग जगह से आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: और हमारे पास जगमोहन मिश्रा जी का मैसेज आया है और लिखते हैं कि प्रिय सुस्मित जी, रोली जी, सुप्रभात। आज का मुद्दा बहुत अच्छा है और अमल मिलाने की ज़रूरत है। आज सुबह सुबह अपने घर की छत पर फल और सब्जियों की कतरन को कूटते हुए सोच रहा था, तो इनको मिट्टी और पानी में मिलाकर अपने पौधों के लिए खाद भोजन बना रहा हूं, पर न जाने कितने करोड़ों घरों में इसे डस्टबिन में फेंका जा रहा होगा, जिससे न सिर्फ बदबू वाला प्रदूषण फैलता है बल्कि हम प्राकृतिक ऊर्जा को ज़ाया करते हैं। हम तो अपने घर के ऊपर सजाई हुई बगिया से प्राकृतिक शुद्ध हवा का आनंद भी लेते हैं, चहचहाते चिड़ियों और पक्षियों का आनंद लेते हैं। पक्षी भी शायद इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको ठंडा पानी और भोजन उनके लिए रखते हैं। प्लांट की सेवा करने में हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, उन्हें फल फूल भी मिलते हैं। आज सुबह बूंदाबांदी से मौसम अच्छा होने की वजह से ये आनंद दुगना हो गया। सुषमा जी, मैं तो अपने सुनने वालों से यही कहूंगा, घर बड़ा हो या छोटा, जहां भी जगह मिले, गमले में, डब्बे में, प्लास्टिक के कप में, कुछ ना कुछ हरियाली प्लांट सब्जियां जरूर लगाएं, उनका आनंद, और हमारे लिए जो घातक हवा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये उनको खाते हैं और बदले में हमें बहुमूल्य मुफ्त उपहार में देते हैं ऑक्सीजन, प्राणवायु देते हैं जिसको बाजार में खरीदा नहीं जा सकता, जिसे हम अपनी प्राणवायु कहते हैं। आप दोनों की जोड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, ओ थैंक यू, ये लिखती है, मैं तो 100% नंबर दे रहा हूँ, आप दोनों स्वस्थ रहे, खुश रहे, यही काम है, क्या बात है,
1: क्या बात है। मैं बहुत ध्यान से आपकी सारी बात सुन रहा था जगमोहन जी, बड़ा अच्छा लगता है आपका मेल आता है और एक सार्थक बात आप करते हैं, ये देख के और अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही, निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए बहुत काम की बात है। छोटे छोटे पौधे छोटी छोटी जगहों में भी आप लगा सकते हैं और ये प्रयास कर सकते हैं, निश्चित रूप से ऐसा हम सभी को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ राम मोहन गुप्त जी अपनी कुछ पंक्तियों के साथ हमसे जुड़े हैं और कहते हैं, धरा को सजाना है, इसे हरा भरा बनाना है, करके स्वच्छ नदियां, अविरल धार बहाना है, प्रतिवर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे, बच्चों सम पाल पोस कर इन्हें वृक्ष हम बनाएंगे। और लखीमपुर खीरी से ये बात पहुंचाई है राममोहन गुप्त जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इन पंक्तियों को हम तक पहुंचाने के लिए।
0: और साथ ही तालिब अंसारी जी ने हमें मैसेज किया है राजा कटरा बाराबंकी से, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, आज के मुद्दे पे कहना चाहता हूं कि हम लोग एनवायरमेंट बैलेंस रख सकते हैं और बाजारों में प्लास्टिक की थैली बैग इग्नोर करके, कपड़े के बैग यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी सेव करके और जो भी पावर है उसे ऑफ करके रख सकते हैं, वाटर सेव करके रख सकते हैं, पौधे लगाकर अपने घर के आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, क्योंकि वे हवा को शुद्ध करते हैं और पर्यावरण को हरा भरा बनाते हैं।
1: और सबसे अच्छी बात इन्होंने लास्ट में कही है कि ये सब हम सभी लोग कर सकते हैं और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान देने की जरूरत है और दैनिक बदलाव करके हम ऐसा जरूर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात।
0: तो अभी भी बहुत सारे लोगों की मेल बाकी है, लेकिन फिलहाल हमारे गुड मॉर्निंग लखनऊ का फर्स्ट हाफ वाइंड अप करने का टाइम है, क्यों सुषमा?
1: बिल्कुल रोली,
0: तो बस हम आते हैं ये ट्रैक और उसके बाद न्यूज ब्रेक और
1: उसके बाद भी ये सफर जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, फिलहाल ये गीत एंजॉय कीजिए।

0: नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं और अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक को राजधानी लखनऊ से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, यूपी में पर्यटन बढ़ाने के लिए बनेंगे नए परिपथ। वहीं नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, अब बनेगा बाबा नीम करौली सर्किट। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, नीम करौली बाबा सर्किट का होगा विकास। दैनिक जागरण लिखता है, पर्यटन नीति में होगा संशोधन, बनेंगे 2 नए सर्किट।
1: दिल्ली में हुई अग्नि दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश में व्यापक सुरक्षा जांच और फायर ऑडिट की खबरें भी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हैं। नव भारत टाइम्स ने लिखा है, यूपी में सभी होटलों बहुमंजिला इमारतों का होगा फायर ऑडिट। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के बयान को हेडिंग बनाते हुए लिखा है, बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा की जांच होगी।
0: प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के लिए शिक्षकों की तबादला नीति को अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। दैनिक जागरण ने इसे अपनी मुख्य खबर बनाते हुए लिखा है, 31 मार्च तक शिक्षकों के तबादले नहीं। हिंदुस्तान ने लिखा है, दिव्यांग असाध्य रोगी शिक्षकों के तबादले होंगे। वहीं अमृत विचार ने लिखा है, शिक्षकों के तबादले नहीं, विशेष मामलों में ही अनुमति। अमर उजाला ने लिखा है, जनगणना को ध्यान में रखकर होगा बेसिक शिक्षकों का तबादला।
1: प्रख्यात संविधानविद सुभाष कश्यप के निधन को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। नव भारत टाइम्स ने लिखा है, संविधानविद सुभाष कश्यप का निधन। हिंदुस्तान लिखता है, संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप का निधन। अमर उजाला ने लिखा है, मशहूर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप नहीं रहे।
0: उत्तर भारत में आंधी तूफान के साथ बारिश की खबर और केरलम में मानसून पहुंचने की खबर को भी सभी अखबारों ने अपनी सुर्खियां बनाया है। अमर उजाला ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, उत्तर भारत में आंधी तूफान के साथ बारिश, यूपी के 12 से अधिक जिलों में बदला मौसम। हिंदुस्तान ने लिखा है, देरी के साथ मानसून ने केरल में दस्तक दी। दैनिक जागरण ने लिखा है, 3 दिन देरी से केरलम पहुंचा दमदार मानसून। वहीं अमृत विचार ने लिखा है, 3 दिन की देरी के बाद केरल पहुंचा मानसून।
1: भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ में होगा। इसकी तैयारियों से संबंधित खबरों को भी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, भारत अफगानिस्तान वनडे की तैयारी तेज। नव भारत टाइम्स ने लिखा है, रविवार से मिलेगा टिकट सबसे सस्ता 599 रुपए में। इसी के साथ ही अखबारों की सुर्खियां यहां समाप्त होती हैं। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
2: नमस्कार, 4 मिनट एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ का सेकंड हाफ लेकर, और हम सभी आपको कह रहे हैं, यानी हम दोनों ही लोग आपको कह रहे हैं गुड मॉर्निंग वंस अगेन।
3: गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और एक बार फिर से हम दोनों ही आ चुके हैं आपके होस्ट एंड दोस्त, और अभी भी बहुत कुछ बाकी है हमारे पास। हो आपको करना क्या है, बने रहना है हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन
2: लखनऊ की।

0: और कॉफी इधर भी पास कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा है, है ना?
1: हाँ, यहाँ तो जरूरत भी लग रही है और एक कॉफी अगर मिल जाए तो फिर क्या ही बात हो।
0: बिल्कुल, तो कॉफी पिलाई फिर।
1: चलिए, जब तक कॉफी का इंतजार करते हैं, कॉफी जब तक आती है तब तक हम अपने साथियों से जुड़ते हैं और उनसे जो हम बातें कर रहे हैं वो अपने बाकी साथियों तक भी पहुंचाते हैं। फिलहाल सबसे पहले बात वो कि हम बात कर किस बारे में रहे हैं, तो हम बता दें अपने साथियों की कि आज हम बात कर रहे हैं कि क्या एक व्यक्ति की छोटी सी पहल पर्यावरण बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, अगर हाँ तो कैसे।
0: और विश्व पर्यावरण दिवस है आज, तो हम इस उपलक्ष्य में ये सारी बातें आपसे करना चाह रहे हैं। और एक बड़ी प्यारी प्यारी सी तस्वीरें भी हमारे पास आई है, हमारे दोस्तों ने भेजी है, और कुछ लोग पेड़ लगाते हुए अपनी तस्वीरें जिन्होंने शेयर की है, बहुत प्यारी है, यकीन मानिए।
1: बिल्कुल, और यहाँ पर जो आपने तस्वीर की बात की तो एक मेल है जो आया है अरुण कुमार कुशवाहा जी का हरदोई से, और प्यार भरा नमस्कार इन्होंने प्रेषित किया है, आपको भी नमस्कार अरुण जी, और पर्यावरण दिवस की इन्होंने सभी सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई प्रेषित की है, और इसके साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ी प्यारी सी फोटो हमें भेजी है, शेयर की है, जिसमें ये अपने ग्रैंड सन के साथ एक पौधा लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये मेरी शुरुआत है एक पेड़ माँ के नाम से, और आज मैंने इसकी शुरुआत की है। ये
0: करी पत्ते का पौधा है, बड़ा प्यारा सा लग रहा है, और छोटा सा बच्चा है जो उसको उस पेड़ को पानी दे रहा है, और बीइंग अ पेरेंट वो सिखा रहे हैं कि भाई कैसे पानी देना है पेड़ को, कैसे रखना है।
1: एक अच्छी शुरुआत, एक

0: की सोच, और सबसे बड़ी बात है बच्चों को शामिल करना, ये और भी अच्छी बात है। तो ये था आपकी बात, अरुण कुमार जी की बात, और इसके साथ ही साथ अगला मेल किसका है?
1: अगला मेल हमारे पास आया है गोविंद परमार जी का।
0: जी गोविंद परमार जी क्या फरमा रहे हैं जान
1: ये लेते लिखते हैं। सुप्रभात, आपका हर कार्यक्रम अच्छा लगता है। जी के परमार, गांधीनगर गुजरात। पर्यावरण बचाने की हमारी जिम्मेदारी है, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
0: क्या बात है। और देखिए सुधांशु जी का मेल, अगला मेल हमारे सामने है, इटौंजा बख्शी का तालाब से इन्होंने मेल हमें किया है। आगे बताते हैं टॉपिक पर कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए छोटे छोटे काम कर सकते हैं। जैसे हम कहीं पास में आना जाना हो तो कोशिश करें कि पैदल चलें। और ये खुद अपनी बात बताते हुए कह रहे हैं कि मैं शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूं और वहीं हॉस्टल में रहता हूं। जब भी घर से हॉस्टल जाता हूं तो इलेक्ट्रिक बस का प्रयोग करता हूं और बुद्धेश्वर चौराहे से पैदल शकुंतला विश्वविद्यालय तक पैदल ही जाता हूं। बहुत बहुत बढ़िया, आपकी अच्छी कोशिश और अच्छा प्रयास। हमारे छोटे छोटे प्रयास ही तो एक बड़ा रूप ले लेते हैं।
1: और हमारे पास वकील अहमद का मैसेज आया है, ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, मुद्दा बहुत अच्छा है, एक व्यक्ति से संभव नहीं है, हम सब मिलकर पर्यावरण को बचा सकते हैं। पेड़ काटे नहीं लगाएं, पेड़ों की देखभाल भी बहुत जरूरी है। हमारे आम के बाग है, एक आम का पेड़ घर में लगा है। सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: क्या बात है। और निधि चौरसिया जी का भी मेल है, गुड मॉर्निंग कहा है सभी इन्होंने और आज के दिन की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इसके अलावा वीर कुमार जी का मेल है, इन्होंने कहां से, लोहारू हरियाणा से अपना मेल किया है। और कई सारे साथी भी हैं जो इनके मेल में, जिनके नाम इन्होंने भेजे हैं, सभी सुनने वालों ने सभी को गुड मॉर्निंग कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ साथी हैं, उनकी भी बातें हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल तो एक गीत पीछे से दस्तक दे चुका है, तो चलिए इसे सुन लेते हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: रोली, ये जो सुबह सुबह जो हमें ताजगी मिलती है और इस ताजगी के साथ ही साथ जब पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है और इसमें पेड़ों की पत्तियां जब हवा के साथ लहराती हैं,
3: सरसराहट,
2: बिल्कुल, और जब ये सूरज की किरणें धरती को रोशन करती हैं तब एहसास होता है कि ये जो प्रकृति है ना, ये जीवन का सबसे सुंदर उपहार है।
3: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और सुस्मित, कभी भी अगर बहुत ज्यादा मन परेशान हो और उदास हो और आप एक वॉक पे निकल जाइए, एक अच्छे हरे भरे पार्क में चले जाइए और वहां पर जब आप चलना शुरू करते हैं तो शुरू तो करते हैं एक उदास मन से, लेकिन जब फाइनलाइज करते हैं ना अपनी वॉक को, तो वक्त आते आते मन एकदम अच्छा सा हो चुका होता है। तो प्रकृति में वो ताकत है जो हमें हर तरह से अच्छे से रख सकती है, प्यार से रख सकती है, दुलार के रख सकती है।
2: और ऐसे खूबसूरत प्रकृति के लिए क्या कभी हम सोचते हैं कि जिस पर्यावरण से हमें जीवन मिलता है उसे हम लौटा क्या रहे हैं? जी हाँ, यही बताने के लिए आता है आज का दिन, जो हमें याद दिलाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो आज मनाया जा रहा है विश्व स्तर पर, उसमें प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। स्वच्छ हवा, निर्मल जल, हरे भरे वन, जैव विविधता और संतुलित जलवायु, ये केवल संसाधन ही नहीं बल्कि जीवन की आधारशिला है।
3: आज विकास की दौड़ में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ सुस्मित पर्यावरणीय चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं।
2: बिल्कुल,
3: प्रदूषण, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, जल संकट और घटते वन क्षेत्र हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अब समय केवल सोचने का नहीं बल्कि कुछ करने का है।
2: बिल्कुल सही कहा रोली, और ऐसे में जिम्मेदारी बन जाती है हमारी, हमारे एक यहाँ पर नैतिकता जुड़ती है कि पर्यावरण संरक्षण ये हम समझें, इसे करें, क्योंकि ये किसी एक संस्था या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी का साझा दायित्व है। और अगर हम अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाएं, जैसे पानी की बचत करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, पेड़ लगाएं और ऊर्जा संरक्षण करें, तो हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बड़ा बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। याद रखिए, ये पृथ्वी हमें विरासत में नहीं मिली है बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है, इसलिए हमारा हर कदम, हर निर्णय, हर प्रयास इस धरती के भविष्य को प्रभावित करता है।
2: बिल्कुल, और ऐसे में आइए हम सभी मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस पर यह संकल्प लें कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जिएंगे और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित बनाने में योगदान देंगे, क्योंकि जब प्रकृति मुस्कुराएगी तभी हमारा भविष्य भी मुस्कुराएगा।
3: तो जनाब बिल्कुल तैयार हो जाइए कि हमें वो मौका लाना है जब हमारी प्रकृति मुस्कुराए, और उस मुस्कुराती हुई प्रकृति के साथ भी हमें ठहाके लगाकर हंसना है और खुश रहना। और कहते हैं ना कि इतनी सी हंसी बिना हमारी जिंदगी को बड़ा ही

0: नमस्कार 22 मिनट गुड मॉर्निंग, लखनऊ का सफर जारी है और आज है 5 जून। जी हाँ, एक ऐसा दिन जो हमें बहुत कुछ बताता है। और लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि 1974 में इसी दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन, नैतिक मूल्यों और जन भागीदारी को सशक्त बनाने का संदेश दिया था। इस विचार को संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया।
1: संपूर्ण क्रांति का आशय केवल किसी एक क्षेत्र में बदलाव से नहीं सुस्मित, बल्कि समाज, शिक्षा, संस्कृति, नैतिकता और नागरिक दायित्वों के प्रति व्यापक जागरूकता से है। तो ये दिवस हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है।
0: बिल्कुल, और इस दिन यानी संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन हमें ईमानदारी, जिम्मेदारी और सामाजिक सद्भाव जैसे मूल्यों को अपनाने और एक जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण के लिए ये दिन हमें बताता है, प्रेरित करता है। तो निश्चित रूप से जुड़ने की बात है कि हम इस बात से जुड़ें, इस भाव से जुड़ें, ताकि हम और बेहतर चीज़ें कर सकें। और इसके साथ ही साथ हम जुड़ें उस मुद्दे से भी जिससे हम अपने साथियों से बात कर रहे हैं और उनके मेल लगातार हम तक पहुँच रहे हैं। एक मेल हम तक आया हुआ है सुदीप कुलश्रेष्ठ जी का, और ये इन्होंने मेल बड़ी दूर से भेजा है। वैसे तो ये महानगर के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने अच्छा कई जगहों के नाम और भी लिखे हैं, गुजरात, केरला, न्यू दिल्ली, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, इन जगहों पर इनकी कंपनी जो है वो काम करती है। बहरहाल इन्होंने लिखा है, नोइंग ट्रीज आई अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पेशेंस, नोइंग ग्रास आई कैन अप्रिशिएट परसिस्टेंस, गुड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। क्या बात है सुदीप कुलश्रेष्ठ जी के इस मेल के साथ ही साथ
1: हमारे पास

0: मेल है महेंद्र दीपन जी का,
1: बड़ा प्यारा मेल भेजा है इन्होंने, बड़ी अच्छी बात कही है।
0: लिखते हैं, आदरणीय आरजे सुस्मित जी और आरजे रोली मैम जी, सादर नमस्कार, आपको भी नमस्कार। लिखते
1: नमस्कार।
0: हैं, मैं महेंद्र दीपन राजस्थान के नागौर जिले के रूड गांव को का रहने वाला हूं। आज के मुद्दे पर मेरा मानना है कि एक व्यक्ति निश्चित रूप से बदलाव ला सकता है अगर इरादा पक्का हो तो। एक अकेला व्यक्ति भी पूरा जंगल खड़ा कर सकता है। मैंने स्वयं अपने जीवन में इसे महसूस किया है। पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैं लगातार वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहा हूं और लोगों को इसके प्रति जागरूक करता हूं। गर्मियों के भीषण मौसम में मैं विशेष रूप से बेजुबान पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था सुनिश्चित करता हूं। अगर हर इंसान अपने स्तर पर सिर्फ एक पेड़ लगाने और उसकी रक्षा करने का संकल्प ले तो हमारा पर्यावरण बहुत जल्दी हरा भरा हो सकता है। अकेले चलने से ही कारवा बनता है। मैं पूरी तरह से सकारात्मक हूं कि एक व्यक्ति की छोटी सी कोशिश ही समाज में बड़े बदलाव की नींव रख सकती है।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि मैं पूरी तरह से सकारात्मक हूँ। बिल्कुल, ये भाव बहुत जरूरी है। ये भाव जब हमारे मन में होगा तभी हम जो चाह रहे हैं उस दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे और एक जो इच्छित हमारा लक्ष्य है उसको पा सकेंगे। बहरहाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मेल के लिए महेंद्र जी। और रजनीश पासवान जी का मेल हम तक पहुंच चुका है। कहाँ से मेल किया है जानते हैं, इन्होंने मेल, वैसे ही रहने वाले हैं सीतापुर के, और लेकिन इन्होंने मेल किया है हमें फिलहाल नई दिल्ली से। गुड मॉर्निंग कहते हुए इनका कहना है कि इंद्रप्रस्थ नई दिल्ली द्वारका से मैं मेल कर रहा हूं और लखनऊ का जीमेल कई दिन से मिस कर रहा था, आज खाली समय मिला तो आपको मेल कर रहा हूं। और मुद्दे से जुड़ते हुए इनका कहना है कि एक पेड़ को अपना पुत्र मानकर अवश्य लगाएं और उसकी सेवा अवश्य करें। बहुत अच्छी बात है, भाव चाहे जिस तरह से रखें, एक सकारात्मक सोच की तरफ आप बढ़े तो निश्चित रूप से वो भाव पूरा होगा और उसका एक जो कहते ना परिणाम हमें दिखेगा।
0: हमारे पास भैया मोनू सेठ का मैसेज आया है। लिखते हैं, गाने बहुत उम्दा बज रहे हैं।
1: क्या बात है।
0: लिखते हैं, पौधे तो हमने बहुत लगाए हैं पर पौधे चल पाए, कुछ सूख गए, जो कुछ तो जानवर खा गए, और पानी बचाने की बात तो हम झगड़ा भी कर लेते हैं पानी की बर्बादी पर। एक तो हर घर जल योजना में लोग बहुत पानी बर्बाद करते हैं, शादी विवाह में बोतल में आधा पानी पीते हैं आधा बहा देते हैं, ये बहुत गलत है। कुछ दिनों बाद आप सभी को नींबू और जामुन जरूर लगाएंगे क्योंकि अपने जन्मदिन पर जो पौधे लगाए थे वो बड़े हो रहे हैं।
1: मोनू जी थैंक यू, आपने इतने प्यार से हमें मेल भेजा और निश्चित रूप से आप जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास करते रहिए और हमारे बाकी साथी भी प्रयास करते हैं, अपनी बातें भी हम तक पहुंचाते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है अब एक गीत की तरफ बढ़ा जाए आगे। 9:27 हुए दोस्तों और थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि आप तक मौसम की क्या अपडेट है वो पहुंचाएं और ट्रैफिक पे क्या कुछ रहने वाला है हाल ये भी आपको बताएं। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर,
0: रोली और
1: सुस्मित के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
2: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ।

0: दिवस पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और इसकी थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। तो इस प्रोग्राम में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ चीजें हो रही हैं अभी, ये सब जानने के लिए चलते हैं हमारे साथी सर्वेश के पास और उनसे जुड़ करके जानते हैं कि वो क्या इस वक्त वहां पर देख पा रहे हैं। सर्वेश बहुत हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं 100.7 FM रेनबो पर। सबसे पहले आपको आज के इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: गुड मॉर्निंग सर्वेश।
2: आप सभी को और सभी गुड मॉर्निंग लखनऊ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा गुड मॉर्निंग। और मैं अभी मौजूद हूँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में
1: जी,
2: जहाँ पर कुछ ही देर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होने वाला है और यहाँ पर एक कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया जाना है जिसकी थीम है उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान।
0: ओके।
2: इस पर एक संगोष्ठी होगी और एक पेड़ माँ के नाम इस थीम पर पूरे प्रदेश में 5 करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे
1: जी।
2: और भी बहुत सारी जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं पर्यावरण को लेकर, पेड़ पौधों को लेकर, वो भी यहाँ पर लॉन्च की जाएंगी। और मैं यहाँ पर बहुत सारे मुझे स्कूली बच्चे भी दिख रहे हैं और बहुत सारे अन्य विभागों के लोग भी हैं और काफी अच्छा लग रहा है।
0: ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, वो भी वहाँ पर दिख रहे हैं। निश्चित रूप से आज के इस दिन वो जब जुड़ेंगे, बातों को सुनेंगे और चीजों को जब समझेंगे तो बहुत कुछ अपने जीवन में उतारेंगे भी और उनको आगे करेंगे भी।
1: और कहते ना कि जो विद्यार्थी हैं जो आज पढ़ रहे हैं वो आने वाले भविष्य के लिए हमारा भविष्य है। और इस बार की जो थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, तो ये बिल्कुल मिलती जुलती है, राइट।
2: और प्रकृति ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है। आज का मौसम थोड़ा सा सुहावना हो चुका है उसमें।
0: बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा।
2: मैं जब आ रहा था तो हल्की सी बारिश की बूंदें भी पड़ रही थी, तो कहते ना बिल्कुल लग रहा था कि आज विश्व पर्यावरण दिवस ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मौसम आज मेहरबान है तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है आज। ऐसे में ये जो प्रोग्राम है ये कितनी देर में शुरू होने वाला है?
2: लगभग 10 बजे का वक्त है। अभी मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा वक्त लगेगा, वो भी शायद कुकरेल पहुंचने वाले हैं, वहां पर पौधारोपण का कार्यक्रम है।
0: बिल्कुल।
2: उसके बाद यहां पर आएंगे और संगोष्ठी होगी, यहां पर सब शुरुआत होगी।
0: चलिए,
1: मतलब टाइमिंग क्या है, 10 बजे से?
2: हाँ, 10 बजे से ही शुरुआत है, 10 बजे।
0: ठीक है, तो चलिए आप वहां पर जुड़े हैं और हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, जानते रहेंगे क्या कुछ चीजें हो रही
2: हैं। ऐसे कुछ होगा और मैं यही कहूंगा सभी सुनने वालों को जो हमारे एफएम रेनबो के श्रोता हैं
1: जी,
2: सुनते रहें, यहां पर अभी मैं रहूंगा और जो भी अपडेट है वो आपको मिलेगी।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत
2: धड़कन लखनऊ की सुनते रहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश। ऐसे ही जुड़े रहिए और हम अभी मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद। ओके
2: जी जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
1: तो ये थे हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि सर्वेश जी, जिन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर अब से कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का ये मौका है, ये आज का प्यारा दिवस है और आज के दिन सभी लोग जो कि कहते ना कि माँ के नाम पे एक वृक्ष लगाने का ये जो एक हमारा चलन है बहुत ही खूबसूरत सा है। हम सभी इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शामिल हो तो कितना अच्छा हो, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बातें कुछ और भी हैं, उन तक भी हम पहुंचेंगे। फिलहाल तो एक गीत तैयार है, वो आप तक पहुंच रहा है। हम मिलते हैं इस गीत के बाद।

0: 9:34 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ. और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उसमें तो जो कि हम सुबह से सेलिब्रेट कर ही रहे हैं.
1: और बिल्कुल सही कहा रोलिया आपने. और एक खास प्रोग्राम है, एक खास कार्यक्रम है जो आज हो रहा है हमारे अपने शहर में. और ये प्रोग्राम इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज ये विश्व पर्यावरण

0: और विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं रोली हम सभी लोग आज पूरे विश्व स्तर पर एक खास दिन जो हमें बहुत कुछ सोचने को बताने के लिए आता है और बहुत कुछ समझा जाता है. ऐसे में हमारे साथ एक विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं. हम बात कर रहे हैं चंद्रमोहन नौटियाल जी की जो कि बीरबल सहनी पुरा वनस्पति संस्थान में वैज्ञानिक रहे हैं. उनसे जुड़ते हैं और कुछ बातें करते हैं आज के दिन पर. सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब. बहुत बहुत स्वागत है 100.7 FM रेनबो पर.
1: नमस्कार सर.
0: आज सबसे पहले आपको विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं.
2: आपको और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं.
0: डॉक्टर साहब ये बहुत खास दिन है हम सभी के लिए और ऐसे में हम आपसे जो पहली बात जानना चाह रहे हैं वो ये कि आज के समय में पर्यावरण के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उससे निपटने के लिए सबसे प्रभावी समाधान क्या हो सकता है.
2: पर्यावरण के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है वो है पेड़ों के कम होने की.
0: जी
1: जी.
2: और हम लोगों के द्वारा इस वातावरण को लगातार प्रदूषित किए जाने में जैसे एक दूसरे से स्पर्धा चल रही है ऐसा हो रहा है. तो जैसा हम जितना हम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी इस तरह की चीजें हम वातावरण में भेज रहे हैं और उसका परिणाम है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा है. एक्चुअली ये कहना भी सही नहीं है कि पर्यावरण या जो हमारा क्लाइमेट है जो जलवायु है उसका परिवर्तन केवल बढ़ते हुए तापमान में प्रतिबिंबित होता है ऐसा नहीं है. और बहुत कई जगह पर तापमान कम भी हो रहा है. ऐसी जगह जहां कभी आप स्नोफॉल के बारे में सोच नहीं सकते थे अब वहां पर स्नोफॉल होता है. कहीं पर सूखा पड़ता था उस जगह पर आज बाढ़ आ जाती है. तो कुल मिलाकर जो जो परिवर्तन हो रहे हैं वो अप्रत्याशित तो है इनके साथ साथ में बहुत तेजी से हो रहे हैं.
0: जी जी
1: जी.
2: वैसे नियम तो प्रकृति का परिवर्तन हमेशा से रहा है लेकिन जितनी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं हमारे वनस्पति वाले दृष्टि से अगर हम देखें तापमान की दृष्टि से देखें मौसम की दृष्टि से देखें तो ये इतनी तेजी से हो रहे हैं कि हम उनसे एडजस्ट नहीं कर पाए. और ये दिखाई दे रहा है जिस तरह से बर्ड्स की स्पीसीज समाप्त हो रही है जिस तरह से कुछ वनस्पतियां गायब हो रही हैं. तो ये चुनौती एक में से सबसे बड़ी चुनौती है जो आकस्मिक इसके कारण से परिवर्तन हो रहे हैं हमारे आसपास में हर में वनस्पति में भी जीव जंतुओं में भी. ये सबसे बड़ी चुनौती.
1: आपने परिवर्तन की बात की है तो जलवायु परिवर्तन का ऑब्वियसली प्रभाव तो पड़ रहा है. अब इस प्रभाव के बारे में आप कुछ बताइए सर और साथ ही साथ एक आम नागरिक इसमें क्या योगदान दे सकता है इसे कम करने के लिए.
2: जी जलवायु परिवर्तन निश्चित रूप से हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है. क्योंकि इतनी तेजी से हो रहा है कि हमारी जो इवन जो पक्षी है जो जंतु है या इवन हम लोग उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे.
0: जी, जी.
2: तो इसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं और वनस्पतियों में

0: परिवर्तन हो रहा है लोगों के, जिस तरह से हमारी जो खेती वाला जो क्षेत्र है
1: जी जी
0: वो धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ खिसक रहा है
1: जी,
0: क्योंकि तो तापमान बढ़ रहा है अधिकांश जगहों पर, तो धीरे धीरे कुछ वर्ष के बाद में भी 20-30 वर्ष के बाद जो हमारा भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है जो इक्वेटोरियल रीजन है
1: जी,
0: वहां पर खेती बहुत कम हो जाएगी। बहुत सारी फसलें हैं जो अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो हमारे ऋतु चक्र है वो भी बदल गया है
1: जी जी,
0: जिस समय पहले बारिश हुआ करती थी अब बारिश नहीं होती, बारिश आगे खिसक जाती है आमतौर पे
1: जी,
0: जब गर्मी पड़ती थी या जब जाड़ा पड़ता था वो नहीं हो रहा है, तो इसके कारण से हमारे किसान को ये समझ में नहीं आता कि वो फसल को बोए कब।
1: बिल्कुल,
0: वो एक समय फसल को बोता है और बारिश नहीं होती है उसका पूरा बीज भी खराब हो जाता है
2: जी
1: जी।
0: तो इसको, इस परिवर्तन को रोकने के लिए दो प्रभावी काम है जो एक आम आदमी कर सकता है
1: जी।
0: एक तो है वृक्षारोपण करना और वृक्ष न काटना, और दूसरा हो सकता है कि जिस ऊर्जा को बनाने में वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस जाती हो ऊर्जा के उन साधनों का कम से कम उपयोग करना
1: जी।
0: और इसी के साथ में जो वैकल्पिक हमारे ऊर्जा के तरीके हैं जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन सबको अपनाना, और सरकार इसमें अब तो बहुत इंकरेज कर रही है, बहुत प्रोत्साहित कर रही है, उसमें वो सब्सिडी भी देती है, तो हमें वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों को अपनाना चाहिए
2: जी।
0: जितना कम हो उतनी हम बिजली को खर्च करें, तो मेरे ख्याल से हम पर्यावरण को बचाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर साहब आपने। और चलते चलते बस एक बात और कि किसी भी काम को जब हम करते हैं या कोई अभियान जब लेते हैं तो उसमें जो हमारे युवा हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो बच्चे हैं, अगर उनको जोड़ा जाए तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में ये जो युवा हैं, जो छात्र हैं, इनको कौन से व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए इस दिशा में?
0: देखिए, मेरा कहना है कि जो आजकल युवाओं के अधिकांश के पास अपने वाहन है
1: जी,
0: पेट्रोल डीजल से चलते हैं, उनका वो कम से कम उपयोग करें, जहां तक हो सकता है उनका पूलिंग करें, उनका शेयरिंग करें, और जो हमारे संसाधन है उनका उपयोग कम से कम करें। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति 2 या 3 मोबाइल फोन अपने पास रखे, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये खराब होते हैं, और आजकल फैशन है कि हर 3 साल के बाद बच्चे अपना मोबाइल बदल देते हैं
1: जी, जी,
0: इन कंपनीज की भी स्ट्रेटेजी है, वो ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन करते हैं। तो ये जो हमारे संसाधन है, चूंकि जब ये प्लास्टिक और जो हमारे इवन जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं जब ये जलते हैं
1: जी,
0: तो बहुत तरह के केमिकल जब इनको डिस्पोज किया जाता है तो लोग फेंक देते हैं इसको, तो उसके बाद इनको जला के इनके अंदर से जो गोल्ड वाला प्लेटिंग है वो वाला पार्ट निकाल देते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में इस प्लास्टिक को जला के जो प्रदूषण वो वातावरण में करते हैं
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: बहुत नुकसानदेह है। तो हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको हमारे बिजली का कम से कम उपयोग करना चाहिए, पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग करना चाहिए, उनको जहां संभव हो वहां पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और ये संदेश भी अपने बड़ों को भी यदि आवश्यक हो तो वो दें कि हम अपने इस पर्यावरण का संरक्षण करें, इसके बिना हमारा भविष्य नहीं है, क्योंकि पृथ्वी केवल एक है, हम अभी कहीं और नहीं जा सकते।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर बातें बताई आपने डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी बातें आपने हमको बताई, हमारे साथियों तक पहुंचाई।
2: थैंक यू सो मच सर।
1: तो मित्रों, ये थे हमारे साथ एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े चंद्रमोहन नौटियाल जी, जिन्होंने हमें बताया बहुत कुछ आज के दिन से जुड़ी हुई बातें और उसमें कैसे क्या कुछ हम अपना योगदान दे सकते हैं। बीरबल सहनी पुरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक रहे चंद्रमोहन नौटियाल जी से हम जुड़े और हम उनको बहुत बहुत आभार प्रेषित करते हैं, उन्होंने हमें इतनी काम की बातें बताई। तो इसी के जी, और डॉक्टर साहब थैंक यू। तो मित्रों, इसी के साथ ही साथ हम बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं बस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: बिल्कुल, अगर सनलाइट टच करनी है तो हमको उस एक्सपोजर में आना होगा, बाहर निकलना होगा, थोड़ा सा वॉक करना होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और अगर कहीं जाना है तो उसके लिए ट्रैफिक की जानकारी बहुत जरूरी है ना?
1: बिल्कुल, और हमारे साथ जुड़ते हैं रोजाना ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह जी, जुड़ चुके हैं हमारे साथ ट्रैफिक अपडेट के लिए। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है 100.7 FM रेनबो पर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। अभी आज वर्तमान में यातायात सभी जगह सामान्य गति से गतिमान है सर। पीक आवर्स का समय चल रहा है, तो ऐसे पीक आवर्स के समय में लखनऊ अयोध्या मार्ग पर हमारा कमता चिन्हट मटियारी और अगर शहीद पथ की बात करें तो समिट बिल्डिंग के पास में थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा रहता है, और वहीं दूसरी तरफ मड़ियाओं हमारा हो गया और कानपुर रोड पर हमारा जो बारह बिरुआ चौराहा अवध चौराहा है और स्कूटर इंडिया के पास में, यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है। और लखनऊ रायबरेली मार्ग पर पीजीआई और उतरेठिया के पास में, परंतु वर्तमान में यातायात पुलिस और सिविल पुलिस मौजूद रहकर सुगम यातायात का संचालन करा रही सर। कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है सर। आईजीपी में आज जो है एक कार्यक्रम प्रस्तावित है, चूंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है
1: जी जी।
2: और इस अवसर पर जो है सभी जगह बहुत से जगह जो है लोग जो है पर्यावरण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं, जिसमें से कुकरेल जो हमारा कुकरेल वन है वन क्षेत्र, वहां पर कार्यक्रम प्रस्तावित है और आईजीपी में
1: जी जी।
2: ये लगभग 10 बजे और 11 बजे का कार्यक्रम है। 10 बजे लगभग अगर आप न्यू हाई कोर्ट मोड़ से आईजीपी की तरफ आ रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैफिक को रोका जाएगा, ये वाला रोड थोड़ा सा बाधित रहेगा। आप कमता हो करके शहीद पथ होते हुए विजयपुर अंडरपास होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। ये 10 बजे अगर आपका इधर न्यू हाई कोर्ट मोड़ से आईजीपी की तरफ का प्लान था तो थोड़ा सा आप पहले से ही सचेत रहे और आप कमता होकर के वहां से यू टर्न करते हुए शहीद पथ होकर के अपने गंतव्य को जा सकते हैं। तो सर ये एक थोड़ा सा मतलब छोटा सा डायवर्जन रहा है, बाकी कोई और विशेष डायवर्जन नहीं है सर। और मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि हम लोग अगर एक वॉलंटियर के रूप में कार्य करें और अभी से सचेत होकर के पर्यावरण के लिए कुछ न कुछ योगदान, जैसे कि अगर हम बहुत से लोग हैं सर पॉलीथीन और बाटल का प्रयोग ज्यादा इस समय चलन में हो गया है, तो कृपया अगर आप जा रहे हैं तो पॉलीथीन का यूज ना करें, बाटल का प्रयोग ना करें, तो इससे जो है जैसे आप प्लास्टिक के बाटल के स्थान पर अपने जो घर के बाटल होते हैं उसका यूज करें तो ज्यादा जो है
1: बिल्कुल।
2: और इसके साथ साथ अगर आप यातायात नियमों का पालन करें, रोड पर चलते हुए आप सुरक्षित रहेंगे और आप जो है अपने गंतव्य तक सुगमता से पहुंच सकेंगे।
1: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो मित्रों ये थे हमारे साथ ट्रैफिक एसआई विकास सिंह जी, जिन्होंने हमें ट्रैफिक के बारे में जानकारी दी। समय कम है और इस समय कम के साथ ही साथ हम थोड़ा सा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद आपके मेल्स को शामिल करेंगे। फिलहाल यहां पर ये छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
3: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में पीसीओडी और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
4: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में।

0: अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
0: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
0: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: और रोली समय कम है, इसलिए हम अपने साथियों के मेल फटाफट जल्दी से शामिल कर लेते हैं। 9:56 हो गए हैं। हमारे सामने सावित्री दिवे जी का मेल है इटौंजा से, इन्होंने मेल भेजा, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। रामराज जी ने अपना मेल भेजा है हमें रायबरेली से, और इनको भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: एमन नवाब ने हमें मैसेज भेजा है, पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है और साथ ही साथ कुछ पंक्तियां लिखी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एमन जी।
4: जी, और योगेंद्र जी ने अपना मेल भेजा है मुजफ्फरनगर से, आपका भी बहुत बहुत आभार। और साथ ही साथ मोनू सेठ जी ने भी अपनी बात कही थी, वो भी हमने आप तक पहुंचाई। सोनू परवाना ने अपना मेल भेजा है, पर्यावरण से जुड़ती अपनी बात की, इन्होंने प्लास्टिक से बचने के लिए कहा इन्होंने। और आंचल सेठ ने भी कुछ ऐसी बात की है। साथ ही साथ वारिस अली जी का भी मेल है और इन्होंने कहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और अब उस मकाम पे है मौसमों का मिजाज के दिल सुलगने लगे और दिमाग चलने लगे। बहुत जल्दी में आप सभी के मेल हम ले रहे हैं।
5: ब्रजेश सिंह जी का मैसेज आया हमारे पास कैसरगंज बहराइच से, और इन्होंने भी शुभकामनाएं भेजी हैं और कुछ लाइंस लिखी हैं, गुड मॉर्निंग भी बोला है।
4: साथ ही साथ छबीराम जी ने भी अपना मेल भेजा है फरुखाबाद से, और ये कहते हैं कि हम खुद पेड़ लगाएं और बच्चों से भी लगवाएं ताकि वो इस बात को सीखें, समझें और आगे बढ़ें।
5: साथ ही साथ मनोज बंसल जी ने मैसेज भेजा है, विश्व पर्यावरण दिवस पर संदेश भी भेजा है इन्होंने और बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। थैंक यू सो मच मनोज जी।
4: और इसके अलावा मुनेश कुमार राज जी ने भी एक फोटो के साथ बड़ी प्यारी सी बात भेजी है पर्यावरण को संरक्षित करने की। गीता सेठ ने भी अपनी बात भेजी है तालाबों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में बात कही है, आप सभी का बहुत बहुत आभार।
5: राजकमल यादव जी ने हमें गुड मॉर्निंग भेजा और साथ में अपनी बात कही, उसके लिए थैंक यू सो मच, आपने हमें मैसेज किया।
4: और इसके साथ ही साथ आशुतोष मिश्रा जी का भी मेल है, बहुत बहुत धन्यवाद। फैजुल्लागंज से आपने हमें मेल भेजा है।
5: मिसेस गीता सेठ एफएम दिवानी का मैसेज आया है, एक मैसेज के साथ उन्होंने हमें गुड मॉर्निंग भेजा है, थैंक यू सो मच, आपने हमें मैसेज किया गीता जी।
4: गुलफशा सिद्दीकी, ब्रजेश सिंह दीपू और मनोज बंसल जी का मेल, राजकमल यादव जी का मेल, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके मेल पूरे नहीं पढ़ पा रहे, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है। और इसके साथ ही साथ देखिए 9:58 हो गए, यानी मेरे चलने का समय बिल्कुल आ चुका है। रोली आपके साथ अगले प्रोग्राम में रहेंगे।
5: बिल्कुल, तो मैं रहने वाली हूँ 12 तक, हमारे साथ बने रहिए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए और साथ ही साथ एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन
4: लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय दौरे पर तुलसीपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री तुलसीपुर व गैसरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल, जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कल देवीपाटन मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया और सेवा को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया। श्री शाह ने यह भी कहा कि उनके नेतृत्व में संघ ने हर क्षेत्र में जनता को जागरूक करते हुए राष्ट्रीय चेतना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वाराणसी में चल रही ब्रिक्स देशों की कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक में आज सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जाएगा। दो दिवसीय इस बैठक का समापन आज होगा। कल उद्घाटन सत्र में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने की थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चयन आयोग ने लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार के 1829 पदों पर भर्ती को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में प्रसारित किए जा रहे दावों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी सभी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया गया है तथा पदों का विज्ञापन संबंधित विभागों से प्राप्त अधियाचन और उनकी पुष्टि के आधार पर जारी किया गया है। 17 जून को अफगानिस्तान और भारत की टीम के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया कि मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11 बजे। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
2: भाई अब मैच का क्या होगा?
1: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
3: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
4: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
3: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-444-444।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 10:03 हो रहे हैं सुबह के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रोली शुक्ला एक बार फिर से आपको कहती है गुड मॉर्निंग। और बस ये म्यूजिक एक्सप्रेस आपके लिए निकल चुकी है, इस पे आप भी सवार हो जाइए और नॉन स्टॉप म्यूजिक एंजॉय करते रहिए। कहीं मत जाएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का

0: एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और दोस्तों देखते ही देखते अब प्रोग्राम वाइंड अप करने का टाइम है। कौन सा प्रोग्राम भाई? वही सुपर हिट सॉन्ग्स जो आप सुन रहे थे, एक के बाद एक अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आपने एंजॉय किए। और फिलहाल मैं अब से कुछ ही देर में फिर एक बार आपके साथ आ जाऊंगी एक न्यूज ब्रेक, और उसके बाद आपके संदेश और आपके कॉल्स का इंतजार करूंगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे म्यूजिकल, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है।
1: नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए। उन्होंने भारत की कुछ प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया, जिनमें हरित क्षेत्र का विस्तार और कई वन्य जीवों की वृद्धि शामिल है। श्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए श्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विश्व पर्यावरण दिवस पर आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में व्यापक वृक्षारोपण हुआ है, फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के क्रम में आज पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू हुआ है। पर्यावरण की रक्षा मातृभूमि के प्रति सर्वोच्च दायित्व है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग, मौसम चक्र में परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए राज्य के पात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं 7 जून से 30 जून 2026 तक प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुरस्कार के लिए केवल नियमित रूप से कार्यरत ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिकाएं पात्र होंगे जिन्होंने न्यूनतम 15 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो तथा जिनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 5 वर्ष का समय बाकी हो। संविदा शिक्षक, शिक्षा मित्र, सेवानिवृत्त शिक्षक तथा पूर्व में राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। और अंत में लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप दोपहर 12 बजे सुन सकते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

बिल्कुल ऐसी सूरत अगर दिख जाए तो नजरें वाकई में हटती कहाँ है। 11:04 हो रहे हैं सुबह के और आप सुन रहे हैं क्या कौन सा प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे। जी हाँ, आपके संदेशों का मैं कर रही हूँ बेसब्री से इंतजार। मैं हूँ आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला, और आपकी बातें, आपके फ़ोन कॉल्स, ये सब कुछ यकीन मानिए हमें बहुत अच्छा फील कराते हैं। और साथ ही साथ आपकी जो दोस्त, आपकी जो

जो भी सर्कल आपको सुन रहा होगा ऑब्वियसली वो भी बहुत अच्छा फील करेंगे. तो बस ये अच्छा अच्छा फील करने का और अच्छे अच्छे गाने इन्जॉय करने का टाइम है. तो बस अगर कहीं निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, घर से निकल रहे हो, तो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेना बिल्कुल मत भूलें. और साथ ही साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस है भाई, आज के शुभ मौके पर एक पेड़ लगाना तो बनता है. तो ये भी प्लान करेगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मिल करके. और साथ ही सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, क्योंकि इस पर कार्यक्रम एक से एक बढ़कर आप तक पहुँचते हैं और गाने तो बस क्या कहने. चलिए इंजॉय करते हैं ट्रैक, इसके बाद वापस आते हैं.

0: और वाकई तारीफ के शब्द कम पड़ जाते हैं अगर कोई वाकई इतना काबिल तारीफ हमारे सामने आ जाता है। और ऐसे काबिल तारीफ होती है आपकी वो सोच, आपकी वो पहल जो आप किसी खास मौके पर करते हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक कॉलर इनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ, ग्राम पोस्ट परसेंडी कैसरगंज बहराई से।
0: सत्यम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम।
0: तो कहिए, क्या कहना चाहते हैं आज आप?
1: सभी सुनने वालों को और आपको, आपके पूरी टीम को, पूरे देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैम।
0: थैंक यू, आपको भी विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आपने कोई वृक्ष लगाया, कोई पेड़ लगाया?
1: अभी तो नहीं लगाया, बाकी लगाऊंगा, देखूंगा धीरे धीरे। वैसे तो मैं ब्लाइंड हूँ, किसी की मदद लूंगा।
0: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप संदेश क्या देना चाहते हैं आज आप सत्यम जी?
1: संदेश यही रहेगा, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर पेड़ है तो जीवन है, जैसे कहा जाता है ना कि जल है तो जीवन है, इसीलिए पेड़ है तो जीवन है। वैसे तो हर चीज जीवन के लिए अच्छा होता है, लेकिन पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं?
1: पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, और सबसे बड़ी बात तो है कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं।
0: फल, फूल, छाया, फल, फूल, छाया, हवा, ऑक्सीजन। और जरूरत पड़ने पर जब हम पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं और कुछ पेड़ काटते हैं।
1: पेड़ की ऐसी भूमिका है मैम कि शब्दों में कहना मुश्किल है।
0: बिल्कुल, इसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है वाकई में। और हम सभी को पेड़ पौधे बढ़ चढ़ कर लगाने चाहिए ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित हो पाए, है ना? थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, आप भी क्या आज का दिन इसी तरह से बढ़ चढ़ कर सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या आज आप भी अपने छोटे अपनों से जो छोटे हैं उन्हें

0: अपने पर्यावरण को संरक्षित करने की वो प्रेरणा दे रहे हैं, उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, हमें बताइए। हमारी जो ईमेल आईडी fmakashwani@gmail.com।
1: ना मैं समझा ना मैं जाना,

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जी आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो जो है धड़कन लखनऊ की, और इस समय अपने दिल की धड़कनों के साथ हमारे साथ लाइन पर कोई है। हेलो
3: हेलो
2: हेलो जी, अपना नाम बताइए। गुड मॉर्निंग
3: जी। गुड मॉर्निंग दीदी, सभी सुनने वालों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, और आपको भी प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
2: स्वागत है आपका। तो कहिए आज संदेश आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में क्या कहना चाहते हैं
3: जी? पहले नाम तो बताएं। मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा फुलवारी बाजार जिला बाराबंकी से।
2: मैं वही सोच रही थी कि आपने ऑफ एयर तो इतना नाम बताया और ऑन एयर नहीं बताया। मैंने कहा चलो देखते हैं कि कब बताते हैं नाम।
3: नहीं, परिचय सबसे परिचय पहले देना चाहिए मैम, कहीं भी हो।
2: देखिए आप पीछे रह गए परिचय देने में।
3: सही बात है। हाँ तो संदेश बताएं दीदी।
2: हाँ जी संदेश बताइए
3: जी। संदेश मेरा ये रहेगा, जैसे मतलब गर्म बहुत पड़ रही है तो पानी नींबू पानी पीते रहें, बेरिन नींबू और पुदीना और नींबू पुदीना और बेटन ठंडा हल्का पानी ले रहे तो उससे पेट में थोड़ा जो है बढ़िया रहेगा, ठंडापन बना रहेगा।
2: तो ये बताइए नींबू

0: पानी देगा कौन? कोई ऐसा भी होना चाहिए ना कि बस कभी नींबू पानी, कभी पुदीने का पानी, कभी आम का पना बना के देता रहे और हम पीते रहे।
1: जी, और हेलो दीदी।
0: हाँ जी,
1: ये कहना चाहता हूँ दीदी, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और दीदी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब रेडियो सेट पे आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा, मतलब दो दिन से।
0: अच्छा, हम पता करते हैं और डेफिनेटली आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे।
1: हेलो
0: जी, जी
1: कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ दीदी, जो आपका प्रोग्राम सुन रही है।
0: अच्छा, ले लीजिए नाम।
1: सबसे पहले मोहम्मद सईद चाचू हैं, चप्पल वाले, जूते वाले, और मोहम्मद रियाज भाई हैं, और मोहम्मद सद्दाम भाई हैं, और मोहम्मद सफार भाई, मोहम्मद तेज भाई हैं, तमाम परवीन
0: जी, बिल्कुल। तो इन सभी लोगों को आपकी तरफ से प्यार भरा नमस्कार भेजते हैं और ये गाना भेजते हैं मोहम्मद कैफ जी।
1: जी, जुमा मुबारक हो सबको।
0: थैंक यू, थैंक यू सो मच।

नफरत कैसे हो सकता है। और हमारे स्टूडियो में शिरकत कर चुकी है बड़ी प्यारी सी पर्सनालिटी, और वो कौन है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी चलते चलते एक बार, लेकिन फिलहाल अभी तो बहुत समय बाकी है आपसे बात करने के लिए, आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। मनोज बंसल का हमारे पास मैसेज आया भाई, क्या लिखते हैं मनोज बंसल जी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, हरियाणा से आप हमें मैसेज भेज रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये लिखते हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना होगा ऐसा इनका कहना है, और ये जिम्मेदारी हम सिर्फ सरकार के ऊपर ही नहीं डाल सकते, हमारी खुद की अपनी जिम्मेदारी।

बचाएंगे। इसी संकल्प के साथ आपको विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और ये है वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी जिला सीतापुर से, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, इन सभी का नाम लिखा है, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, एमन नवाब अपनी आम की बाग में है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप सब इसी तरह से इंजॉय करते रहिए आज का दिन, और यकीन मानिए कि ये जो स्पेशल डेज होते हैं ये हम सबके लिए ख़ास होते हैं, क्योंकि ना ही सिर्फ हम एक दूसरे को आज के दिन की अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, बल्कि हमें आज के दिन की इम्पोर्टेंस को भी बताना है, एक दूसरे से शेयर करना है कि आज का दिन हमारे क्यों इम्पोर्टेंट है। और आज के दिन को मनाने में जो हम वृक्षों को संरक्षित, पर्यावरण को संरक्षित करने की जो कसम खाते हैं, यह कसम सिर्फ एक कसम नहीं, इसको निभाना भी है, यानी अमल में लाना भी उतना ही जरूरी है। और फिलहाल आप सबके मैसेजेस यूं ही पढ़ती रहूंगी और आपके कॉल्स भी लेती रहूंगी। और उसके लिए क्या करना है भाई, 0522 ये हमारे लखनऊ का कोड है, इसे मिलाइए। और नंबर क्या है, 2238 4542 2238 8552, ये दो नंबर से आप इन्हें मिला सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। फिलहाल अभी एक ट्रैक सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, आपसे ढेर सारी बातें करने हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे म्यूजिकल।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

गुलफशा सिद्दीकी का हमारे पास मैसेज आया है और ये लिखती है, हेलो गुड मॉर्निंग रोली मैम, मैं गुलफशा सिद्दीकी संडीला से, आप की आवाज़ बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है गुलफशा जी। ये लिखती है, मेरा संदेश है कि जब हम किसी भी बर्तन का इस्तेमाल करें तो उसे फिर धो लेना चाहिए और खाना खाने से पहले अपनी प्लेट ज़रूर धो लेना चाहिए, प्लेट को धोकर ही खाना चाहिए, खाना निकालना चाहिए उसमें, बिल्कुल सही बात है, हाइजीन पर्पज़ से भी ये सही रहता है और ऑब्वियसली हमें जो अपनी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते बैक्टीरिया वायरस जो भी है, ये जो हमारे पीछे पड़े रहते हैं ना, कभी कभी बीमारियाँ फैलाते रहते हैं, उन सबसे भी हमें छुटकारा मिलता है। और साथ ही साथ हमारे पास किसका मैसेज आया है, मैसेज आया है वारिस अली खान जी का, लिखते हैं, रोली जी आदाब। आदाब जी, लिखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, पर्यावरण बचाने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, साइकिल से हम फिट एंड फाइन भी रहते हैं, प्रदूषण भी नहीं होता है, कार पुलिंग करें, यूज एंड थ्रो वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधरोपण करें, उनकी देखभाल भी करें, सरकारी गमलों को देखकर आप अपनी कार रोककर उसे ना ले जाएं, मैंने लोगों को ऐसा करते देखा है, अगर किसी को पता चल गया तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, हमारा शहर सुंदर बना रहे और ये आदत ही मतलब बहुत ख़राब है, अगर माफ़ कीजिएगा अगर कोई भी लोग इस समय जो भी हमें सुन रहे हैं और कभी ऐसा होता है कि आप पब्लिक प्लेस पर जाकर के इस तरीके की कोई चीज़ करते हैं तो प्लीज़ ना करें, बहुत गंदी आदत है ये। और हमें हमेशा हमारे बड़े जन, हमारे अध्यापक यही सिखाते हैं ना कि हम अच्छी आदतें अपने अंदर धारण करनी चाहिए ताकि हमें देखने वाले जो हमारे छोटे जन हैं वो भी कुछ अच्छा सीख सके हमसे, प्रेरणा ले सके, मिसाल बन सके हम उनके लिए, है ना। हमारे पास रोशनी रावत जी का मैसेज आया है और बड़ी रोशनी के साथ इनका मैसेज फ्लैश हो रहा है, लिखती है कि गुड मॉर्निंग रोली मैम जी, आप कैसी हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा नाम रोशनी रावत है और ये बमना तहसील सफीपुर ज़िला उन्नाव से हैं और चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुनती हैं, सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसा इनका कहना। और ये लिखती है कि मेरा संदेश ये है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि मैंने पौधा लगा दिया है या लगाने जा रही हूँ तो मैं उनसे विनती करना चाहती हूँ, पेड़ पौधे लगाने के बाद भी इनकी देखभाल करना ना भूलें, ये ऐसा ना करें कि सिर्फ पेड़ पौधे लगा कर आप कहीं चले गए या आपने उसे छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो करना चाहिए। हमारे पास एमके राज जी का मैसेज आया है और लिखते हैं कि पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, जल बचाओ, जीवन बचाओ, प्लास्टिक कम, हरियाली ज़्यादा, एक पेड़ हज़ार सांसें। इन्होंने सुंदर पोएटिक अंदाज में हमें अपनी लाइंस लिखकर भेजी हैं, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये लाइंस भेजी हैं। और फिलहाल एक प्यारा सा ट्रैक एंजॉय करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, शायद अपने किसी कॉलर से बात करेंगे। फिलहाल मटर गश्ती आपकी अपने रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करिए।

0: और मटर गश्ती अगर बहुत सारी हो चुकी हो तो वापस आ जाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे
1: हैं?
0: श्रवण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है?
1: आवाज सर नेटवर्क कम पकड़ता, सरकारी सिम है।
0: अच्छा, तो कहिए क्या कहना चाहते हैं आज हमारे प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में।
1: यही कि सभी श्रोताओं को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, आज बहुत प्यारा दिन है और इस दिन दिवस की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं श्रवण जी, है ना?
1: नमस्ते सर।
0: अच्छा, इतना छोटा सा मैसेज पर

थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए और हमारे साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखेगा। तो दोस्तों, श्रवण कुमार जी ने कहा कि भाई विश्व पर्यटन दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे पास मैसेज भी बहुत सारे लोगों का आया हुआ है, तो फिलहाल ये गाना एंजॉय कर लें और उसके बाद वापस आते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ते हैं।

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर मेरा सभी श्रोताओं से महत्वपूर्ण संदेश है कि सिर्फ बातें ना करें, आज के दिन अपने हाथों से कम एक पेड़ तो जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करने का संकल्प लें। ये आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा सबसे बड़ा उपहार होगा। बिल्कुल सही बात है, आने वाली पीढ़ी के लिए हम उन्हें कितनी सारी चीज़ें दे सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं, उन्हें फ्रेश हवा दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, अगर हम पेड़ लगाते हैं तो, है ना। और इन्होंने भी पोस्टर डिज़ाइन करके भेजा है और उसमें लिखा है, आओ मिलकर करें ये प्रण, स्वस्थ पर्यावरण सुरक्षित जीवन। और साथ में लिखा है, पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, जल बचाएं, जीवन सजाएं, स्वच्छ हवा, स्वच्छ धरती, यही है हमारी असली समृद्धि। छोटे प्रयास, बड़ा बदलाव, आज से शुरुआत करें हम सब। बहुत बहुत प्यारा मैसेज है, थैंक यू सो मच महेंद्र जी हमें मैसेज भेजने के लिए। और राजेश यदुवंशी जी का मैसेज मैंने पढ़ दिया है। हमारे पास राम मोहन विश्वकर्मा जी का मैसेज आया है, लिखते हैं, आई एम राम मोहन विश्वकर्मा, ये लिखते हैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से, और ये लिखते हैं, हम सबको जायदाद से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे। बिल्कुल सही बात है, जायदाद भी काम आती है लेकिन उससे कई ज़्यादा काम आता है पर्यावरण, है ना। क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं, अगर उसमें रहने लायक हवा नहीं होगी, रहने लायक माहौल नहीं होगा, तो हम कैसे रहेंगे, ठीक से रह ही नहीं पाएंगे, है ना। बाबू अंसारी जी लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी आज मेरा संदेश कोई नहीं है तो इस रेडियो पर इसकी फ्रिक्वेंसी इनको नहीं मिल रही है शायद। देखिए, ट्राई करिए, हो सकता है कि मिल जाए, कोशिश करिए। कोशिश करते रहने से हमारी जीत होती है, मेरा ये मानना है ना। अगर कोई भी चीज़ हमको नहीं मिल पा रही है ना, तो हमें उसके लिए बस निराश नहीं होना है, हमें लगे रहना है, करते रहना है, कोशिश करते रहिए कैसे भी करके, और देखिए जीत आपकी होगी अंत में। इसके साथ ही हमारे पास मैसेज आए हैं किनका, आशुतोष मिश्रा का, लिखते हैं, पर्यावरण दिवस की आप दोनों या सभी सुनने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। ये लिखते हैं, इस वीडियो में दिखाए गए प्लांट्स ही मेरे हर समय के साथी हैं। कौन सा वीडियो, अच्छा इन्होंने एक वीडियो भेजा है, इसके साथ अटैचमेंट भी भेजा है मेल के साथ में, और इसमें इन्होंने ऑब्वियसली अपने घर के गार्डन की फोटो वीडियो भेजी होगी, मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ, माफ़ कीजिएगा आशुतोष जी, लेकिन मैं आपका मैसेज पढ़ देती हूँ। हाँ, ये लिखते हैं, हम सबको मिलकर के प्लांट्स लगाने होंगे ताकि बढ़ते वैश्विक तापमान में कुछ कमी आ सके। वैसे तो ज़मीन में लगाने चाहिए लेकिन शहर में ज़मीन ना रहने के कारण गमला ही सही। आप लोग बहुत अच्छे से प्रोग्राम कर रहे हैं, थैंक यू। ये लिखते हैं, मैं लगभग 20 सालों से नियमित FM रेनबो का श्रोता हूँ। आज फैजुल्लागंज में रहने वाले मेरे दोस्त कार्तिक सिंह की वेडिंग एनिवर्सरी है, भाई हमारी तरफ से उनको वेडिंग एनिवर्सरी मुबारक हो। आज का दिन, आने वाला हर दिन उनकी ज़िंदगी में, उनकी शादी में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर के, हम यही चाहते हैं, हम यही विश करते हैं। हमारे साथ ब्रह्मेश सोनी जी का मैसेज आया है, मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी सदियों ये लिखते हैं, सदियों का सीजन आने वाला है, शादियों का सीजन आने वाला है, ओके फाइन। तो सभी से ये कहना है कि उतना ही थाली मिले जितना कि आप वेस्ट ना करें, ठीक है, इतना कर बाराबंकी से। अच्छा, ये आजकल की जो लैंग्वेज है ना, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे तो कैसे समझ में आएगा। मनोज बंसल जी ने फिर से मैसेज भेजा, भाई क्या बात है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना होगा, जिम्मेदारी हम सभी की है। थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमें इतने सारे मैसेजेस किए, अभी भी कुछ मैसेजेस हैं जिनको के पढ़ना मुश्किल है। संतोष चौरसिया, मनोज बंसल, मोहम्मद आसिफ का हमारे पास मैसेज आया है, तेलंगाना से सोनू परवाना का आया है, आंचल सेठ का आया है, राज जी का आया है मैसेज, और एमन नवाब का भी मैसेज आया। थैंक यू सो मच आप सभी को, आपने हमें मैसेज किया, हमें अपना कीमती समय दिया और हमसे अपना प्यार साझा किया। सबसे बड़ी बात है किसी के साथ अपना वक्त शेयर करना, अपना प्यार और अपना साथ शेयर करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर आपने ये किया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों, देखते ही देखते समय का पता नहीं चला कब बीत गया, लेकिन आपसे वादा करती हूँ कि मैं फिर किसी दिन किसी और समय आपसे मुख्य प्रोग्राम में मिलने ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए आप बिल्कुल अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे और ये गर्मियों के सीज़न में खाना पीना ठीक से खाएंगे और हंसते मुस्कराते रहेंगे, साथ में मुझे भी याद करते रहेगा, FM रेनबो को याद करते रहेगा। थैंक यू सो मच। अगला प्रोग्राम आपके लिए फातिमा लेकर के आ रही है, तो बस उनके साथ रहिए और एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की। टेक केयर, रोली कहती है टाटा बाय।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए उनका काम सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने हमेशा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित

सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से अल्पकालिक उधार दर या रेपो दर को 5.25% पर तटस्थ रुख के साथ बनाए रखने का निर्णय लिया है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी सुरक्षा बल की वास्तविक शक्ति उसके प्रशिक्षित, अनुशासित और तकनीकी रूप से दक्ष कार्मिक होते हैं। ऐसे में ये आवश्यक है कि सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक और तकनीक आधारित बनाया जाए। कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रांतीय आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी पीएसी एसडीआरएफ तथा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, प्रशिक्षण अवसंरचना, विकास एवं भावी कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ प्रदेश की सुरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और इन्हें भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। वाराणसी में ब्रिक्स देशों के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक जारी है। बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग के विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक के दौरान रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संस्कृति आधारित सतत विकास तथा जन से जन संपर्क को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। बैठक का समापन आज होगा। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242।
2: नमस्कार आदाब। 100.7 एफएम रेनबो पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है। आपकी होस्ट फातिमा। वक्त हो गया फटाफट आपको वक्त बताने का। 12:04 और कुछ सेकंड्स हमारी स्टूडियो की कुकू क्लॉक में। ये टाइम है प्रोग्राम स्वयं सिद्धा का। जी हाँ, आज है शुक्रवार का दिन, तो आज प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में क्या कुछ है, डिस्कशन का मौजू क्या है, सब बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉजिटिव नोट जिस पर आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का, और वो ये है कि भाई अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी ले आइए कि चलते फिरते भी आप जिससे भी बात करें, चाहे वो आपका नोन हो या अननोन, आपके एंड से निकला हुआ, आपके मुंह से निकला हुआ हर एक अल्फाज अगले आदमी को किसी न किसी पॉइंट पर हिट कर जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव कर जाए। देखिए, ये जो कुछ पल कुछ क्षण आप दे सकते हैं ना अगले को, ये इतने इत्मीनान भरे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस इसी नोट पर आगाज़ करेंगे इस प्रोग्राम का और आज के इस दिवस की। जी हाँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसकी आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। और एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है कि भाई हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है। तो बस इसी नोट पर आगाज़ करेंगे इस प्रोग्राम का एक बेहतरीन से ट्रैक के साथ। लेकिन उस ट्रैक को आप तक पहुँचाने से पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे

0: आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 एफएम रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

ऑल राइट, 12:10 का वक्त हो गया है और उम्मीद है कि अब तक सब लोग नाश्ता कर चुके होंगे. जी हाँ, कई लेट राइजर्स होते हैं ना, जिनको नाश्ता करने में बहुत देर हो जाती है, दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है. तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ नाश्ता का टाइम आप ऑलरेडी गंवा चुके हैं, तो थोड़ा सा जागरूक हो जाइए इस बारे में भी. अच्छा, फ़िलहाल आज का जो प्रोग्राम है उससे जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं. भाई, आज स्वयं सिद्धा में हम सेलिब्रेट करेंगे उन फीमेल्स को, उन विमेन को, उनके काम को जो वर्किंग भी हैं और जिन्होंने बहुत अपने एंड पे, अपने स्तर पे जो भी हो सका पर्यावरण के लिए किया और काफ़ी सराहनीय काम किया है उन्होंने. देखिए भाई, अगर हम मतलब बहुत ही जनरलाइज्ड वे में बात करें तो कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है. पर्यावरण प्रबंधन और विकास में महिलाओं का योगदान बेहद ज़रूरी है. इतिहास से लेकर प्रेजेंट टाइम तक अगर हम माने तो भाई कहा जा सकता है कि महिलाओं ने साबित कर दिखाया है. बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं भारतीय इतिहास में, कई ऐसी महिलाओं का नाम दर्ज है जिन्होंने ख़ास तौर से पर्यावरण के लिए तमाम स्टेप्स, तमाम कदम उठाए हैं और ख़ासकर से आदिवासी महिलाओं ने वन संपदा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. तो ऐसी कुछ महिलाओं का जिक्र हम आज इस प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे आपके साथ और आप से उन महिलाओं के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको भी साझा करेंगे. लेकिन ये सब जानने के लिए आपको रहना पड़ेगा कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर. और फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का और उसके बाद बातें हमारी कंटिन्यूड रहेंगी. सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग.

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
4: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
5: RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा,
6: जानो फिर मानो।

अगर हम अपनी संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को देखें तो साफ झलकता है कि प्राचीन काल से ही महिलाएं किसी न किसी बहाने से पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। भारत में महिलाओं ने पर्यावरण के प्रति मनुष्य के लगाव को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जब इन आंदोलन में ये सब महिलाएँ कनेक्ट हुई तो ये मतलब इन्होंने अपना जो जीवन है उसको समर्पित कर दिया पर्यावरण के लिए। अब इस फेरिस में अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो राजस्थान का खेजड़ली आंदोलन महिलाओं में स्थित पर्यावरण चेतना को सामने लाने का एक सशक्त उदाहरण है। अब हुआ ये था कि भाई उस दौर में सन 1730 की बात है तकरीबन, ये उस दौर में जो महाराजा थे जोधपुर के, उन्होंने मतलब किसी वजह से उनको लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए गांव गए उनके सिपाही। लेकिन एक महिला थी उसी गांव की, अमृता देवी जी, तो इन्होंने काफ़ी विद्रोह किया और विरोध किया इस बात का कि पेड़ों को नहीं कटने देना चाहिए, और अपने साथ बाकी कई महिलाओं को साथ में जोड़ा, जो आगे चल करके सब मतलब मिल करके सब ने इस चीज़ के ऊपर, इस बात पर विरोध किया कि अपने इर्द गिर्द के जो पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, उसे हम नहीं काटने देंगे और उसको उसका संरक्षण किया। इसके अलावा अगर इस तरीके से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो चिपको आंदोलन, जी हाँ, हम सब इस आंदोलन से इत्तेफाक रखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये आंदोलन पेड़ों को बचाने का एक ऐतिहासिक और नायाब संघर्ष है। इस आंदोलन की मुख्य संचालक महिलाएं ही थीं और गौरा देवी इस आंदोलन की प्रमुख महिला थी, जिन्हें चिपको आंदोलन की जननी भी कहा जाता है। गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर पेड़ों से चिपक कर खड़ी रही महिलाएं, और मजबूत इरादों को दिखाया, उस मजबूत इरादों की जो झलक थी वो दिखी उनके इस अप्रोच के साथ, और फाइनली सबको हार माननी पड़ी है और

इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और आंदोलन मेरे जहन में आ रहा है और काफ़ी ही फेमस भी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। पर्यावरण और विकास के नए पैमानों को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया था। ये आंदोलन आम लोगों के बीच काफ़ी चर्चा में रहा है। मेघा पाटकर ने इस आंदोलन में सक्रिय मुख्य भूमिका निभाई है और वो वर्तमान में भारत की प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन रिबन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा उन्हें

आई है और वो वर्तमान में भारत की प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन रिबन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा उन्हें कई स्वदेशी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सब महिलाएं कहीं ना कहीं इन्होंने सशक्तिकरण किया है, इन्होंने एम्पावरमेंट प्रोवाइड किया है हमारा जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए। तो इस तरीके की बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्टेड हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कनेक्टेड हैं। आपके आसपास आपके नेबरहुड में बहुत सी महिलाएं होंगी जो कनेक्टेड होंगी। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके बारे में हम आज शायद प्रोग्राम में डिस्कशन ना भी कर पाए, लेकिन हाँ, हम सब की बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिम्मेदारी है कि उनकी हम वैल्यू करें और उनके जो पर्सपेक्टिव है उसको समझें और उसको अपने दिनचर्या में फॉलो करें। तो बस इसी नोट पर एक और बेहतरीन सा ट्रैक इंजॉय करिए, रहिए कनेक्टेड हमारे साथ।

0: चलते चलते फिल्म का ये ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया 100.7 FM रेनबो पर. और मैं भी आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ, सुनाना ये चाहती हूँ कि अगले कुछ ही पलों में अब आज के इस विशेष दिन पर हम सुनेंगे बातचीत अनुराधा गुप्ता जी के साथ. लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है.
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो.
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण.
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.
5: मेघा, आज ना हमारे कार्यक्रम में आई हुई हैं अनुराधा गुप्ता जी, जो कि सोशल इनोवेटर हैं, वेलनेस मेंटोर हैं और संस्थापक हैं पृथ्वी इनोवेशंस की. और पता है वो क्या कहती हैं?
6: क्या?
5: पेड़ लगाएंगे तो रुमित्र बन जाएंगे. तो चलो इनका स्वागत करते हैं.
6: नमस्कार अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी लखनऊ में.
7: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी और सीमा जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है.
6: अनुराधा जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को आसान सी भाषा में बताइए कि मिशन लाइफ आखिर है क्या.
7: मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये बहुत ही अच्छा एक सुंदर सा विचार था जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2021 में उन्होंने इस विचार को लेके एक पहल शुरू करी. और 2022 में 2 अक्टूबर को मिशन लाइफ ऑफिशियली लॉन्च हुआ और हमारे पूरे विश्व ने इस विचार को अपनाया. और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसका अच्छा. संक्षेप में ये मतलब है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जीवन में अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल रखें. तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मिशन लाइफ में हमारे 7 बिंदुओं पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है. मैं जल्दी से आपको नाम बताती हूँ कि कैसे हम पानी के संरक्षण, सेव वाटर, सेव एनर्जी, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, कि हमारा जो खाने की जो पद्धति है, जो हमारे खाने का तरीका है, वो भी कैसे हम सस्टेनेबल बना सकते हैं. और फाइनली अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, जो बहुत ही अहम हिस्सा है इस पूरे मिशन का. और मैं एक प्यारा सा कबीरदास जी का दोहा है जो पूरे मिशन लाइफ का एक निचोड़ है, वो प्रस्तुत करता है आपके सामने. मैं श्रोताओं के बीच ये दोहा जरूर रखना चाहूंगी. साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए. कबीरदास जी ने इतनी प्यारी अपनी वाणी में इस बात को रखा है कि हम लोग जो एक ओवर कंजम्पशन की तरफ भाग रहे हैं, तो अगर हम सब लोग संतुष्ट हो जाएं, कंटेंटेड हो जाएं, हम भी खुश रहेंगे और हमारी प्रकृति भी हमेशा हरी भरी, सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ रहेगी.
5: अनुराधा जी, अभी आपने प्रकृति के बारे में इतनी अच्छी बातें कही, क्यों ना अपने श्रोताओं को कोई गीत सुनवा दें, आप क्या कहती हैं?
7: बिल्कुल, आपने तो मेरे मन की बात ले ली. एक बहुत प्यारा सा गीत है, आपने सुना होगा, ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल और हवाएं.

0: वाकई अनुराधा जी, बहुत ही खूबसूरत गाना है। और अभी आप हमें पहले बता रही थी कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल से संबंधित बातें, तो ऐसी कौन सी रोज़मर्रा की आदतें हैं जिन्हें हम अपनाकर अपनी जीवन शैली को तो स्वस्थ बनाएंगे ही और साथ में हम पर्यावरण की मदद भी कर सकते हैं?
1: मेघा जी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे सभी श्रोता सुन रहे होंगे और डेली हमारा जीवन शुरू हो जाता है, तो पूरे दिनचर्या में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख के, तो एक छोटा सा प्रिंसिपल है, आप सब ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करके ये तीन शब्द सुने होंगे, बट इसी को मैं थोड़ा सा बढ़ा के बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे अंदर रिस्पेक्ट, सब चीज़ों के लिए सम्मान अगर हमारे दिल में होगा तो जिसका हम सम्मान करते हैं हम उसको बर्बाद नहीं करेंगे या उसको दुख नहीं पहुंचाएंगे। तो मैं बस ये 10 प्रिंसिपल्स हैं जो 10 आर्स के नाम से मशहूर हैं, हमारी पूरी फिलॉसफी ये रही है। तो रिस्पेक्ट, रीथिंक, पुनः सोचें, विचार करें कुछ भी करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले। फिर रिवाइव, जो हमारी बहुत अच्छी कल्चरल जो रीतियां थी जिसमें पर्यावरण रचा बसा था, मतलब हम लोग बहुत सस्टेनेबल थे बिगनिंग ईयर्स की अगर हम बात करें, बट ओवर द ईयर्स हम लोग मतलब मूव कर गए सस्टेनेबिलिटी की तरफ से हटके, हम बहुत ज्यादा उपभोगी बन गए। तो रिस्पेक्ट करें, रीथिंक करें, रिवाइव करें अपनी पुरानी अच्छी आदतों को, रिपेयर करें। रिपेयर का कल्चर बिल्कुल चला गया, अब जो चीज होती है यूज एंड थ्रो, जरा सा भी कुछ फट गया तो लगता है नया खरीद दूंगा, क्यों दोबारा, चाहे जूता हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो रिपेयर कल्चर। फिर हमारा आता है रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज, बहुत ही अहम है, कोई भी संसाधन आप ले तो रिफ्यूज करना जरूरी है। एक्स्ट्रा पैकेजिंग, आजकल ग्लैमर की दुनिया हो गई है, सब लोग इतना ज्यादा पैकेजिंग करते हैं, इतनी सारी चीजें उसमें लग जाती हैं और वो हमारा वेस्टेज होता है, गिफ्ट के बाद वो सारा चीज हमारा वेस्ट में चला जाता है और सिंगल यूज है वो। और रिवाइव करें अपनी अच्छी आदतों को, अच्छे विचारों को, और एक अच्छी जीवन शैली जीने के लिए जो हमारे हमारे सभी पूर्वजों ने भी बताया है कि नेचर के साथ कनेक्ट कब होता है, जब हम सुबह उठें, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग करना, टहलने जाना, अच्छा खाना खाना, जो लोकल हमारा फूड है जो हमारे आसपास मिलता है, तो उससे हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं उनको भी मदद मिलेगी, और हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ तो बिल्कुल ही ना बढ़ते जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रोसेस्ड और केमिकल से भरा हुआ खाना अपने फ्रिजों में रख रहे हैं, खा रहे हैं, उससे हमारा, आप जानते हैं, आप

0: प्लास्टिक वेस्ट भी जनरेट हो रहा है
1: बिल्कुल, और बीमारियां भी कितनी बढ़ रही हैं,
0: बीमारियां भी बढ़ रही हैं बिल्कुल। और जो हमारा उत्पादन हो रहा है जब ये बनाया जा रहा है उनको प्रिजर्व करा जा रहा है, तो प्रिजर्व करने के लिए कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके उस खाने की और आप तक पहुंच सके, तो जितना ज्यादा हम ऑनलाइन, ये जो हमारा फूड जो चेन है पूरी हमारी सस्टेनेबल डाइट की तरफ से हम बिल्कुल हट गए, तो रिड्यूस रीयूज रिसाइकल के साथ साथ रिस्पेक्ट रीथिंक रिवाइव रिफ्यूज रिपेयर और रीपर्पस। अगर हमारा कोई चीज वेस्ट होगी, हमारे कपड़े हैं, पहले हमारी सब दादी नानी अच्छे से करती थी, क्यों सीमा जी आपको भी याद होगा आपके घर में कुछ भी चीज फट जाती थी तो दादी लोग फेंकने नहीं देते थे, कहते थे इसका पोछा बन जाएगा,
1: पुराने कपड़ों से नए कपड़े बना दिए जाते, कपड़े
0: बन थैला बन गया, पोछा बन गया, झाड़न बन गया,
1: कुछ भी इस्तेमाल हो जाता था, पंखे भी बनते,
0: पंखे बनते थे। तो अभी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, क्लाइमेट एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, तो मिशन लाइफ जो है हमें इन सब चीजों को जोड़ के कि कैसे हम अपने जीवन में सब चीजों का ध्यान रखते हुए ना केवल अपने को स्वस्थ रखें बल्कि अपनी धरा को भी स्वस्थ और साफ सुथरा और हरा भरा रखें, क्योंकि पेड़ पौधे जितने लगाएंगे, लगाने के साथ साथ उनका जितना ध्यान देंगे हम, जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या भीषण पैदा होती जा रही है वो कहीं ना कहीं मिटिगेट होगी।
1: जी
2: अनुराधा जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई थी कि 10 R मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और ऐसे ही कहते हैं ना, कुछ करने के लिए जब 10 हाथ इकट्ठा हो जाते हैं तो वह काम जरूर सफल होता है,
1: यानी कि सामूहिक प्रयास होता है,
2: सामूहिक प्रयास बिल्कुल।
0: और एक बहुत प्यारा सा गाना है, स्वदेश पिक्चर शायद देखी होगी हमारे सभी श्रोतागण ने, एक बहुत प्यारा सा गाना है, ये तारा वो तारा सब तारों की बात हो रही है, तारे का मतलब हम सब, तो हम सब जब मिल जाएंगे, हम सब यूनिक हैं, हमारे सबके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्षमता है बट हम कहीं ना कहीं बिखर गए हैं, तो जब सब मिल जाएंगे तो एक बहुत सुंदर आसमान, क्या हमारा धरा बहुत सुंदर हो जाए, तो चलिए सुनाते हैं वो गाना
2: बिल्कुल।

0: अभी हम लोगों ने गाने में सुना, तारे कितने अच्छे लगते हैं, और कहीं ना कहीं मैं सोच में पड़ गई कि क्या हमारा आसमान स्वच्छ बचा है। जब नए नए प्रयोग होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात चिंता का विषय बन जाती है। अब एक और मेरे मन में सवाल आपकी बात को सुन के आया, 10 हमारे आर्स हैं, तो आप रिड्यूस में ई वेस्ट के लिए आप श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि इसमें वो कैसे कमी ला सकते हैं जब प्रयोग करते हैं?
1: बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि आजकल हम लोग डिजिटल एज में जी रहे हैं
0: जी।
1: और जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी का साथ भी जरूरी है विकास के लिए, बट जब हम टेक्नोलॉजी के साथ की बात करते हैं तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, और जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं तो सबसे पहले एक मूल्यांकन करें कि क्या सच में हमें इसकी ज़रूरत है।
0: बिल्कुल।
1: और अगर ज़रूरत है तो अगर हमारे पास पुरानी पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो पहले हम उनको कैसे सही तरह से निस्तारित करें। तो उसको निस्तारित करने के दो ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं कि या तो हम जिसके पास नहीं है
0: हाँ।
1: उसको डोनेट करने की पहल करें, और या कोशिश करें कि अगर हमारा वही मोबाइल कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है उसमें तो उसको क्या हम रिपेयर करा सकते हैं, रिपेयर करा के क्या वो ठीक हो सकती है, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, चाहे हमारा डेस्कटॉप हो, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक और भी गैजेट्स हमारे घर में यूज़ होते हैं। तो रिपेयर का कल्चर बहुत ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल खरीद बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी खरीदें बहुत रिस्पॉन्सिबली खरीदें। डिस्पोज करने के लिए नॉर्मल गार्बेज में डाल देते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि उसमें बहुत तरह के ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, लेड होता है, सिलिकन होता है, आर्सेनिक होता है, कैडमियम होता है। रीपर्पस या रीयूज करने के लिए सही सही जगह पे,
0: सही हाथों में पहुंचे,
1: सही हाथों में पहुंचे, उसको नॉर्मल वेस्ट की तरह अपने घर के वेस्ट के साथ मिक्स ना करें।
0: हाँ, वो बात ज्यादा अच्छी लगी कि हम डोनेट कर दें।
2: बिल्कुल डोनेट
0: कर दें, हमने तो इस्तेमाल किया ही, साथ में हमने किसी को अगर इस्तेमाल के लिए दे दिया तो चीज काम भी आएगी, बचाव भी होगा हमारी प्रकृति का।
2: और अनुराधा जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, अक्सर क्या होता है ना हमारे घर में कि अब जैसे ये चलन हो गया है कि घर में चार कमरे हैं तो चार कमरे में अलग अलग टीवी होगा, तो लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ऐसे में बिजली का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा बिजली खर्च होती है, बिजली का बचाव भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना
1: चाहेंगे? मिशन लाइफ में सेफ एनर्जी एक अपने आप में बहुत बड़ा बिंदु रखा गया है, और जब हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली आती कहाँ से है, सबसे पहला सवाल ये उठता है। तो बिजली सब हमारे श्रोता जानते हैं कि बिजली हमारी कोयले से आती है, और कोयले में जब आती है तो हमारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, तो ये सारी जो ऊर्जा जो उत्पादन में जो हमारी क्षमताएं इस्तेमाल हो रही हैं, उसकी वजह से भी हमारी क्लाइमेट चेंज जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी निर्भर है। तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखें कि कहाँ पे हम बिजली के प्रयोग को सीमित कर सकते हैं। अक्सर जो आपने बात कही चार कमरों में लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, तो क्या हम एक साथ नहीं बैठ के टीवी देख सकते? क्या हम जब कमरे से निकल के बाहर जा रहे हैं तो क्या हम स्विच बंद नहीं कर सकते? ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें और सबको पता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, बट हम कर नहीं पाते। तो मिशन लाइफ का पर्पस ही ये है कि हम करने की तरफ अग्रसर हों। तो सेव एनर्जी में यही सारी चीज़ें हैं कि हम गैजेट्स भी खरीदें तो 5-स्टार एनर्जी रेटिंग देखें उसकी, खरीदते समय की एनर्जी रेटिंग क्या है, सही जगह से खरीदें, और बिजली का कोई प्रोडक्ट अगर हमारा वो हो गया तो उसको सही तरह से डिस्पोज करें, और सबसे पहले रिस्पॉन्सिबली हम हर चीज़ को यूज़ करें, अल्टीमेटली वही बात आ जाती है
0: जी। ये तो बहुत अच्छी आपने बात कही। इसी तरीके से एक और बात मेरे दिमाग में

0: आती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, ये भी एक बड़ा मुद्दा है आज के दौर में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
1: सिंगल यूज प्लास्टिक, बिल्कुल आपने ठीक कहा, हर चीज़ में, पैकेजिंग में, आप चाहे गिफ्टिंग हो, पैकेजिंग हो, कुछ भी सामान खरीदते हैं, तमाम हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल आ जाता है और वो किसी काम का नहीं होता। तो ये शायद पहल हमें खुद से करनी होगी कि कहाँ तक हम प्लास्टिक को रिफ्यूज कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: हम अक्सर बाजार जाते हैं तो इतनी सी जहमत नहीं उठाते कि हम अपने साथ थैले रख लें, चाहे मोटरसाइकिल से जा रहे हो, चाहे कार में जा रहे हो।
0: बिल्कुल सही कही।
1: बच्चों को भी मैं चाहूंगी कि मदर्स जो है, बच्चों को भी, बच्चों की तरफ से ये पहल होती है कि बच्चे अपने बैकपैक में एक थैला रखे रहें। हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस तो वो भी एक कुछ ना कुछ अपने गाड़ी में, कार में रखे रहिए थैला। तो जब भी आपको कुछ इमरजेंसी में भी खरीदना है तो आप पॉलिथिन नहीं लेंगे वेंडर, और कोई देता भी है आपको तो आप उसको मना करिए कि नहीं मेरे पास थैला है। तो सबसे सरल तो जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग करते थे कि जाते थे तो थैला लेके जा, दूध भी आता है तो दूध के पैकेट्स तमाम है, टेट्रा पैक्स तमाम है।
0: हाँ।
1: और सिंगल यूज प्लास्टिक में तमाम चीजें आती हैं, जितना भी हम जो चीजें फूड से रिलेटेड हमारे कंटेनर्स हैं, ब्लैक कंटेनर्स जो बहुत ही डेंजरस होते हैं, फिर फोक्स हैं, तो अब स्ट्रॉ जो होता था प्लास्टिक स्ट्रॉ जब हम कुछ पीते हैं, तो ये सारी चीजों को हम एक कंज्यूमर की तरह अवेयर हों और जागरूक होकर मना करें, जब भी हम कुछ उपभोग करें तो ये सब चीजों का उपयोग ना करें। तो हम रिफ्यूज जब तक नहीं करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म नहीं होगा, और रिफ्यूज करें, रिड्यूस करें, और साथ में उसको अगर आ जाती है तो रीयूज करते जाएं। अगर गलती से एक पॉलीथिन आ भी गया तो उस पॉलीथिन को ही हम पूरा हफ्ता पूरा महीना चलाते रहें, जब वो वेस्ट हो जाए तो उसको सेग्रीगेट करके डालें, उसको मिक्स करके ना डालें, ये बहुत ही जरूरी है।
0: हाँ, ये
1: हम
0: बात
1: अपने वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ,
0: जी ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि जैसे कि कहा जाता है कि जागरूक भी करती है सरकार समय समय पर कि जब हम अपने घर से कूड़ा बाहर निकालते हैं तो उसमें गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को अलग अलग कर दें।
1: जी,
0: रसोई से डस्टबिन तक का जो सफर होता है ये इसके लिए पूरी जिम्मेदारी होती है घर की महिला की। तो आप ये बताइए कि घर की महिलाएं भी मिशन लाइफ में अपना योगदान कैसे दे सकती हैं?
1: मैं तो चाहूंगी कि घर की महिलाएं नहीं, पूरा घर, पूरा परिवार प्रबंधन करे। हमारे सब लोग कचरे को जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सबकी उतनी ही जिम्मेदारी है। हमारा ड्राई कचरा जो रिसाइकलेबल है, प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हमारा लोहा लकड़ी, तो ये सारा हमारा ड्राई वेस्ट है जो रिसाइकल रीपर्पस हो सकता है, उसको हम अलग रखें और गीले कचरे के साथ कभी भी मिलाएं नहीं। और फिर हमारा एक होता है हजार्डरस कचरा, जो हमारी बैटरीज हैं, जो हमारे पेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हम यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, हमारे डाइपर्स हैं, सैनिटरी नैपकिन हैं, तो ये सब हम बिल्कुल अलग रखें। तो तीन कैटेगरीज में सेग्रीगेशन कायदे से होना चाहिए घर के स्तर पे भी, और सिस्टम भी वैसा ही होना चाहिए, सरकार की तरफ से भी ये पहल होनी चाहिए कि वो तीनों को अलग अलग ही ले जाने की व्यवस्था बनाए। तो पहली बात तो ये। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक व्यक्ति क्या कर सकता है कि अलग अलग रखने की कोशिश तो करें, मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है, बट क्योंकि आदत नहीं पड़ी है, आदत में लाए, ठीक है। और उसके बाद फिर खाद बनाने की जो पहल है, तो हमारा जितना भी सब्जी के छिकल है उससे कितनी सुंदर, सीमा जी और मेघा जी आपने कभी उपयोग कराए कि नहीं, बट इतनी सुंदर खाद
0: नहीं, मैंने कोशिश की खाद बनाने की, थोड़ा सफल हुई, लेकिन हाँ थोड़े से कई बार उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे में लगता है कि छुआ कैसे जाए, तो ऐसे में ग्लव्स पहन के हम इस्तेमाल करते हैं उनका, लेकिन कोशिश मैंने की। देखिए
1: तो वही मैं बता रही हूँ कि मिशन लाइफ बार बार इस बात के ऊपर जोर देता है कि हम खुद से करें, प्रयास करेंगे तो बदलाव आएगा। तो मैं वही कह रही हूँ कि खाद बना के आप अपने ही घर में, छोटे से आंगन में, घर आंगन को सुंदर सब्जियाँ, फल फूल आप गिफ्ट करिए, फिर अच्छी अच्छी ताज़ी सब्जियाँ गिफ्ट करिए, और इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और संसाधन भी बचेंगे, पानी की भी बचत होगी, बिजली की भी बचत होगी, क्योंकि तो सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं, मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जीवन का ताना बाना भी वैसा ही है और हमारे मिशन लाइफ भी वैसा ही है। तो ये जो सारे सात बिंदु हैं सारी कनेक्टेड हैं, कोई थीम अपने आप में इंडिविजुअल आइसोलेटेड थीम नहीं है, सब मिलजुल के एक स्वस्थ स्वच्छ जीवन शैली की तरफ हमें बार बार धक्का देते हैं कि आप जाइए और इसको अपनाना शुरू करिए।
0: अब थोड़ा सा गीत संगीत और कर लेते हैं, क्यों मेघा?
2: बिल्कुल
0: है ना, तो अब आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मुझे लगता है हम जिंदगी की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं और एक सुंदर जीवन शैली की बात कर रहे हैं, तो बहुत प्यारा सा गाना है, आपने सुना होगा, लव यू जिंदगी।
0: चलिए सुनवा देते हैं मेघा इनको, लव यू जिंदगी।

0: अनुराधा जी, बातें तो आपने ढेर सारी बताई, अब चलते चलते आप हमारी सखियों को क्या टिप्स देना चाहेंगी?
1: तो मिशन लाइफ में चाहूंगी हमारे सभी श्रोतागण इस बात का ध्यान रखें कि क्लाइमेट चेंज होने नहीं वाला है, हो रहा है, राइट? तो एक्शन हमें लेना है, कुछ आज से ही हमें ये सारी बातों को अपने जीवन में उतारना है। और कबीरदास जी का फिर से मुझे दुआ, मुझे कबीरदास जी बहुत पसंद है, उनकी सारी जो बातें हैं वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत बहुत लागू होती हैं। तो प्यारा सा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुर करेगो कब। तो हम टालते ना रहें चीज़ों को, प्रलय हो रही है, हम देख रहे हैं सारी चीज़ें किस तरह से हमारा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हमारी नदियाँ दूषित हो रही हैं, हमारे तालाब सरोवर सब खत्म होते जा रहे हैं, हरियाली खत्म हो रही है, फिर भी हम जग नहीं पा रहे हैं, हम सचेत नहीं हो पा रहे। तो बस करने की इच्छा होनी चाहिए।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमें और हमारे श्रोताओं को जागरूक किया, इस मिशन लाइफ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए।
1: आकाशवाणी लखनऊ को सबसे पहले मैं धन्यवाद जरूर देना चाहूंगी कि एक अवसर दिया कि हम लोग मिलके चर्चा कर सके। तो सीमा जी और मेघा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करते हुए।
2: हमें भी बहुत अच्छा लगा।
3: बारह बजकर 54 मिनट का वक्त और इस फ्रूटफुल टॉक के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी सारा माइंड में हमारे जो कहते हैं ना, जिसे कि हमारा जहन एक दूसरे डायरेक्शन में भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। कई बार हम कुछ ऐसी बातें सुन लेते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर होगा, मतलब आपकी जो डेली लाइफ है उसी को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और उसके बाद देखें आप अपने आसपास के पर्यावरण और इन ऑल कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। तो बस इसी नोट पर वाइंड अप करेंगे इस प्रोग्राम को इस बेहतरीन से ट्रैक के साथ और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की। और मुझे लग रहा है शायद एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, सो स्टे ट्यून्ड।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण आए 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व बैंक के सहयोग से 2,741 करोड़ रुपए की लागत वाली एयर शेड आधारित उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने पौधारोपण महाअभियान 2026 के अंतर्गत 35 करोड़ पौधारोपण महाअभियान के लोगों का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की प्राचीन परंपरा में निहित तत्वों को अपनाना होगा। उन्होंने कहा, जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानवता सुरक्षित रह पाएगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कुकरेल वन क्षेत्र से एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण के प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री तुलसीपुर व गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल, जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कल देवी पाटन मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। बोर्ड ने मंगलवार को उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में कमियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

All right, 1:04 का वक्त हो गया है और आपको बता दूं प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दिन पूरे विश्व को हमारे ग्रह पृथ्वी की रक्षा के लिए एकजुट होने का संदेश देता है। इस वर्ष 2026 की वैश्विक थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर अर्थात प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। यह थीम हमें ये याद दिलाती है कि पृथ्वी की रक्षा हमारे हाथ में है और हम सब मिलकर सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अवगत कराना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 5 जून 2026 को मार्स हॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। उक्त सेमिनार का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया और इसकी जो पूरी डिटेलिंग है इसके लिए हमारे साथ ही सर्वेश कनेक्ट हो रहे हैं सीधे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से हमारे साथ। तो आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ उनसे जो हमने बातचीत की उसके बारे में जानकारी लेने के लिए।

0: जी सर्वेश जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मतलब आप वहाँ हैं और हम यहाँ हैं।
1: मैं अभी मौजूद हूँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में
0: जी।
1: और जैसा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, होठों पे तेरी बात, तो मुझे लगता है आज केवल बात पेड़ों की होनी चाहिए, पर्यावरण की होनी चाहिए
0: जी,
1: और जो प्रकृति है उसकी होनी चाहिए। और यहाँ पर प्रोग्राम अराउंड 11 बजे शुरू हुआ था
0: जी
1: और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी रहे, 1 घंटे तक की उनकी उपस्थिति रही
0: जी
1: और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो पहले मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और आज का दिन जो है एक पेड़ माँ के नाम।
0: जी
1: तो आज एक दिन में 5 करोड़ जो पौधे हैं उनको लगाकर आज इस अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। और माननीय योगी जी ने बताया कि जो आने वाला मानसून सीजन है तो उसमें भी वन महोत्सव मनाया जाएगा
0: जी
1: और उसमें भी बहुत सारे हमें पौधे लगाने होंगे। और उन्होंने ये भी बात कही कि सिर्फ हमें पौधा लगाना ही नहीं है, उसका संरक्षण भी करना है। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही कि जल संरक्षण बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपनी आदतों में देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ब्रश करते हैं तो नल खुला छोड़ देते हैं,
0: जी
1: तो उन्होंने ये सब बातें कही। और धरती माँ की एक पुकार, पौधे रोप वो बारम्बार। और इस साल की जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए।
0: जी
1: और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आज विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ की लागत वाली भारत की पहली एयर शेड आधारित उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंध परियोजना की भी लॉन्चिंग की गई। और आगामी जो वन महोत्सव मनाया जाएगा उसमें 35 करोड़ पौधे और लगाए जाने हैं। और साथ ही साथ वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के लोगों का भी अनावरण आज किया गया और जिन बच्चों ने इस पुरस्कार जीता इस लोगों को बनाने में उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया।
0: जी
1: तो ये सारे कार्यक्रम है। और अभी की जो बात है, अभी टेक्निकल सत्र चल रहा है, अभी प्रोग्राम चल ही रहा है
0: जी,
1: और पिछले 9 वर्षों में 242 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। और श्रावस्ती जनपद में केन नाला गुलरा, वहां पर एक रामसर जो साइट्स होती है उसका भी उद्घाटन किया गया है। और मुख्यमंत्री जी ने आज कुकरेल रेंज में पौधारोपण करके इस महोत्सव की शुरुआत करी जो आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं
0: जी
1: आकाशवाणी लखनऊ का FM रेनबो धड़कन लखनऊ की,
0: जी
1: तो उन सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि पेड़ जरूर लगाएं और जब आप पेड़ लगाते हैं उसका संरक्षण भी करें, उसे पानी भी दें, खाद भी दें। बस यही एक मैसेज है मेरी तरफ से
0: जी।
1: और फातिमा आप कुछ पूछना चाहें तो बता सकता हूँ।
0: नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने तकरीबन हम तक सारी जानकारी हम तक पहुंचा दी है और काफी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे लिसनर्स को और हमें खुद भी दी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।
1: ओके।
0: ऑल राइट, तो सर्वेश जी से बातचीत करने के बाद अब वक्त हो जाता है कि भाई अब कुछ ही समय में आप तक इलाकाई खबरें पहुंचाई जाएं। आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहायशगाह पर आलमी यौमे माहौलियात 2026 के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत आम का पेड़ लगाकर शजरकारी की। इस दौरान वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरगीब से गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान रियासती हुकूमत ने माहौलियात और नेचर के तहत अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए कई खसूसी पेशकदमी की है। पहले ही साल 2017 में वन महोत्सव के मौके पर डबल इंजन हुकूमत ने 5 करोड़ शजरकारी के बड़े काम को अपने हाथों में लिया है। उन्होंने आवाम को आलमी यौमे माहौलियात की मुबारकबाद भी पेश की। वजीर आला ने कहा
1: कि उस समय तमाम चैलेंजेस हमारे सामने थे, न नर्सरी थी, न इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार के कोई अनुभव ही, लेकिन बाद में वन विभाग और प्रदेश सरकार के अन्य सभी विभागों ने मिलकर के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया और गत 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर वन महोत्सव के अवसर पर होने वाले वृक्षारोपण के क्रम में अब तक 242 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में प्रदेश सरकार ने सफलता प्राप्त की।
0: आज इस मौके पर चित्रकूट, गाजियाबाद, कानपुर देहात, जौनपुर, मऊ, अमरोहा और दीगर इजला में शजरकारी की गई। दरियासना एक दीगर प्रोग्राम में वजीर आला ने लखनऊ के कुकरैल जंगल हलके में शजरकारी करके रियासत गिर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस साल रियासत में एक दिन में 5 करोड़ पेड़ लगाने का निशाना रखा गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में आलमी बैंक के तावन से 2,741 करोड़ रुपए की लागत वाली एयर शेड पर मबनी उत्तर प्रदेश साफ हवा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। उन्होंने शजरकारी महाअभियान 2026 के तहत 35 करोड़ शजरकारी महाअभियान के लोगों का इजरा किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि माहौलियात के चैलेंजेस का सामना करने के लिए हिन्दुस्तान की कदीम रवायत में रचे बसे अंसर को भी अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जब कुदरत महफूज रहेगी तभी इंसानियत महफूज रह पाएगी। वजीर आला ने कहा
1: उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए या भारत जैसे देश के लिए जिसके बारे में कहा जाता है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य, और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ेगा, अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा, खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है, और पूरी दुनिया आज उन चीजों से चिंतित भी है और उनके लिए असमय घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी है।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज 3 रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। इस दौरान वो मुख्तलिफ समाजी तंजीम और अवामी राबता प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे, साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम और पार्टी अहदेदारों से मजाकरात भी करेंगे। वजीर दिफा आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ बायोयुग ग्रीन कमांड प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर दिफा आज आलमी यौमे माहौलियात के मौके पर कैंट वाके कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत शजरकारी भी करेंगे। बनारस में ब्रिक्स ममालिक के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग आज दूसरे दिन भी जारी है। मीटिंग में ब्रिक्स अराकीन ममालिक के नुमाइंदे सकाफती तआवुन की मुख्तलिफ अव्वलियत वाले शोबों पर गौरखोज कर रही है। मीटिंग के दौरान क्रिएटिव मईशत, सकाफती विरासत के तहफ्फुज, तहजीब पर मबनी हमी जहत तरक्की और आवाम से राबते को मजबूत बनाने जैसे मौजों पर बहस हो रही है। वाज़ह रहे कि सेशन का इफ्तिताह कल किया गया था जिसकी सदारत हिंदुस्तान हुकूमत के सकाफत सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने की थी। 2 रोजा इस मीटिंग का इख्तिताम आज होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने इम्तिहानी अमल को मजीद महफूज और शफाफ बनाने के लिए चेहरे की तस्दीक का निजाम मुतारिफ कराया है। कमीशन ने हाल ही में मुनक़िद होने वाले इब्तदाई सिविल सर्विसेज इम्तिहान और उस साल के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इम्तिहान में कामयाबी के साथ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि दरख्वास्त फॉर्म भरते वक्त जिस उम्मीदवार की तस्वीर अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार है जो दाखिला कार्ड के साथ इम्तिहानी मरकज में मौजूद है। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने अगस्त सितंबर के सेशन के लिए अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम में शिरकत के लिए खवातीन से दरख्वास्तें तलब की है। इसमें तुलबा, मुहक्किकीन, समाजी कारकुनान और किसी यूनिवर्सिटी या दीगर तालीमी या गैर तालीमी इदारे से वाबस्ता असातज़ा शामिल हैं। और महकमा मौसमियात ने लखनऊ समेत कई जिलों में आइंदा कुछ घंटे में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम साइंस मरकज के मुताबिक दारुल हुकूमत लखनऊ समेत रियासत के कई हिस्सों में मुतवस्सित से लेकर हल्के आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

1:22 का वक्त और फिल्म दिल है तुम्हारा से ये ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया 100.7 एफएम रेनबो पर। अच्छा, आज अभी कुछ देर पहले जैसे हमारी सर्वेश जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था प्रोग्राम ऑटो पे तेरी बात में जो डिस्कशन होना चाहिए वो पर्यावरण से जुड़ा होना चाहिए। बेशक हमने इस बात को बड़ा सीरियसली ले लिया और हमने सोचा कि भाई आज के वक्त में पर्यावरण संरक्षण जो है वो सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का मौजू है। जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोटी उम्र से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। हमारी ये जिम्मेदारी है, हम इसके लिए अकाउंटेबल हैं। लेकिन अब यहाँ पे आज मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे जानना चाहती हूँ, आपसे ईमेल्स इन्वाइट कर रही हूँ आपकी, कि आप हमें ये बताइए कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए आप कौन सा तरीक़ा अपनाते हैं, खेल खेल में किस तरीके से आप उनके अंदर प्रकृति प्रेम जागरूक करते हैं, उसको मतलब उनके अंदर किस तरीके से इसको डेवलप करते हैं। तो इसके लिए आपको ख़ास ज़्यादा पेंस नहीं लेने होंगे। fmakashwani@gmail.com इस मेल एड्रेस पर मेल करिए। जब तक मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके मेल्स का, आपको बिल्कुल इंतज़ार नहीं करवाऊँगी, आप तक पहुँचाऊँगी एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक। तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ। अच्छा, इसी बीच में हमारे पास एक मेल आ गया है, लेकिन हाँ, मोनू जी का मैसेज आया है हमारे पास। इन्होंने लिखा है, पौधा लगाएं, गर्मी दूर भगाएं और धूप से भी छांव फ्री में पाएं। क्या बात है। खैर, फिलहाल मोनू जी, अभी जो मैंने टॉपिक दिया है ना, उस पर ज़रूर अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा करिए। बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए आप कौन से तरीक़े अपनाते हैं, इस पर ज़रा अपने हमें पॉइंटर्स बताइए। अच्छा, इसके साथ हमारे पास रामराज जी का भी मेल आ गया है। इन्होंने लिखा है, हम सभी से निवेदन करते हैं, पेड़ लगाओ, सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम से लगाओ। हमारी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, तो अब टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे, एक बेहतरीन सा ट्रैक आप तक पहुँचाएंगे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: ऑलराइट, 1:30 का वक्त हो गया और हमारे पास ईमेल्स कुछ हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो पहला ईमेल जो मैं शामिल कर रही हूँ वो किसका है, अंजू ने मेल किया है। इन्होंने लिखा है, अगर हम होम अप्लायंसेस सोच समझ के यूज़ करें तो एनवायरनमेंट को हम सेव कर सकते हैं। सपोज अभी गर्मी में एसी की बजाय कूलर यूज़ करें तो हम हार्मफुल गैसेस से एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, क्योंकि जो गैसेस एसी और रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती हैं उससे ओजोन लेयर में होल हो जाता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। बट रेफ्रिजरेटर को काफ़ी यूज़फुल है, बट एसी सिर्फ हवा देते हैं और कोई काम नहीं है, बट इसके नुकसान बहुत है। ऑल राइट, ओके। अब एक अगर मार्केट में, ऑल राइट। तो हमें ऐसे ऑप्शंस, अंजू ने ये बताया है कि भाई हमें ऐसे ऑप्शंस तलाशने चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और पॉकेट फ्रेंडली भी हो। थैंक यू सो मच। फिलहाल आज जो हमारा टॉपिक था उस पर किसका मेल हमें प्राप्त हुआ है, ओके ये हमारे पास मेल आया है सल्तनत का, लखनऊ से। इन्होंने लिखा है कि बच्चों के नाम से हमने पौधा लगवाया था, ओके पिछले साल इन्होंने लिखा है कि हमने अपने घर में जितने बच्चे हैं उनके नाम से एक एक पौधा लगवाया था और उन्हीं से लगवाया था, उन्हें हमने इन पौधों को रोज़ पानी देने की जिम्मेदारी दी। पौधे की ग्रोथ को मापने का एक खेल बनाया है, इससे बच्चे

हमारे जो हैं वो नेचर के प्रति और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं, और अब तो वो आ करके अपने जो अच्छे बुरे अनुभव हैं वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं, और जब कहीं फंस जाते हैं ना तो वो उसका सल्यूशन भी चाहते हैं। गुड, वेरी गुड, मतलब बड़ा अच्छा लगा ये जान करके कि पिछले साल आपने ये इनिशिएटिव लिया था। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास एक मेल आया है, ये आयशा का है, बाराबंकी से। इन्होंने लिखा है, हमने अपने घर में सूखे और गीले कचरे के लिए अलग अलग डिब्बे रखे हुए हैं। हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को सही डिब्बे में कचरा डालने का निर्देश तो हमने दिया हुआ है, लेकिन इसको हमने खेल में तब्दील कर रखा है। ओके, खेल कैसे खेलाते हैं? ओके, हर सही अटेम्प्ट के लिए एक स्टार हम देते हैं अपने बच्चों को। ओके, ऑल राइट, इन्होंने बाकायदा लिखा है कि बहुत प्रॉपरली इन्होंने चार्ट बना रखा है, तो जो भी बच्चा ये अटेम्प्ट करता है, सही डिब्बे में कचरा डालता है ना, वो ईमानदारी से जाके उस चार्ट पे टिक कर देता है, और इसके बाद हम मंथ के एंड में उनको छोटे छोटे कुछ गिफ्ट्स देते हैं, जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं उसको गिफ्ट्स मिलते हैं। ग्रेट गोइंग, वेरी गुड आयशा। इसके बाद हमारे पास एक और मेल आया है, ये हमारे पास सऊद का आया है, लखनऊ से। इन्होंने लिखा है, हमारे घर में 5 बच्चे हैं और हम अपने घर में एक वाटर हीरो नाम की प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। ओके, कैसे करते हैं ये? कम पानी इस्तेमाल करने वाले बच्चे को छोटा सा इनाम देते हैं एंड ऑफ द मंथ, और उनसे कहते हैं कि भाई आप बताइए कि जल संरक्षण का महत्व आपको किस लेवल पे समझ में आया है। ऑलराइट, हर महीने ये करते हैं, तो जो भी

और इसके बाद हम मंथ के एंड में उनको छोटे छोटे कुछ गिफ्ट्स देते हैं, जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं उसको गिफ्ट्स मिलते हैं। ग्रेट गोइंग, वेरी गुड आयशा। इसके बाद हमारे पास एक और मेल आया है, ये हमारे पास सऊद का आया है, लखनऊ से। इन्होंने लिखा है, हमारे घर में 5 बच्चे हैं और हम अपने घर में एक वाटर हीरो नाम की प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। ओके, कैसे करते हैं ये? कम पानी इस्तेमाल करने वाले बच्चे को छोटा सा इनाम देते हैं एंड ऑफ द मंथ, और उनसे कहते हैं कि भाई आप बताइए कि जल संरक्षण का महत्व आपको किस लेवल पे समझ में आया है। ऑलराइट, हर महीने ये करते हैं। तो जो भी नेचर की तरफ जो उनकी जिम्मेदारी है, नेचर से जो उनका लगाव है, अगर वो सीख जाते हैं तो वो उनके साथ लाइफ लॉन्ग चलता है। तो इसी नोट पर एक और बेहतरीन सा ट्रैक आप तक पहुँचाएंगे। आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

दिलवाले फिल्म का ये ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया 100.7 एफएम रेनबो पर और प्रोग्राम ऑटो पे तेरी बात चल रहा है। आप एंजॉय कर रहे हैं आज इस प्रोग्राम को मेरी यानी फातिमा के साथ और आज हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके ईमेल्स इनवाइट कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में कि भाई बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं आप। रोशनी रावत जी, गुड आफ्टरनून। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पता है कि आप लोग मुझे मिस करने लगते हैं, इसीलिए देखिए मैं ऑन एंड ऑफ आ जाती हूँ। ऑल राइट, ज़िला उन्नाव से आपका मेल हमें प्राप्त हुआ है। इन्होंने लिखा है, मेरे घर में दीदी के बच्चे हैं, उनको मैं हमेशा छोटी छोटी बातें बताया करती हूँ, पेड़ कैसे लगाते हैं और देखभाल कैसे करते हैं सब मैं उन्हें सिखाती हूँ। इसके अलावा जब भी मैं गाँव जाती हूँ तो मेरा समय ज़्यादातर उन्हीं के पास गुजरता है, वहाँ बैठ कर अकेले में ही बातें करते हैं। ओके, पेड़, अच्छा इन्होंने कुछ पेड़ लगाए हैं अपने गांव में, वहीं पे इनका टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। साथ ही लिखा है, आज मेरी दोस्त मेरे नाम से एक पौधा लगाएगी। ऑल द बेस्ट आपकी दोस्त को और उसको ढेर सारा अजर मिले इस एक्ट का, बस हम यही कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जय जी का मेल आया है उत्तम नगर दिल्ली से। इन्होंने लिखा है, पर्यावरण में हमारे चारों ओर मौजूद हर चीज़ शामिल है, हवा, पानी, ज़मीन, पेड़ पौधे और जीव जंतु। ये हमें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन देते हैं। अगर हम आपके पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखें तो सभी स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, ये सीख ये देते हैं अपने घर पे मौजूद बच्चों को, मतलब ये सब बातें ऐसी नहीं है कि जो एक पर्टिकुलर डे के साथ एसोसिएटेड हो, ये सब बातें आपको ऑन एंड ऑफ करती रहना पड़ेंगी, तभी ये सब चीज़ें इम्पैक्ट लाएंगी हमारी लाइफ में। डे सेलिब्रेट करने का तात्पर्य सिर्फ ये होता है ताकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, हम उन्हें सेट कर सकें उस पूरे साल के लिए या कुछ टेन्योर के लिए और उसके बाद उस पर काम कर सकें। क्योंकि अगर एक दिन दे करके आप कोई गोल नहीं सेट करेंगे ना, तो प्रैक्टिकली कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। ऑल राइट, नेक्स्ट है, हमारे पास मेल आया है सारा का, लखनऊ से। इन्होंने लिखा है, मैं बच्चों को कपड़े का बैग इस्तेमाल करने के ऊपर तवज्जो देती हूँ। ओके, इन्होंने ये लिखा है कि जब मेरे बच्चे बाहर जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो वो शुरू में उनकी हैबिट नहीं थी कि वो अपने साथ थैला लेके जाएं, लेकिन ग्रेजुअली मैंने उन्हें ये चीज़ सिखा दी है कि अब वो बग़ैर थैला लिए कोई भी सामान लेने नहीं जाते हैं। साथ ही साथ बाहर से जो प्लास्टिक

बॉटल्स हैं वो नहीं खरीदते हैं, रीयूजेबल पानी की बॉटल्स घर से लेके जाते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत कायदे से सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया हुआ है। ऑलराइट, बहुत ही अच्छी अप्रोच है आपकी, और उम्मीद है कि जो भी लिसनर्स सुन रहे होंगे ना, उन सबको इन अप्रोचेस से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। ओके, इसके बाद हमारे पास एक मेल फटाफट में पढ़ लेती हूँ, और प्राप्त हो गया है मैं, ये मेल हमारे पास आया है लखीमपुर खीरी से। साक्षी ने लिखा है, प्रकृति को करीब से जानने का मौका हमें पार्क, गार्डन या जंगल सफारी में मिलता है, और इसलिए मैं अपने बच्चों को ऑन एंड ऑफ इन जगहों पर ले जाती हूँ। पक्षियों, पेड़ों और फूलों के बारे में जानकारी देती हूँ, नेचर स्केवेंजर हंट जैसे खेल खिलाती हूँ। बच्चों में इन ये सब करने से पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है, और मैंने देखा है पिछले एक साल से जब से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, मेरे बच्चों में काफ़ी सारा बदलाव आया है। वेरी गुड, वेल डन। ओके, नेक्स्ट बाकी लिसनर्स से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आपके पास भी कुछ तरीके हैं जो आप अपने बच्चों को सिखाते हैं खेल खेल में, कैसे आप पर्यावरण के प्रति अपने बच्चों को जागरूक बनाते हैं, तो हमारे साथ साझा करिए। हमारा ईमेल एड्रेस है fmakashwanilakhnow@gmail.com। सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

ऑलराइट, बैकग्राउंड में आप ये सॉन्ग एंजॉय करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि वक्त अलाउ नहीं कर रहा है तो मेरे पास पता नहीं क्यों जाते वक्त एकदम आप लोगों को, आप लोग अलर्ट मोड पर आ जाते हैं ना, तो मैं मेल्स कभी भी किसी की अनदेखी नहीं करना चाहती हूँ. एम के राज का मेल हमारे पास आ गया है लखीमपुर खीरी से. इन्होंने लिखा है, हम अपने बच्चों को मोबाइल पर गेम की जगह पर्यावरण, वन और जीव जंतुओं के वीडियो दिखाते हैं और उन्हें सिखाते हैं, साथ ही छोटे छोटे पक्षियों, नदियों व तालाबों के बारे में भी बताते हैं. थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए. सतीश अनेजा जी का मेल आ गया हमारे पास चंडीगढ़ सिटी से. इन्होंने लिखा है, बच्चों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है. छोटे बच्चों को ही पौधों को पानी दिलवाना चाहिए. प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो इसके लिए भी संचित करना चाहिए. पर्यावरण के बारे में उम्दा जानकारी देते रहना चाहिए. ओके सुधाकर जी, आपका मेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं. ओके अजीत भावसार जी का भी मेल हमारे पास हम पहुंच चुका है और इन्होंने गुजरात से मेल किया है और एक अटैचमेंट हमें भेजी है जिसमें एक JPG फाइल है. तो उसमें उन्होंने लिखा है, सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आपको भी ढेरों शुभकामनाएं. फिलहाल इसी नोट पर आज हम इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करेंगे और एक छोटे से म्यूजिकल और न्यूज़ ब्रेक के बाद आपसे दोबारा रूबरू होंगे प्रोग्राम हॉटमेल में. आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ 2 बजे के बाद ही हमें मेल करिएगा क्योंकि उसके बाद वाली ही मेल्स और जो फरमाइशें हैं वो हम शामिल कर पाएंगे. स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह आज लखनऊ पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और अन्य भाजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी वह एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली एयर शेड आधारित उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने पौधारोपण महाभियान 2026 के अंतर्गत 35 करोड़ पौधारोपण महाभियान के लोगों का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की प्राचीन परंपरा में निहित तत्वों को अपनाना होगा। उन्होंने कहा, जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानवता सुरक्षित रह पाएगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कुकरेल वन क्षेत्र से एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण के प्रदेश व्यापी अभियान का शुभारम्भ किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लेबनान और पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के प्रयासों के लिए अमेरिका हिजबुल्ला के साथ सीधे संपर्क में है। श्री ट्रंप ने कहा कि लेबनान में हिंसा कम करने के उद्देश्य से हुई बातचीत में प्रगति हुई है। हिजबुल्ला द्वारा अमेरिका के शांति प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला ने अमेरिका से संपर्क किया था और हिंसा रोकने में रुचि व्यक्त की थी। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस मुद्दे पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य क्षेत्रीय नेताओं के साथ चर्चा की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिजबुल्लाह के से सीधे बात की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि लेबनान में जल्द ही शांति बहाल होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करने की घोषणा की है। पात्र परीक्षार्थी कल से 27 जून की मध्य रात्रि तक परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, जबकि कंपार्टमेंट परीक्षा के अंतर्गत 2 विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी किसी एक विषय की परीक्षा देने के पात्र होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

2:04 का वक्त हो गया, आप सबका खैर मकदम करती है आपकी होस्ट फातिमा, और हॉटमेल प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। fmakashwanilakhnow@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। अगर आप अपने पसंद का ट्रैक एंजॉय करना चाहते हैं तो हमें इस मेल एड्रेस पर मेल करिए। हमारे पास सबसे पहला मेल जो 2 बजे आया

और उसके बाद के जितने ईमेल्स हैं इस प्रोग्राम के लिए वो हम ज़रूर शामिल करेंगे। और पहला मेल जो हम शामिल कर रहे हैं वो टीडी मल्होत्रा जी का मेल है। इन्होंने हमें कहाँ से मेल किया है, मोहाली चंडीगढ़ से मेल किया है, सेक्टर 67 से। साथ ही इन्होंने नाम लिखे हैं ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है। हम पूरी कोशिश करेंगे ये सॉन्ग आज प्रोग्राम में प्ले हो पाए। लालगिरी जी का हमें मेल प्राप्त हो चुका है, नमस्कार आपको भी। और उन्होंने लिखा है किसी भी सॉन्ग के साथ बस हमारा मेल शामिल कर लीजिए। हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की। थैंक यू। सतीश अनेजा जी, आपका भी हमें मेल प्राप्त हो गया है चंडीगढ़ सिटी से। बिमला अनेजा और सतीश अनेजा नाम लिखा है और आपकी पसंद का भी ट्रैक हम पूरी कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में प्ले ज़रूर हो। हीरामणि वर्मा जी, आपका मेल हमें मिल गया है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। और पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, इन सब का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की है। उत्तम कुमार भागत जी का मेल हमें प्राप्त हुआ है और झारखंड से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। श्वेता, किसु, अर्णव, सत्यम, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की। साथ ही साथ मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, इनका भी नाम लेने की रिक्वेस्ट की। नितेश देवांगन जी का मेल हमें प्राप्त हो गया है पलारी छत्तीसगढ़ से। दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना, राम देवांगन, कृष्ण देवांगन, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की। लिखा है कोई भी गीत, किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। राधे कुमार विद्यार्थी जी, आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है गंगा जल सहरसा बिहार से। और सविता, राजीव, गुंजेश, कुमकुम, बुलाकी और फलना झा, इन सब का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की। थैंक यू मेल करने के लिए हमें। कमलकांत गुप्ता जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है किसी भी गीत में बस शामिल कर लीजिए। पिपरिया से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे, दीपक, अंकु, राघव गुप्ता, थैंक यू सो मच मेल करने के लिए। राजकुमार दूदी जी का मेल हमें फ्रांसी हिसार से प्राप्त हो गया। प्रमोद कुमार दूदी, पुष्पेंद्र कुमार दूदी, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, बिल्कुल सुनाएंगे आपको हम बेहतरीन से ट्रैके। शाहरून नूर अंसारी जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है बरेली से, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। फरियाद, शकील, मोइन, तस्लीम प्रधान, आप सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की। थैंक यू मेल करने के लिए। बोधराज खोरवाल जी, आपका भी मेल हमें मिल गया है उत्तम नगर दिल्ली से। कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, थैंक यू मेल करने के लिए। जय जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है चौक उत्तम नगर दिल्ली से। और सचिन, अमन, दीपांशु, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की। हम पूरी कोशिश करेंगे सॉन्ग आज प्ले हो प्रोग्राम में। शाह जी बोखड़े जी, आप बोर्ड के, आई एम सो सॉरी, शाह जी बोर्ड के जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें महाराष्ट्र से मेल किया है। श्रीमती नंदा बोडके, हनुमान बोडके, उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की। थैंक यू मेल करने के लिए। तुलसी मस्कीन जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया किसी भी गीत में हमें बस शामिल कर लीजिए। दिल्ली से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। वीना, तुलसी, तुलसी जी ने वीना, मेघा, राहुल, रचिता, केशु, रिधान, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की। थैंक यू। दिग्दर्शन गौर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया मेरठ कैंट से हमें और कुछ सॉन्ग्स की लिस्ट दी है इन्होंने, अगर इसमें से हो सके तो प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। और आगे भी लिखा है, ना हो पाए तो किसी भी गीत में बस हमारा नाम ले लीजिएगा। नाम हमने आपका ले लिया। ओके, रामराज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रायबरेली से आपका मेल हमारे तक, हम तक पहुंच गया है किसी भी सॉन्ग के साथ बस शामिल कर लीजिए। ओके, तनुजा देवांगन जी, आपका भी शुक्रिया। पलारी छत्तीसगढ़ से आपने मेल किया है हमें। तनुजा जी ने ईशांत, लखनलाल, सावित्री बाई, नितीश, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। थैंक यू मेल करने के लिए हमें। अकरम हुसैन जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया महसौल सीतामढ़ी से। आरज, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, कलेर, रूबीना, मोहम्मद आसिफ, निखत, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की। थैंक यू मेल करने के लिए। बिट्टू गगनेजा जी, जलालाबाद वेस्ट से, पूनम, विशाल दिशानी और निविता, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की। थैंक यू मेल करने के लिए हमें। अजीत भास्कर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमें मेल कहाँ से किया है? ओके ओके ओके, आपने हमें मेल किया है, जगह आपने नहीं लिखी है, कोई नहीं, तो नेक्स्ट मेल में हमें लिख दीजिएगा। और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की, हम पूरी कोशिश करेंगे ये सॉन्ग प्ले हो जाए आज। और ओके, ताज मोहम्मद जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है।

0: है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के। आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं पूनम गगनेजा जी, आपका मेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। मेहर अरोड़ा जी, आपका भी मेल हमें मिल गया है। श्रीगंगानगर राजस्थान से ममता, कीर्ति, भूमिका, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके, अब वक्त हो गया है कि हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लें और उसके बाद बेहतरीन सा ट्रैक आप तक पहुँचाएं अपने किसी लिसनर की पसंद का है। तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: दो बजकर 16 मिनट का वक्त, प्रोग्राम हॉट मेल एंजॉय कर रहे हैं आप और दतरंगी से भागवत वर्मा जी का मेल हमें प्राप्त हो गया है। शांति देवी, लीलावती, विनत वर्मा, रुद्र वर्मा, आप सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। दातर सिंह जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। और आपने संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शिखावत, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। और तीसरी कसम फिल्म का कोई भी सॉन्ग सुनवा दिया। अच्छा, कोशिश पूरी करेंगे हम कि सॉन्ग प्ले हो पाए। रामेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया। मुंगीसापुर कानपुर देहात से आपने मेल किया है। और उमा कांति, कमलेश, पुत्र बधु निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, बेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद लेके भेजा है आपने, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके, एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है तो हम कोशिश पूरी करेंगे वो सॉन्ग प्ले हो जाए। मल्होत्रा, टीडी मल्होत्रा जी, आपका मेल आज हमने सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल किया था। हरजिंदर शिंडा जी, गांव नथाना पंजाब से, आपका मेल हमें मिल गया है। और जसवीर, सीता और गीता, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। खुश रहो, खुशियां बांटो, ये लिखा है लास्ट में, बेशक हम भी इसी को फॉलो करते हैं। दिनेश वर्मा जी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। करुणा वर्मा जी का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है थी, हमने ले लिया है नाम। ओके, रोजी डिकैस्ट्रो जी का मेल हमें प्राप्त हो गया है। आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं सहारनपुर से। पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, जॉन डिकैस्ट्रो, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। सुनील पाठक जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है। और आपने हमें कहाँ से मेल किया है ये नहीं दिख रहा है मुझे, क्यों? अनारकली बाज़ार जगराव से आपने मेल किया है। कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या भाई, सुचा सिंह पाठक, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। वकील अहमद जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है। आपने हमें सीतापुर से मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए। साहिबा, शाजिया, शमा, रिंकी, पिंकी, महक, गुलफशा, एमन, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके, नेक्स्ट मेल हमारे पास किसके किसके थ्रू आया है। जयवीर सिंह ठाकुर जी का मेल हमें प्राप्त हुआ है कैथल हरियाणा से। और आपने लिखा है ओके, आपने कंप्लेन लिखी है तो आपकी ये जो कंप्लेन है ना, ये हम अपने अथॉरिटीज़ तक पहुंचा देंगे। फिलहाल ये जो प्रोग्राम है ना, वो आपके पसंद का ट्रैक प्ले करने का है। ओके, बहुत बड़ा

मेल आपने लिख के भेजा है, मुझे दिख नहीं रहा है वो सॉन्ग जो आप सुनना चाहते हैं। ओके ओके ओके ओके, सॉन्ग की रिक्वेस्ट हमें कहीं मिल गई। हम पूरी कोशिश करेंगे ये आपकी पसंद का ट्रैक ज़रूर प्ले हो। कीर्तन पुरी गोस्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, आपने हमें मेल किया। मीनाक्षी, डिम्पल, ट्विंकल, निशा, तुलसी, दिशा, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। और ये तो मेल्स हम शामिल कर चुके हैं। विजय महोबिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रामगंज खंडवा से आपने मेल किया है। कविता, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और बाबू, इन सब का नाम लिया है। और कमला देवी और अनाया, ईशु, बाबा, विशाल, विवेक, सब का नाम लिया। ओके, तहे दिल से शुक्रिया लिखा है। अच्छा, ये जो घर में जब नाम होते हैं ना ऐसे सोनू मोनू चिंकू पिंकू रिंकू वाले, तो बड़ा मज़ा आता है कि सबको मतलब संबोधित करना बड़ा आसान सा हो जाता है, नहीं? ओके, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके ओके ओके ओके, नेक्स्ट है अनिल कुमार जी का मेल हमें प्राप्त हो गया है। उमरखेड़ महाराष्ट्र से सरिता, प्रणिता, सिद्धांत, लाडला, टुक टुक, अभिजीत, वैशाली, एकांश, कुमारी ध्वनि, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। कोशिश हम पूरी करेंगे आपके पसंद का ट्रैक प्ले हो। जगदीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें हिंगड़ी मध्य प्रदेश से मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। कोशिश हम पूरी करेंगे आपके पसंद का ट्रैक प्ले हो जाए। बोधराज कोरवाल जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका कोरवाल, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। बबलेश पनवर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गांधी चौक बाड़मेर से आपने मेल किया हमें। और बबलेश पनवार जी ने जैनी, मनीष, दिनेश चौहान, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी। ओके ऑलराइट, देख लेते हैं और कितने नाम हम शामिल कर सकते हैं। दिमेश वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। पूनम, ज्योति, शिवांश, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। सुल्तान रजा जी, आपका भी मेल हमें मिल गया है। वालेकुम अस्सलाम, हम बिल्कुल ठीक हैं। रजा जीशान, अफजल, मोनिश, सादिक, मम्मी, पापा, पूरा रजा परिवार, थैंक यू मेल करने के लिए। ओके, सुदर्शन शाह जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है। नेपा नगर मध्य प्रदेश से प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन, राजेंद्र जी, पल्लवी, थैंक यू मेल करने के लिए। सबका नाम हमने ले लिया है, उम्मीद है अब आप बिल्कुल भी

होंगे। विकास जी का मेल हमारे पास आया है, सफीपुर जिला उन्नाव से। आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ मैम, मुझे ये वाला सॉन्ग सुनवा दीजिए। ओके, इन्होंने बाकायदा हमें फाइल ही भेज दी जो सॉन्ग सुनना चाह रही है उसकी। हरजिंदर शिंदा जी आपका भी शुक्रिया, आपका मेल मैं ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूँ। यासीन अंजान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गिरिडीह झारखंड से रेगुलर लिसनर है हमारे। साइमा हसन बाबू मिफ्रा बेबी चाहत सादिया सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी। पंजाबी नवाकार जी महाराष्ट्र नरवेल से आपका मेल हमें मिल गया है। निर्मला विशाल सोपान नारायण इंगले राजकुमार खर्चे और आशीष मोहरेकर इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। अजीत भाव सर जी आपका मेल हमें प्राप्त हो चुका है ऑलरेडी। हितेंद्र दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, असम से आपने मेल किया है हमें और लिखा है एनी सॉन्ग टू रीड आउट बट रीड आउट माय नेम प्लीज़। हाँ, आई हैव ऑलरेडी रेड आउट योर नेम, आई गेस यू मस्ट बी हैप्पी नाउ, राइट। राजेश वर्मा जी का मेल हमारे पास आ गया है और राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से आपने मेल किया। प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई पिंकी आर्यन कृष्णा पीहू स्वर्णकर आपका धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेल किया। बाबू अंसारी जी का मेल आया है हमारे पास बाराबंकी से, गुड आफ्टरनून मैम मुझे ये गाना सुनवा दीजिए। ओके, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। फैज़ अंसारी कुलदीप महेंद्र दीपान सबका नाम हमने ले लिया। स्वर्ण सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुरावाला से। दलजीत राजपूत गुरनूर गुरलाल अविराज कोई भी गीत सुनवा दीजिए, बस हमारा नाम ले लीजिए, नाम हमने ले लिया आपका। दिलीप कुमार जी भागलपुर बिहार से आपने मेल किया, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके ओके ओके ओके ओके, ओके। मसरूर हसन जी आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है सहारनपुर से, सैयद मसरूर। शाइना हसन नाजिया इब्राहिम किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, शामिल हो गया आप। आफ्ताब अंसारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल कहाँ से किया है, गंज डुंडरवा उत्तर प्रदेश आफ्ताब अंसारी जी ने। रियाज अंसारी लुबना अंसारी आलिया अंसारी सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। गगनदीप ठांडी जी आपका भी मेल हमें मिल गया है और नवा शहर पंजाब से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। तृप्ता कुमारी डॉक्टर प्रियंका डॉक्टर प्रशांत डॉक्टर प्रियम बेबी वामिका वाणी ठांडी इन सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। अनिल वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कुरावली से मेल किया है। माया देवी राहुल कुमार विनीत कुमार और सोनम वर्मा इन सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए। आप सभी का जितने मेल्स में शामिल कर चुकी हूँ उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बहुत सारा टाइम हमारे पास बाकी है तो मैं पहले कोशिश करती हूँ कि हमारे एक लिसनर की पसंद का ही ट्रैक है जो हम प्ले कर देते हैं, इसे एंजॉय करिए और रही कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। जिन्होंने अभी तक मेल नहीं किया है वो फटाफट मेल कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग।

2:34 मिनट का वक्त। बाबू अंसारी जी, अहमदपुर बाजार बाराबंकी से आपका मेल हमें मिल चुका है। हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। कुलदीप गुप्ता जी का नाम लिया था आपने, महेंद्र दीपान जी का नाम लिया था। कोशिश हम पूरी करेंगे आपके पसंद का ट्रैक हम प्ले कर पाए। ओके, आफ्ताब अंसारी जी, आपका भी मेल शामिल हो चुका है। पंकज शर्मा जी, आपने एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है हमसे, और अब गुड आफ्टरनून हो चुका है सर। सुधीर, नूतन, संदीप, जगमोहन, प्रतिभा, इशप्रीत, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास किसका मेल है हम फटाफट देख लेते हैं। ये हम सब शामिल कर चुके हैं। ओके, नवोदयन जी का मेल हमारे पास आ गया है, लखीमपुर खीरी से रेगुलर लिसनर है हमारे ये, और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है। थैंक यू मेल करने के लिए, हम कोशिश पूरी करेंगे ये सॉन्ग प्ले हो पाए। राम मोहन विश्वकर्मा जी, गुड आफ्टरनून, हम बिल्कुल ठीक हैं। सीतापुर उत्तर प्रदेश से आपका मेल हमें प्राप्त हो चुका है। आपके बजाए गए गाने तो सभी बेस्ट ही लगते हैं हमको। थैंक यू। हम प्ले ज़रूर करते हैं, लेकिन चॉइस हमारे लिसनर्स की ही होती है। ताज मोहम्मद जी, आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, मेरे ख्याल से आपका भी मेल मैं स्टार्टिंग में पढ़ चुकी हूँ। बबलेश पनवर जी, आपका भी मेल शामिल हो चुका है, थैंक यू मेल करने के लिए। राजेंद्र नारंग जी, आपने हमें बटिंडा रोड मंडी डबवाली से मेल किया है। अंजू, मोहित, तानिया, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की। अब्दुल गफ्फार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया खंडवा से। अब्दुल हक, ज़ियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटोर, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है और लिखा है कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिए। विजय महोपिया जी, हमारी भी हाजिरी लगा लीजिए, गीत कोई भी सुनवा दीजिए। अब की हाजिरी लग गई भाई। और आपने कविता, सपना, ईशु, पेंटर बाबू, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से मेल किया है मैं। ओके ओके ओके ओके, ओके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आपने मेल किया हमें। गुरमीत सिंह जी, आपका भी ट्रैक नहीं, आपका मेल हम शामिल कर रहे हैं साउथ एक्सटेंशन न्यू दिल्ली से, और थैंक यू मेल करने के लिए, इतना शॉर्ट एंड क्रिस्प मेल हम तक पहुंचाने के लिए। शंभु दयाल जी, आपको भी नमस्कार, कोई भी गीत हम ज़रूर सुनवाएंगे। नेक्स्ट ट्रैक आपको स्पेशली डेडिकेटेड है। विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेल करने के लिए हमें। ऑल राइट, नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया पानीपत से। लक्ष्य, लाडो कोयल, पापा जी, नानक चंद्र, पीयूष कोयल, डुगू भाविक, सबका नाम ले लिया हमने। सदानंद मंदोरकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया है डापकी रोड अकोला से। सुशीला देवी, सदानंद कुमार, गौरव, आप सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की, कोशिश हम पूरी करेंगे। अहमद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें करजत मुंबई से। दुखनी सदव, जूही इकबाल, इमरान अहमद, बिटिया आमना, आसमा, राबिया, आशु अहमद, समस्त परिवार, समस्त फैमिली मेंबर्स को डेडिकेटेड है एक सॉन्ग इन्होंने लिखा है, कोशिश हम पूरी करेंगे उस सॉन्ग प्ले हो पाए। मुकेश कश्यप जी, आपका भी शुक्रिया, मुरादाबाद से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। सुरेश सोनू

राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, बलवीर, किसी भी गीत में बस हमें शामिल कर लीजिए। हम बिल्कुल शामिल कर रहे हैं आपको। शंकर लाल जायसवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इताला महाराष्ट्र से आपने मेल किया है। गणेश लाल, शुभम प्रसाद, दुर्गेश्वरी जी, आप सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी, हमने नाम ले लिया है। सरिता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहादुरा नागपुर से मेल किया है आपने। अभिजीत, सरिता, प्रणितर, लाडला, ओके, ये मेरी मेल मेरे ख्याल से शामिल हो चुकी है। सिद्धार्थ गुंडाने जी का मेल हमें प्राप्त हो गया है। राहुल नगर अमरावती से अर्चना ताई, हीरामणि, प्रणय, प्रतिभा, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। अच्छा, अब वक्त हो गया है कि हम एक बेहतरीन सा ट्रैक प्ले कर दें। इस ट्रैक को एंजॉय करिए। रही कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। स्टे ट्यून्ड।

कुछ 47 मिनट का वक्त हो गया है और हमारे पास नेक्स्ट मेल जो हम रीड आउट करने जा रहे हैं वो किसका है, अमरावती महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है, दिलीप रामेकर जी का। हर्षा, अक्षय, रुद्रा, रुचिका, रामेकर परिवार, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी इन्होंने और एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की है। कोशिश हम पूरी करेंगे कि वो सॉन्ग प्ले हो आज प्रोग्राम में। नरेश जी का मेल हमारे पास आ गया है पानीपत से। लक्ष्य, लाडो, कोयल पापा जी, पीयूष, कोयल, सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके, नेक्स्ट मेल हम किसका शामिल कर रहे हैं, दिलीप रामेकर जी का। सरफुद्दीन अंसारी जी, आपको भी आदाब, बिहार से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। फातिमा खातून अंसारी, सुरीत, रमेश, डॉक्टर डब्लू, डॉक्टर सोनम, दानिश और अभयनंद परमानंद, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए। हम फटाफट अब कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेल शामिल कर लिए। राजू मिगलानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हांसी से मेल प्राप्त हो गया। बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, ओके, हरजिंदर इनका पढ़ चुके। मूसा शेख जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है, आपने हमें सनावत से मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए। और स्वर्ण सिंह जी, आपका मेल हमें ठाकुरावाला से प्राप्त हो गया। दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, मोहम्मद आमिर, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया बरेली से। शमीम, वाहेनूर, नसरीन, समानसारी, आप हमें किसी भी गीत में बस शामिल कर लीजिए, हमने शामिल कर लिया आपको। हमारा नहीं मिला क्या दीदी, मिल तो गया, आपका तो सबसे पहले पड़ा है इस बार, है ना। रविंद्र मोहन दास जी, आपका भी शुक्रिया। किशनगंज बिहार से आपने मेल किया है। आशा देवी का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मेल मैं शामिल कर चुकी हूँ ऑलरेडी। जयराम सिंघन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यवतमाल से मेल किया है। दिशांत और अर्पिता, इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। शैलेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया इसके लिए। ओके, जौहर पायकारा, आपने हमें छत्तीसगढ़ से मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए। नेक्स्ट ट्रैक जितने लोगों का नाम मैं ले रही हूँ ना, इसको स्पेशली डेडिकेटेड होगा। सुधाकर जाधव जी, जाफराबाद से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। प्रशांत राजे, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत, सानवी, कल्पना, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी, थैंक यू, शामिल हो गया है। संदीप मकर जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है। ज्योति मकर और भरत कमल, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी। और चौक गुरैया, जलंधर से मेल किया, थैंक यू। ओके, मोहम्मद फरमान, आपका भी मेल हमें मिल गया है मुरादाबाद से, बहुत शुक्रिया। ओके, नरेश जी, पानीपत से आपका मेल मैं शामिल कर चुकी हूँ। भाई, सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बार बार मेल मत करिए प्लीज़, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बाकी जो मेल्स होते हैं ना, फ्रेश होते हैं, वो पीछे चले जाते हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए हमें। ओके, संजय साहू जी, आपका भी शुक्रिया, गुड आफ्टरनून। सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और जहाँ चाह वहाँ राह, बस अपने इरादों को मजबूत बनाए रखिए, एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, पूरी कोशिश करेंगे हम ये सॉन्ग प्ले हो जाए। केशरी नंदन जी, अलीगंज सुल्तानपुर से आपने मेल किया है हमें। अनुज यादव, और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की, हम पूरी कोशिश करेंगे सॉन्ग प्ले हो। अच्छा, इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट खासा आती है हमारे पास, इस प्रोग्राम में नहीं, ऐसे भी आती रहती है, और मैंने सुना है तकरीबन अक्सर ही ये ट्रैक एक ना एक बार तो दिन भर में प्ले हो ही जाता है। सादर करने वाली दीदी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। किसने मेल किया है, साई गायकवाड़ जी ने मेल किया है हमें। और कहाँ से किया है मेल आपने हमें, महाराष्ट्र से, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। सुधांशु जी, आपका मेल हमें मिल गया है, और रेगुलर लिसनर है हमारे, बख्शी का तालाब ज़िला लखनऊ से मेल करते हैं हमें, थैंक यू मेल करने के लिए। और कोशिश हम पूरी करेंगे सॉन्ग प्ले हो जाए आज प्रोग्राम में। राजकमल जी, आपका भी शुक्रिया, बाराबंकी से आपने मेल किया है हमें और लिखा है कि हमारी पसंद का हो सके तो ट्रैक प्ले कर दीजिए। बिल्कुल हो सकेगा, हम ज़रूर प्ले करेंगे आपकी पसंद का ट्रैक। कौशिक वाधवान जी, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें राजकोट गुजरात से मेल किया, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ आपने ब्लैक बैकग्राउंड पर लिख के भेज दिया है, ओके ओके ओके। लखीमपुर उत्तर प्रदेश से आपने मेल किया है, लिखा है मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ, मुझे पता है आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। और अमन कनौजिया, सौरभ गुप्ता, इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की है, कोशिश

पूरी करेंगे कि आपके पसंद का ट्रैक प्ले हो। यासीन अनजान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गिरिडीह झारखंड से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं और मेरे ख्याल से आपका मेल मैं स्टार्टिंग में शामिल कर चुकी हूँ। यस ओके, बहुत सारे नाम हैं अभी भी बाकी रह गए हैं। ऑल राइट, जल्दी जल्दी देख लेती हूँ किसी का छूट ना जाए। बस ना, मेरी कंसर्न यही होती किसी का नाम छूटे ना। अनिल मोहन जी, एनी सॉन्ग। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से आपने मेल किया। ऊषा टिल्लू मधु, इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। सुरेश नारंग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें, सुरेश नारंग जी ने कहाँ से मेल किया है, ये तो नहीं लिखा है आपने। आशा नारंग, सोनाली नारंग, इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी, थैंक यू। सीताराम कांगड़ा जी, आपका भी मेल हमें मिल गया है रोहतक से। बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश कश्यप, मुरादाबाद से आपका मैसेज हमें मिल गया है। राजपाल, काजल मानवी, लक्ष्य मोहिनी, बलवीर, इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की। कोई भी गीत सुनवा दीजिए। ओके बिल्कुल। सादिक जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है। आपको दिल से आदाब, आपको भी आदाब। और वैष्णव कॉलोनी सनावत से मेल किया। मुश्ताक मोहम्मद, शाकिर अलकमा, अल्तमश, रमेश गोड़, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। ओके, दीपेश वर्मा जी, आपका मेल हमें मिल गया है और थैंक यू मेल करने के लिए। रविंद्र मोहनदास जी, आपका भी मेल प्राप्त हो चुका है, मैं पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके ओके ओके ओके, कोई छूट ना जाए। ओके वारिस अली जी, आपका मैसेज हमें प्राप्त हो गया है और जो सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की, हम कोशिश पूरी करेंगे ये सॉन्ग प्ले हो। संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से आपने मेल किया हमें। ऑल राइट, इरफान खान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेल किया हमें। और पंजाब से मेल किया है मुस्कान, बेबी आलिया, इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, नाम हमने ले लिया है। मोहम्मद सादिक का मेल हम पढ़ चुके हैं। ओके ओके ओके। मनोज बंसल जी, आपका भी शुक्रिया। हरियाणा से आपने मेल किया, किसी भी गीत में बस हमें शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल शामिल होंगे आप, अभी शामिल हो गए ना आप। वेरी सैड, ओके ये हेडर है। अजीज़ अहमद जी ने मेल किया है हमें। तिहार यूपी 34, ओके। एक खुशमय खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या करें क्या ना करें, ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि कोई अपना नहीं है, मैं बहुत उदास सा रहता हूँ। आज मेरी भी पसंद का सॉन्ग सुनवा दीजिए। ओके, और लिखा है डेडिकेटेड टू मी। बिल्कुल हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपकी पसंद का ट्रैक हम प्ले कर पाएँ, लेकिन बिल्कुल भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है और उतार चढ़ाव देखिए सबकी ज़िंदगी में होते हैं, है ना। इसी उतार चढ़ाव को टैकल करते हुए जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं वो खुशहाल रहते भी हैं और दूसरों को भी खुशहाल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है, बहुत खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत है। हुकुम करमारकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया। सुनीता, हार्दिक, प्राची, तनु करमारकर, इन सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। फिलहाल वक्त हो गया है कि हम इस प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करें। इस वादे के साथ एक छोटे से म्यूजिकल और न्यूज़ ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। अच्छा, अगर किसी की पसंद का ट्रैक प्ले होने रह गया तो बिल्कुल भी डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। आपका आप नेक्स्ट टाइम पे ज़रूर ट्राई करिएगा हॉटमेल प्रोग्राम में, कोशिश की जाएगी उस प्रोग्राम में प्ले हो। फिलहाल स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को कुकरैल में पौधारोपण कर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की स्थापना की और कपूर का पौधा लगाया। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ सेल्फी भी ली और मिष्ठान वितरित किया। सभी ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पीएम मोदी ने देशवासियों के सामने लक्ष्य रखा कि नागरिक के रूप में माँ व मातृभूमि के प्रति हमारा दायित्व बनता है, इसलिए उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की थीम माँ को समर्पित की। वन विभाग ने 50 करोड़ से अधिक पौधे तैयार किए हैं। आज 5 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य के साथ यह कार्यक्रम बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिक लाभ प्रदान करने में सक्षम हो। रायबरेली में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सरनीत कौर ने कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया और लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता की अपील की। शासन की मंशा के अनुरूप जिले भर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर DFO प्रखर मिश्रा ने बताया कि पूरे जिले में लगभग 8 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान का उद्देश्य हरित पर्यावरण को बढ़ावा देना, जलवायु संतुलन बनाए रखना और जन भागीदारी के माध्यम से वृक्ष संरक्षण को सुनिश्चित करना।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

3:06 का वक्त, और बेशक हमें भी आदत हो चुकी है आपके साथ कनेक्टेड रहने की, तो फ़िलहाल तो वक्त हो गया है प्रोग्राम सतरंगी दुनिया का, और इस प्रोग्राम का आगाज़ भी हो चुका है। बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अभी तक लंच नहीं किया, दोपहर का खाना नहीं खाया है, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने बिजी शेड्यूल में से, बैठ करके इत्मीनान से लंच करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए और वापस काम पे लग जाइए। तो बस इसी नोट पर एक और बेहतरीन सा ट्रैक इंतज़ार कर रहा है आप सबका, और किस टॉपिक पर आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं प्रोग्राम में वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बेहतरीन सा ट्रैक हम सब के लिए सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

3:19 का वक्त, यहाँ तन्हाई बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम तो ऑन एंड ऑफ आपके साथ बातचीत का जो सिलसिला है वो कंटिन्यूएशन में रखते ही हैं। देखिए भाई, कुछ लोगों को हमेशा ये महसूस होता है कि दूसरे लोग उनके खिलाफ साजिश करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन लेकिन लेकिन बिना किसी वजह ऐसा सोचना आपकी मानसिक समस्या पैरानोइड की ओर इशारा करता है। जी हाँ, ये समस्या आपकी जीवन शैली को प्रभावित कर सकता है। कुछ लोग ऑफिस, स्कूल और कॉलेज में दोस्तों और जो उनके सहकर्मी होते हैं उनके साथ होने वाली छोटी छोटी बातों पर लंबे वक्त तक गुस्सा हो जाते हैं। सामान्य किसी तरह का कमेंट या फिर आप कह सकते हैं मजाक भी लोगों को ऐसा महसूस होता है कि लोग उन्हें जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में इंसान के मन में शक आ जाता है, शक पैदा होता है और कि भाई दूसरे उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर सामने वाले इंसान सामने वाला जो शख्स है आपके साथ हल्के मूड से बात कर रहा है और उनकी बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसली आप रिएक्ट कर रहे हैं तो ये पैरानोइड का संकेत हो सकता है। क्या है पैरानोइड, क्या है इसके लक्षण और क्या है इसका इलाज, कैसे आप इसे इजीली टैकल कर सकते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में, इन सब एस्पेक्ट के बारे में आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और उसके बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

All right, musical break पर जाने से पहले हम आपसे गुफ्तगु कर रहे थे paranoia के बारे में. देखिए भाई, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें इंसान से मतलब इंसान जब दूसरों के साथ कनेक्टेड होता है ना, तो उसमें बात करने से कतराने लगता है. साथ ही ज़्यादातर वक्त अकेले में बिताना पसंद करता है. कुछ लोगों को अनुवांशिक कारणों के चलते पैरानॉय हो सकता है और कुछ लोगों में ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, एक तरीके की सिचुएशन होती है. न्यूरोट्रांसमीटर में बदलाव होने पर आपके मस्तिष्क तक जाने वाले संकेत, फीलिंग्स और विचार प्रभावित हो सकते हैं. कई बार कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन में किसी तरह का ट्रॉमा, जैसे दूसरे बच्चे उन्हें बुली करते हैं या किसी बात को लेकर हमेशा चिढ़ाते हैं, तो ऐसे लोगों में भी पैरानॉय की स्थिति डेवलप हो जाती है बड़े होने पर. तनाव में रहने की वजह से भी आपके विचार प्रभावित हो सकते हैं, जो पैरानॉय की वजह से मतलब गंभीर भी हो सकते हैं एट टाइम्स. क्या होते हैं इसके लक्षण, इसके बारे में हम आपसे कुछ पॉइंटर्स हैं जो साझा करना चाहेंगे. लेकिन उससे पहले एक बेहतरीन सा ट्रैक इंतज़ार कर रहा है आप सबका, तो इस ट्रैक को एंजॉय करिए और उसके बाद गुफ्तगू कंटिन्यूड रहेगी. स्टे ट्यून्ड.

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

आप खुद पॉजिटिव रहते हैं। और म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पैरानोइया के बारे में, तो इस समस्या के जो लक्षण होते हैं अगर उन पर हम थोड़ा सा गौर फरमाएं तो इस परिस्थिति से जो लोग जूझ रहे होते हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि भाई वो जल्दी आसानी से किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, उनको हमेशा दूसरों पर शक बना रहता है। इंसान को लगता है कि लोग उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं या फिर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर ऐसे लोग बुरा मान जाते हैं और अपमानित भी फील करने लगते हैं वो लोग, मतलब खुद भी थोड़ा सा स्ट्रेस रहते हैं और दूसरों से भी बड़े आसानी से गुस्सा हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम में इंसान को महसूस होता है कि दूसरों के थ्रू उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, वो ज़्यादातर वक्त दूसरों की बातों का नेगेटिव मतलब निकालने में लगा देते हैं। और मतलब अगर किसी भी इंसान के अंदर ये अप्रोच होगी ना नेगेटिव चीज़ों को, मतलब पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने की, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो शख्स फौरन रिएक्ट करेगा, बिना आधार के कुछ ना कुछ गुमान कर ही लेगा कि ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा। तो देखिए ये जितनी भी बातें हमने की पैरानोइया से रिलेटेड, चाहे उसके कारण, उसकी वजह, उसके लक्षण, सारी सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे इनर सेल्फ पे ही डिपेंडेंट है। अगर हम खुद एज एन इंडिविजुअल बहुत ही रिलैक्स्ड माइंड से चीज़ों को डील करें, मैच्योरिटी के साथ समझें और उसके बाद फैसले लें, तो हमारे लिए आसानियां हो जाएंगी और सिचुएशंस को डील करना बहुत आसान हो जाएगा, लोगों पे यकीन करना। क्योंकि देखिए हम ह्यूमंस को कहा जाता है कि भाई ये सोशल एनिमल है, तो आपका सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सोशलाइज करने में कई सारे आस्पेक्ट आते हैं, उसमें एक होता है दूसरों पर यकीन करना। आप यकीन तो करेंगे ही ना, अब मैच्योरिटी जैसे जैसे डेवलप करते हैं आप, आपको पता चल जाता है किस पे यकीन करना है किस पे नहीं करना है। लेकिन रहेंगे आप सराउंडेड इन्हीं लोगों के साथ, तो ऑल इन ऑल बस इतना कहना चाहती हूँ कि भाई रिलैक्स माइंड से चीज़ों को करिए और डिजिटल वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती मत अपनाइए, जितनी ज़रूरत है उतना ही रखिए काम उस डिजिटल वर्ल्ड से। देखिए अब कोई दूर नहीं रह सकता है, लेकिन जितनी ज़रूरत है बस उतना ही काम रखिए। फिलहाल एक और बेहतरीन सा ट्रैक आप तक पहुँचाएंगे, आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: यार सच बताऊं अभी तो
1: Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat. Join Indian Navy.
0: यार सच बताऊं अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूं। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मर कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी।
3: 3:55 का वक्त हो गया, इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करेंगे इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी रोज हम आपसे दोबारा जरूर रूबरू होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो। अगले कुछ घंटे आप रहेंगे वनिता के साथ।
2: सिर्फ यही कह पाता था।

नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आम का पौधा लगाकर सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचेगा तो प्रकृति बचेगी तो जीव सृष्टि भी बचेगी, इसलिए हर नागरिक मातृभूमि के प्रति ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने पर्यावरण व प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए 9 वर्ष में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक व भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत कई भाजपा नेताओं ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने व्यापारी नेता स्वर्गीय अशोक मोतियानी के आवास पहुंचकर गोलोकवासी पुण्यात्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किया और उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने शिव शांति आश्रम साहिब के समर्पित सेवाधारी ये दर्शनलाल की आवाज पहुंचकर गोलोकवासी पुण्यात्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किया। विश्व पर्यावरण दिवस और मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर कानपुर देहात के नगरवाटिका नबीपुर में प्रभारी मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद सहित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने वृहद वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा का संकल्प दिलाया गया। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने बताया कि जनपद में 6.54 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पौधों की जीवितता की समीक्षा और ट्रीगार्ड की व्यवस्था पर जोर दिया। पीलीभीत में 25 किलोमीटर लंबाई में प्रदेश की पहली और देश की छठी लेपर्ड सफारी बनाई जाएगी। इसका शिलान्यास 1 जुलाई से शुरू हो रहे वन्य जीव सप्ताह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत आकर करेंगे। आज गोमती नदी के इकोत्तरनाथ घाट पर आयोजित कार्यक्रम में उप प्रभागीय वनाधिकारी रमेश सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह लेपर्ड सफारी वर्ष के 12 महीने खुली रहेगी। इस सफारी की स्थापना से जिले में पर्यटन काफी अधिक बढ़ जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं वनिता आपका स्वागत करती हूँ। बड़े वक्त के बाद हरियाली के साथ मैं भी झमक कर आई हूँ आपसे मिलने के लिए यूथ वेव में। तो यूथ वेव में क्या होगा, चलिए सुनते रहिए धड़कन लखनऊ।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

और ये जो कल कल करते झरने, कितना सुंदर सुंदर गाना है ना, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। मगर छपाक से जब आप गंदा सा कुछ कूड़ा डाल देते हैं उस कल कल कल कर करती बहती हुई सुंदर सुंदर नदिया में, या फिर ये जो

हरियाली भरी जो है, हरी हरी दास्तान अगल बगल जो है, इसमें एकदम खचाक से अपनी कुछ कुल्हाड़ी मार देते हैं, या फिर ये जो सुंदर हवा है जो पेड़ों से छन कर आती है हमारे पास और हमें ऑक्सीजन देती है, बड़ा हम नाक खींच खींच कर अनुलोम विलोम करते हैं, जब इस पर आप अपनी गाड़ी का व्रूं व्रूं बिल्कुल रेड लाइट पर इंजन बिना बंद किए धुआं उड़ाते हैं, क्या होता है उससे? पता है ना? बिल्कुल पता है आपको, मगर पता होने के बावजूद हम करते कुछ नहीं है। जी हम आपकी ही बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम सब की बात कर रहे हैं। एक्चुअली इन्हीं सब बातों को बार बार याद दिलाने के लिए ऐसे दिवसों को सेलिब्रेट करना पड़ता है, मनाना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि भाई ऐसा मत करो। हेल्थ एंड हाइजीन इज द टॉपिक ऑफ टुडे। यस, यूथ वेव में यही टॉपिक है आज का। और ये जो हेल्थ एंड हाइजीन है, इसका एनवायरमेंट से एड़ी चोटी का साथ है, राइट? तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी बातें तो मैंने आपको बता दी। जलवायु परिवर्तन, ये है जो जल और स्वच्छता, इसकी जब हम बात करते हैं, या फिर एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, इन सब का जो दुष्प्रभाव है हमारी हेल्थ पर ही तो पड़ता है। तो ज़रा सोचिएगा अगली बार जब कुछ ऐसा नुकसान करने चलें और तब हम आपसे पूछेंगे कि ये तबीयत इतनी ख़राब क्यों, तब ये गाना उतना अच्छा लगेगा क्या, उतना मज़ा आएगा क्या?

तो ये खूबसूरत सा सफर आप हमारे साथ कर रहे थे, और इस सफर में जब हम बात एक बार फिर से ठहर कर आपसे करते हैं पोल्यूशन की, जी अगर हम किसी भी तरह के पोल्यूशन की बात करें, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन या वट एवर, जब हम अपनी हेल्थ से इसको रिलेट करते हैं, तो हमने बताया ना आपको कि अगर आप प्रदूषण को रोकेंगे तो आप ही उससे लाभ पाएंगे। और आपको पता है अक्सर जब हम सोचते हैं, खासतौर से अगर हम एयर पोल्यूशन की चलिए अगर बात करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि घर के बाहर जो धूल है, जो धुआं है, जो हमारी व्हीकल्स हैं उनसे निकलने वाली जो जहरीली गैसें हैं, उनसे ही सारा पोल्यूशन हो रहा है जो हवा में जा रहा है। लेकिन घर के अंदर क्या, जी घर के अंदर की कई बार जो ये हवा होती है ना, वो कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होती है और कहीं ज़्यादा पोल्यूटेड होती है। क्यों? क्योंकि ख़राब वेंटिलेशन होता है, धूल के कण होते हैं जगह जगह जिनको कई बार हम डस्टिंग करके खुद से साफ़ नहीं कर पाते समय की कमी होने के कारण, या कई बार वो हमें दिखते नहीं है क्योंकि वो सामने नहीं होते। फफूंदी जो होती है, अगर आप गौर से देखें तो कई बार फफूंदी घर में कई जगहों पर होती है। रसोई का जो धुआँ होता है, जो तड़के से छौके से जो लगता है, और ये जो सफाई के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, उनमें जो मौजूद रसायन हैं, उनमें जो मौजूद जो भी केमिकल्स हैं ना, वो बच्चों और एडल्ट सभी के लिए एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, इस तरह के जो बहुत सारे जो आपको श्वसन के जो रोग हैं ना, सांस से रिलेटेड जो रोग हैं, उनकी तरफ ढकेल रहे हैं जी। और इसी के साथ साथ जो एयर फ्रेशनर, हम सोचते हैं हम हवा को फ्रेशन अप कर देंगे एयर फ्रेशनर चलाकर, इससे भी कई बार हमें एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। एस्थमेटिक लोगों के लिए खासा समस्या होती है, ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। तो सोचिए कि कहां से बात कहां जा रही है। हम तो बाहरी बाहर खोज रहे हैं प्रदूषण को, मगर हमारे घर के अंदर जो है बहुत मामला गड़बड़ है। तो अभी से जुट जाइए, समय ज़्यादा नहीं हुआ, 4:16 हुए हैं। घर में जो लोग हैं वो लोग थोड़ा सा हाथ हिला लें अपने, और थोड़ा कदम भी अपने बढ़ा लें, और थोड़ा सफाई वफाई कर लीजिए, और एयर फ्रेशनर चलाकर आप अगर सोचते हैं कि आप हवा को फ्रेश कर लेंगे, तो बिल्कुल यू आर हाईली मिस्टेकन। अपने हाथ से जितनी सफाई कर सकते हैं कर लीजिए। 4 अभी जो लोग घर पे हैं, वैसे जो शाम को आएंगे ना, वो भी लौट कर थोड़ा हाथ आजमा सकते हैं। वीकेंड पास है भाई, थोड़ा साफ सफाई पर ध्यान दीजिए और अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए। बस यही कहते हैं हम आपसे आज यूथ वेव में। आप हैं वनिता के साथ 100.7 FM रेनबो पर।

मगर जब हम अपने घर में कहीं मिलते हैं तो गांव में मिलने पे और शहर में मिलने में बड़ा फ़र्क होता है। हम आपको बता रहे थे ना जो पॉल्यूशन की बात, तो पता है आपको क्या होता है कि दरअसल जब हम गांव की अपेक्षा शहर में ज़्यादा पॉल्यूशन है, ये तो सब जानते हैं, मगर घरों के अंदर भी समस्या वही है। क्योंकि हम जब शहरों की बात करें तो ऐसे में हम अक्सर जो है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे हमारा घर हो, सब जगह एसी में करके बंद कमरों में बैठे हैं, और इन कंपैरिजन टू गांव काफ़ी खुलेपन में लोग रहते हैं। तो इन सब चीज़ों की जो श्वसन रोगी जो समस्याएं होती ना सांस से जुड़ी हुई, ये ज़्यादातर जो है हम पाएंगे शहर के लोगों में। जी तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होगा रोजगार समाचार।

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जुलाई 2027 से प्रारंभ होने वाले भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायु सेना अकादमी के पाठ्यक्रमों तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई में अक्टूबर 2027 में आरंभ होने वाले पाठ्यक्रमों पुरुष और महिला दोनों के लिए भर्ती हेतु 13 सितंबर 2026 को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा 2026 आयोजित की जा रही है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 9 जून 2026। वेबसाइट का पता है upsc.gov.in। उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड द्वारा आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए वेबसाइट है upsconline.nic.in। CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान बरवा रोड धनबाद झारखंड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तकनीशियन ग्रेड 1 ग्रुप 2 पदों की कुल संख्या 30 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 19 जून 2026 शाम 5 बजे तक। पात्रता शर्तों, आरक्षण की स्थिति और नियम और शर्तों आदि के विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.cimfr.res.in। इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी परिशिष्ट संशोधन अथवा अधिसूचना केवल इस वेबसाइट पर ही पोस्ट की जाएगी। CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार पिलानी राजस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तकनीकी अधिकारी समूह 3 कुल 8 पद उपलब्ध हैं। तकनीशियन ग्रेड 1 समूह 2 कुल 14 पद उपलब्ध हैं। विस्तृत विज्ञापन योग्यता अनुभव और वेतनमान आदि से संबंधित अधिक जानकारियों के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.ceeri.res.in। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में सहायक प्रबंधक पुस्तकालय का एक पद रिक्त है, जिसे सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर

0: किया जाना है। संपूर्ण विज्ञापन, आवेदन पत्र के प्रारूप और अन्य विवरण के लिए देखिए कृपया दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख है 28 जून 2026। नगालैंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत वित्त अधिकारी, आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी, उपकुल सचिव, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष तथा अन्य गैर शिक्षण पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विज्ञापन का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है nagalanduniversity.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 13 जून 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

जी तो वेलकम बैक, 4:34 यूथ वेव में आप हैं 100.7 एफएम रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की। और आपसे हम जो बता रहे थे ना कि ये जो समस्याएं होती हैं ये घर से शुरू होती हैं, तो आपको बता दें घर में कहां कहां पर गड़बड़ी है। ये जो घर में जमा धूल है वो कहां कहां पर है पता है आपको? सिर्फ आप डस्टिंग करके ही इससे निजात नहीं पा सकते हैं, जो पुराने गद्दे और तकिए हैं ना उनमें जो पनपते हैं डस्ट माइट्स, और ये जो हम लोग पेट्स को पालते हैं उनके बाल में और उनकी वजह से जो नमी का कारण बनता है, जो फफूंदी होती है, ये सब जो होते हैं बहुत ही बड़े रीजंस होते हैं हमारे सांस की समस्या पैदा करने में। और इन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता और हम सोचते हैं कि हमें पता नहीं क्यों ये लगातार छींकें आ रही हैं, ये लगातार नाक बंद रहती है, आँखों में कई लोगों की खुजली हो जाती है जो कि जलती ही रहती है, कई लोगों के पानी आता रहता है। इस तरह की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स अब लोगों में मिलने लग गई हैं। आप में से कोई है क्या ऐसा? मतलब मेरे साथ भी छोटी मोटी इस तरह की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ से चीज़ों को ले रहे हैं। और इसी वजह से ये जो हमको खुलापन है ना, जो सूर्य की रोशनी अंदर आनी चाहिए घरों में, ये जो पहले का हिसाब किताब होता था ना घर के स्ट्रक्चर्स को बनाने में, वो बहुत इम्पॉर्टेंस रखता था। कितने बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हम जो है हायर कर लेते हैं, मगर कई बार जो है ये सिंपल से जो चीज़ें हैं उनको हम भूल जाते हैं। घरों को इतना पैक कर लेते हैं, सेंट्रल एयर कंडीशन कर लेते हैं कि अंदर कहीं पर भी हवा का, धूप का कोई स्कोप ही नहीं रह जाता, जो फ्रेश एयर होती है उसका मैं वो कह रही हूँ, और धूप के कण आने का भी कोई स्कोप नहीं होता, जो कि अपने आप में ही सारी बहुत सारी ये जो छोटे छोटे कह सकते हैं ना कि प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे चुटकियों में ख़त्म कर देता है हमें पता ही नहीं चलता। कितने सारी जो एलर्जीज होती हैं, आप कितने जो गंदगी होती है कपड़ों की, इतनी सारी चीज़ें होती हैं आप धूप में कहते हैं ना फैला देते हैं सब ठीक हो जाता है, तो वही चीज़ें हमारे शरीर के साथ भी हैं। हम घर में जब रहते हैं तो इस तरह से कहीं फ्रेश एयर आ रही हो और उसके साथ कुछ धूप आ रही हो सुबह की छन कर, क्या बात है। चाहे वो गर्मी में ही हम सुबह सुबह जब एकदम अर्ली सनराइज़ का टाइम होता है उस समय की जो धूप होती है उसको कहते हैं कि ज़रूर कहीं ना कहीं घर में पड़े, तो बड़ा शुभ मानते हैं। तो शुभ क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए हेल्दी होती है। तो इन सब बातों का रखिए ध्यान। बारिश भी कुछ दिन में आने वाली है, वैसे आज तो मौसम ने कुछ उलट पलट करी थी और अब मौसम विभाग बता रहा है कि उस दिन में भाई देखिए प्री मानसून शावर्स जो हैं हमारे केरला में आ चुके हैं, तो अब इधर भी धीरे धीरे आएंगे, मगर उसके साथ साथ कितनी सारी सतर्कता रखनी है आपको, आप बेहतर जानते हैं।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

जानू ना इतना साफ साफ पानी मैं पीऊँ ना, मगर उसके बावजूद ये वाटर बॉर्न डिजीजेस कहाँ से आऊँ ना, पता नहीं कहाँ से आऊँ। कई बार जहाँ पर पानी हम स्टोर करते हैं वो वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती है। इतने अच्छे अच्छे प्योरीफायर्स हमने घर में लगा रखे हैं, उसके बावजूद पेट में गड़बड़ी हो जाती है, क्या करते हैं? कई बार हम घर से पानी लेकर नहीं चलते अपना, है ना। और कई बार मैंने कई लोगों को देखा है कि घर में अच्छा अच्छा फिल्टर से पानी निकाल कर किसी बर्तन में उसको स्टोर कर लेते हैं और वो बर्तन उतना साफ नहीं होता तो वहाँ से गड़बड़ी शुरू होती है। और उसी के साथ साथ कई लोग जो होते हैं, पानी जब घर से नहीं ले गए, बाहर जाकर कहीं भी कुछ पी लिया तो गड़बड़ी हो जाती है। कई बार बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, ग्लास में पानी भर कर वो जब लेते हैं तो अक्सर उसके अंदर उनकी उंगली चली जाती है। मतलब कई लोगों को ग्लास को पकड़ने की आदत बड़ी अजीब सी होती है, वो एक उंगली अंदर डाल के पकड़ लेते हैं। जैसे किसी ने आपको पानी ऑफर भी किया तो कई बार कई लोग ऐसे कर लेते हैं। घर में काम करने वाले जो हेल्पर्स हैं वो आपको इस तरह से दे देते हैं, कई बार आप ही पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, आपके हाथों में जो गंदगी जमी है ना, जो नाखूनों के अंदर बैठी हुई है, खूबसूरत तो बड़े अच्छे लगते हैं नेल्स, बड़े बड़े नेल पॉलिश लगा के। भाई मैं फीमेल्स की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, कई सारे पुरुष भी ये काम कर लेते हैं कई बार मूड में आकर जी। और वैसे नाखून तो किसी के भी थोड़े से बड़े हो सकते हैं, थोड़े से बड़े में ही बहुत सारी गंदगी भर सकती है। तो पहला एक काम तो एक अभी कर लीजिए आप, कि अपना खास तौर पर एक हाथ का नाखून जो है, जो राइट हैंड है, अगर आप लेफ्ट हैंडी हैं तो लेफ्ट हैंड वाला, राइट हैंडी हैं तो आप राइट हैंड वाले हाथ के जो नाखून हैं उनको अच्छे से ट्रिम करके रखिए। इतना ट्रिम करके रखिए कि उनके अंदर गंदगी जमने की जगह ना बचे। जब भी आप साबुन से हाथ धोएं ना तो वो बिल्कुल साफ हो जाए, ताकि जब आप खाना खाने चलें, अगर हाथ से खाते हैं तो, या फिर कुछ भी आप पानी पी रहे हैं, अगर मान लीजिए बाई चांस पानी के अंदर हाथ चला गया तो वो गंदगी अंदर नहीं जाएगी। और वैसे हाथ तो अंदर जाना ही नहीं चाहिए पानी वानी के किसी भी चीज़ के, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कई बार ये जो गंदा पानी है ना, इसकी वजह से डायरिया, हैजा, पीलिया, इस तरह की जो वाटरबॉर्न डिजीज़ होती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमको हो जाती हैं। हमें लगता है पता नहीं क्या हो गया, अचानक से हमने क्या किया था, फिर याद आता है गोल गप्पे कैसे भूल गए आप। आए आए, ये गोल गप्पे जो हैं बहुत सारे पेट में गोल गोल गप्पे उछालते हैं, राइट जी। तो अब जो है अगली बार गोलगप्पे खाने जाइएगा तो जरा देख लीजिएगा वो पानी जो बना रहे हैं अंकल, अरे चचा, तड़क गड़बड़ वाला ना लो, है अच्छा वाला साफ वाला, जो प्यूरीफायर से पानी निकाला हो ना भैया, वही वाला पानी का वो जो चटक, हाँ बड़ा जो मज़ेदार लगता है ना, वही वाला बना के देना, जिसमें कि एकदम बढ़िया स्वच्छ पानी हो और उसमें वो हाथ की अपनी डुबकी लगा के अगर नकेला रहे हो तो बहुत ही बड़ी बात है। ये जो मौसम है ना, और जो आ रहा है मौसम इसके बाद, ये सब जो है बहुत ही खतरनाक है। इन सब चीज़ों से बचाव करने के लिए भैया पहले से आगाह कर रही हूँ, फिर मत बताइएगा कि मैंने बताया नहीं आपको।

और भाई चलते चलते बस ये बता दें कि ये जो विषैले रसायन है ना, ये जो आप अनुचित जो ये कचरा प्रबंधन है ना, ये जो गलत तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं अपने घर के कूड़े को, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी डेंजरस। और आप इसके लिए ज़रा सा ध्यान दें कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें कूड़े को, सही जगह। ये जो नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, इन सब का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड एट द एंड ऑफ द डे यूथ वेव में चलते चलते हेल्थ एंड हाइजीन सेगमेंट में यही कहूँगी कि अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तो आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी, और आपकी हेल्थ अगर फिट एंड फाइन रहेगी तो ये धरती मुस्कुराएगी, इसके साथ आप भी मुस्कुराएंगे इसी लड़की की तरह।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सरकार ने इस अवधि में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से देश के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में व्यापक बदलाव लाने का कार्य किया है। गरीब, वंचित, ग्रामीण, महिला, युवा और छोटे व्यवसायियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाओं ने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत आधार प्रदान किया है और सरकार की विकास, विश्वास और जनकल्याण की सोच को मजबूती से स्थापित किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वर्षों में सरकार ने मजबूत फैसले लिए हैं, दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को कुकरेल में पौधरोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। यहां पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की स्थापना की और कपूर का पौधा लगाया। यहां पर मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ सेल्फी भी ली और मिष्ठान वितरित किया। सभी ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पीएम मोदी ने देशवासियों के सामने लक्ष्य रखा कि नागरिक के रूप में माँ व मातृभूमि के प्रति हमारा दायित्व बनता है, इसीलिए उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान की थीम माँ को समर्पित की। वन विभाग ने 50 करोड़ से अधिक पौधे तैयार किए हैं। आज 5 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के साथ यह कार्यक्रम बढ़ रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर इटावा में एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत वृहद वृक्षारोपण हुआ। नगर वन लायन सफारी रोड पर सदर विधायक सरिता भदौरिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। विधायक, जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने पौधरोपण कर अभियान शुरू किया। जिले में आज 5.50 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। विधायक ने कहा, मोदी योगी सरकार आने के बाद पर्यावरण जैसे मुद्दों पर गंभीर काम हुआ। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने कहा, ग्रीन कवर में इटावा अग्रणी जिला है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोग

0: उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
1: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।

जी, और 5:04 और अब वक्त हो चुका है FM टॉप 10 का। तो मैं एक काम करती हूँ, 10th नंबर से शुरू करती हूँ।

जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं 50 के दशक की आज बात करने वाली हूं और 50 के दशक के टॉप 10 सॉन्ग्स, बट नो, यू आर मिस्टेकन। मैंने सोचा आज एनवायरमेंट डे पर कुछ स्पेशल किया जाए। वैसे हैप्पी एनवायरमेंट डे। जी, आपको मैं बेस्ट विशेस अभी तक नहीं दे पाई और ये भी नहीं बता पाई कि मैं वनिता हूँ आपके साथ। तो वेरी गुड इवनिंग। 5:08 हो चुके हैं, कुछ सेकंड्स भी हो चुके हैं, मगर इन सेकंड्स में धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। टॉप 10 से शुरू किया है मैंने 10वें नंबर का वो गाना जो 50 के दशक का सुपर हिट गाना था। और आज भी जब हम सुहाने सफर की बात करें या एनवायरमेंट फ्रेंडली जो सॉन्ग्स होते हैं जिनमें कुछ अपनी प्रकृति से जुड़े कुछ गीत होते हैं जो कि अपने मन को भी जंकृत करते हैं, उनमें ये गाना मुझे 50 के दशक का सबसे टॉप गाना लगा। और मैंने क्या किया कि आज जो है मैंने टॉप 10 में हर दशक के ऐसे गाने लिए, राइट? तो

50 के दशक से शुरू किया है और अब देखिए कि 60 के दशक का कौन सा गाना, ये भी आप सुनेंगे तो बिल्कुल मानेंगे ही मानेंगे मेरी बात कि भाई ये गाना तो हमेशा से लाजवाब रहा है। और इसको भी जब हम प्रकृति की अपनी बात करते हैं अपने हिंदी सिनेमा के गीतों में, बहुत ही खूबसूरती से इस गीत में पुरोया गया है प्रकृति को, हमारी सुंदरता को।

0: happens to be the ninth song of the day. नौवें पादान पर है ये 60 के दशक का गाना और इसके बाद एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक.
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है. कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था. कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है. पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना. मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा.
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
3: हर घर सूर्य घर.
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
5: चरक हॉस्पिटल में बाई

0: हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा

माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग जो कि 70 के दशक का है। जी हाँ, और प्रेम पर्वत फिल्म का, वो एक ऐसी फिल्म जो कि बहुत हिट तो नहीं हुई मगर ये गीत इतना हिट रहा कि आज भी जब सुनते हैं तो तरोताजा हो जाते हैं हम, और आसपास की प्रकृति जो है वो झूम उठती है।

और ये हमने रखा था आठवीं पादान पर। जी हाँ, हमने सुहाना सफ़र जो ये शुरू किया, ये आज एनवायरनमेंट डे पर स्पेशल टॉप टेन, जो उसमें सुहाना सफ़र ही सबसे पहला था, वो गीत जो मधुमति फिल्म का था, हमने उस बारे में आपसे थोड़ा सा जिक्र नहीं किया भाई। एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म जिसने कि कितने अवार्ड्स जीते, और सलिल चौधरी साहब का म्यूज़िक था आफ्टर ऑल, और मुकेश साहब की आवाज़ थी। इंटरेस्टिंग बात यह कि दसवें और नौवें दोनों पादानों पर मुकेश साहब की ही आवाज़ में गीत था, और सलिल चौधरी साहब ने फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड जीता था इस फिल्म में। और मुकेश साहब का ये जो गीत था सुहाना सफर, ये बहुत ही पसंद किया गया था। और उसके बाद जो हरी हरी वसुंधरा, इतना खूबसूरत सा गीत वंस अगेन जो है आपने सुना, जो मुकेश साहब की आवाज में, जो नौवीं पादान पर था। और उसके बाद ये प्रेम पर्वत का, हाय लता जी की आवाज में ये जो गीत है ना, ये तो मेरी जान ही ले लेता है। मैं क्या ही बताऊं, एक्चुअली आपको अगर बताएं कि ये 70 के दशक का सिर्फ ये गीत क्यों, बहुत सारे गीत थे जो कि लिस्ट में शामिल थे और लग रहा था कि कौन सा गीत रखें, मगर भाई मैं इसमें पार्शल हो जाती हूँ और मुझे यही गीत बजाना था और आप तक पहुँचाना था। फिलहाल तो हम आ गए हैं अब कौन से दशक में, जी 50 और 60 और 70 के बाद अब हम 80 के दशक में आ गए हैं। वंस अगेन 80 के दशक में भी इतने सारे गाने जिसमें कि मुझे तो लग रहा था कि टाई हो रहा था दो गानों में, एक तो ये वाला जो था ना तेरी कसम का, ये जमीन गा रही है अमित कुमार साहब की आवाज़ में, और उसके बाद ये वाला गीत जो कि हमने किशोरदा की आवाज़ में चुना। तो अब ये जो गाना है ये है सातवीं पादान पर,

जी, तो हम बात कर रहे थे उस गाने की जो कि अभी आप सुन रहे थे, ये वाला। हमने आपसे बोला था ना कि टाई हुआ था, मगर फिर मैंने इसको चुना। और वैसे ये सारे जो गाने हैं आप लोग काफ़ी देर से सुन रहे होंगे, मुझे लगता है कि इस तरह के गाने, मगर आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई टॉप 10 में इन गानों को शामिल करने में। और पता, बड़ा खासा मुश्किल रहा, मगर क्या कहते हैं ना कि यहाँ पे हम जब इस हॉट सीट पर बैठते हैं 100.7 FM AIRFM रेनबो की जी, आकाशवाणी के रेनबो की जो धड़कन है लखनऊ की, तो हमारे पास पूरा पूरा मौका होता है कि हम अपने हिसाब से आपको बताएं कि भाई हमको तो यही चाहिए। हाँ जी, तो हमने आपको कहां तक पहुंचाया? 50, 60, 70 और 80 के दशक तक पहुंचाया। 90 के लिए एनी गेसेस? भाई, एक ऐसी फिल्म जिसने जो है तहलका मचा दिया था घर घर में, और आज भी हर शादी के माहौल में घर घर में ये गाना बजता है, चाहे वो गेम्स हो शादी में, चाहे फिर वो डांसेस हो शादी में, और फिर चाहे कुछ भी धूम धड़ाका हो बैठ कर जब होता है, तो ये गाना जो है ज़रूर, और इस गाने के साथ साथ और भी इस फिल्म के गाने जो हैं ज़रूर बजते हैं और गाए जाते हैं और डांस किया जाता है इन पर। मगर इस फिल्म में जो वो गाना है ना जो मौसम से जुड़ा हुआ है, वो अभी भी थिरका देता है मुझे, और मुझे अब भी ये बहुत पसंद है। तो ये है मौसम का जादू, और ये है 90 के दशक की इस फिल्म का जादू जिसको अब आप सुनेंगे। 9, 8, 7 ये तो ऑलरेडी काउंट डाउन कर रहे हैं। 3। वैसे आपको बता दें कि छठी पायदान पर है ये। स्टार्ट।

0: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
1: भाई अब मैच का क्या होगा?
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
2: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC, PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

लता जी की आवाज के बाद एक बहुत ही खूबसूरत डुएट किनका है जी? किनकी आवाज में? साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज में, क्यों हो गया ना फिल्म का नाम था। बहुत हिट तो नहीं हुई और इसकी जोड़ी जो थी वो भी हिट नहीं हुई असल जिंदगी में। जी हाँ, विवेक ओबेरॉय और ऐश्वर्या राय की हम बात कर रहे हैं, मगर ये गाना है बहुतों के दिल में आज भी बहुत गहरी जगह बना कर रखे हुए है। आओ ना, बिल्कुल बार बार बुलाता है ये गाना, सुनो ना जी आप ही के लिए। दो हजार के दशक का ये ट्रैक आपके लिए चुना है।

तो आओ ना, कहाँ तक पहुँचे हम ना। हम 50 के दशक से शुरुआत हमने की थी टॉप 10 सॉन्ग्स की, जो आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्पेशल कर रहे हैं टॉप 10। तो 50 के दशक से फिर हम 60 के दशक में आए, फिर 70 के, फिर 80 के, फिर 90 के, और फिर 2000 के दशक में हमने आओ ना से अभी आपको सराबोर किया। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक। देखिए, हमारे जो गाने हैं ना, वो इतने ज़्यादा जुड़े होते हैं हमारे आसपास के नेचर से, उसमें कितना खूबसूरती से पिरोया होता है। गूंजी सी है जैसे हवा, जैसे बजती हों शहनाइयाँ। तो मतलब हम वो जो म्यूज़िक है ना नेचर का, उसको महसूस करते हैं। क्यों हम नेचर से खिलवाड़ करते हैं ना, फिर पता नहीं। तो अगर आप उस नेचर के म्यूज़िक को महसूस करते हैं ना अपने दिल में, तो कभी भी आप कोई नुकसान अपने पर्यावरण को कभी नहीं पहुंचाएंगे। यही उद्देश्य है आज के दिन का। और इनफैक्ट 365 दिन 24/7 हमको इस पे काम करने की ज़रूरत है। एंड दैट्स द ट्रू एक्चुअली वे to manage your health और उसी के साथ साथ environment की health। तो अब हम पहुँचे हैं 2000 के बाद। अब हमने क्या किया कि 2000 के बाद तो सीधे हम दो ही तीन गाने बजते, अगर हम 2000 के बाद सीधे 2010 पे आ जाते, फिर 2020 पे आ जाते और ख़त्म हो जाता। तो हमने 5-5 साल का गैप ले लिया। 2000 के बाद हम 2005 के दशक में आ गए, और तब हमने उस फिल्म को चुना जो 2006 में आई थी। 2005 से 2010 के बीच के हमने दशक को चुना दरअसल, और उस फिल्म को चुना जो 2006 में आई थी। यशराज फिल्म्स थी, जिसमें कि हमारे आमिर खान थे, और उनके साथ एक ऐसी बहुत ही खूबसूरत सी जोड़ी जो कि बहुत ज़बरदस्त लगी थी। हालांकि इसमें भी ऐश्वर्या राय को चुना गया था। एक्चुअली इसमें भी मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके पहले ऐश्वर्या राय का गाना था, तो ऐश्वर्या राय को ही चुना गया था लीड रोल के लिए। बट आमिर साहब की गुजारिश पर इसमें काजोल को लिया गया, और वो बहुत ही बेहतरीन उसमें लगी थी। और बाकायदा 5 साल के गैप के बाद वो पूरी तरह से धमाल मचाने आई थी अपने आमिर खान के साथ, एक लीड रोल में उनके साथ पेयर कर रही थी। और ये मूवी बहुत पसंद की गई, बहुत ही ज़्यादा। और यशराज फिल्म

जैसी होती हैं वैसे ही थी ये फिल्म, और इसका ये गाना आह आज भी जब बारिश होती है तो हम अभी भी इसको बजाते हैं और खूब बजाते हैं और इसी प्लेटफॉर्म से बजाते हैं और आप महसूस करते हैं उस बारिश को, तो थोड़ा महसूस हम भी कर लेते हैं जो आज सुबह की करवट ली है ना मौसम ने, उसको इंजॉय करते हैं, उसको फील कर लेते हैं रादर, जो थोड़ा सा ठंडक आई थी और केरला के बारिश वाले जो प्री मानसून शावर्स हैं उनका एहसास करते हुए इस गाने को सुन लेते हैं, जो है कौन सी पादान पर, चौथी पादान पर आज

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

भाई इस फिल्म को देखकर तो वाकई लगता है कि जिंदगी खूब जी भर के जी लो, क्योंकि ये पता नहीं मिले ना मिले दोबारा। जी 2011 की ये फिल्म, इसका ये गाना मुझे बेहद पसंद आया। अगर हमने बात करी कि कहीं सूरज, कहीं चंदा, कहीं तारे और कहीं फूल, कहीं पौधे, कहीं आसमान, कहीं बारिश, तो उसमें हमने इसको खरा पाया।

सूरज की बाहों में अब तो ये जिंदगी, मुझे याद आ गया वो लिंक जो अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में बोला था कि सूरज की बाहों में ये जिंदगी है। यस माय डियर, अगर आपके जीवन में सूर्य की रोशनी नहीं है तो जीवन जो है ये मिथ्या।

क्या है, समझे प्रभु? यस, अभी से सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो जीवन में अपने सूर्य की रोशनी का प्रकाश डालकर अपने जीवन को प्रकाशमान करिए। कुछ अधिक हिंदी हो गया तो भी समझ सकते हैं आप, मुझे लगता है ना? एंड यस, दीज पॉजिटिव फीलिंग्स यू मे दे मेक यू फील सो पॉजिटिव कि आपको लगता है ना कि कुछ अच्छा आप कर सकते हैं और आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में अगर आप ये छोटी छोटी छोटी छोटी बातें अगर एनवायरमेंट फ्रेंडली जो हैं उनको करें तो। तो ये कौन से पादान पर था गाना? तीसरे पादान पर था, मैं भी बजाते बजाते भूल गई और अभी उसके बाद दूसरे पादान पर जो गाना है वो बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो कि मोनाली ठाकुर की आवाज़ में है और इसको भी अब जो मैंने शामिल किया है अपनी टॉप 10 लिस्ट में आज एनवायरमेंट फ्रेंडली जो सॉन्ग्स हैं अगर हम कहें तो आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर, तो मेरे ख्याल से आप भी इत्तेफाक रखेंगे इस गाने से कि बारिश जो होती है सबसे प्यारी तो वही लगती है मौसम में, है ना? और ख़ासतौर से जब इस समय जब तपती हुई धरती है, तपता हुआ हमारा तन मन है, तो ऐसे में तो बारिश की बूंद का सब इंतज़ार करते हैं कि भाई प्री मानसून शारजी आ जाएं थोड़े, तो उसी से हम थोड़ा सा बहल जाएं। वैसे तो बारिश इस बार जो है बीच बीच में आकर लुका छिपी कर रही थी हमसे, क्योंकि हमने ही बहुत खेल किया था अपने एनवायरमेंट के साथ, तो वो टाइम बे टाइम आकर फसलों को भी नष्ट कर रही है और फसलों को नष्ट करने के साथ साथ वो हमारे सेहत से भी खिलवाड़ कर रही थी और अभी भी अगर हम चेते नहीं तो वो बहुत कुछ नुकसान कर देगी। वैसे मैं आपको टेंशन में बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ और आपको दूसरी पायदान वाला गाना सुनवा रही हूँ। सब लोग सोच रहे होंगे पहली पायदान पर कौन सा गाना है, मैं भी सोच रही थी कौन सा गाना रखूँ। By God, 2026 के लिए मुझे कोई गाना ही नहीं समझ में आया। चलिए वो पहली पादान पर जब आएगा तब आपको सुनवाऊंगी, फिलहाल तो छमा छम ये गाना, मेरे ख्याल से आप गेस कर चुके होंगे, बागी फिल्म का ये गाना जिसमें टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर क्या जबरदस्त डांस कर रहे हैं। बहुत अच्छा डांस करते हैं वैसे टाइगर श्रॉफ, एंड एट द सेम टाइम मोनाली ठाकुर की आवाज़ इस गाने में बहुत ज़बरदस्त लगी। श्रद्धा कपूर ने भी खूब साथ दिया टाइगर श्रॉफ का और इस गाने को हम हमेशा ही बजा लेते हैं, जैसे देखो ना फिर आओ ना, उसी तरह से ये छम छम छम है ना।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

2026 का ये गाना, जो कि एक्चुअली मूवी सॉन्ग नहीं एल्बम सॉन्ग है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने चौथी पादान से शुरू किया था कि 2005, फिर 2010, इस तरह से करते करते मैं 2015 पे आई, फिर 2025 पे भी अब आ चुकी हूँ 2025 के बाद ये गाना, तो वो 2025 के बाद का तो 2026 ही हुआ ना, तो इसमें ये गाना मैंने चूज़ किया क्योंकि अभी तक में मुझे वो गाना नहीं मिला जो मैं टॉप पर लाऊं, और ये गाना थोड़ा अच्छा लगा, सॉफ्ट सा है और इसको सागर बैरागी ने गाया है, और इसमें जो चेहरे दिखाए गए हैं वो थोड़े अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के हैं और तमन्ना के हैं। तो ये गाना आप सुनिए और मुझे बताइएगा कि आपको टॉप पर ये गाना पसंद आया या नहीं। हो सकता है कुछ लोग डिसअपॉइंट हुए हों, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको बेस्ट दूँ, और कोशिश पूरी रही कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस तरह से आपके साथ सेलिब्रेट करूं। चलिए, मुझे लग रहा है गाना तो सुनवाई दें थोड़ा सा ना आपको, एक काम करते थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते ताकि आप थोड़ा और सुन लें।

शाम के 6 बज चुके हैं। सुनिए एफएम, सुनिए मुख्य समाचार। स्थानीय सांसद व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लखनऊ में अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचकर उनके पति स्वर्गीय प्रतीक यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपर्णा यादव को ढाढ़स बंधाया और उनकी पुत्रियों से भी बात की। इस मौके पर रक्षा मंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, महापौर सुषमा खरकवाल, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, एमएलसी मुकेश शर्मा, विधायक ओपी श्रीवास्तव उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 2024 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किए गए। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने भाग लिया। संस्कृति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि आज बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के पात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं 7 जून से 30 जून 2026 तक प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए केवल नियमित रूप से कार्यरत ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाएं पात्र होंगे जिन्होंने न्यूनतम 15 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो या जिनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 5 वर्ष का समय शेष हो। शिक्षकों का चयन शैक्षणिक उपलब्धियों, विद्यालय विकास में योगदान, छात्र नामांकन वृद्धि, नवाचार आधारित शिक्षण, डिजिटल संसाधनों का उपयोग आदि के आधार पर किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: शिद्दत मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है।
1: बारिश में भीगता सतर आया।
2: शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने आकाशवाणी FM पर, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हैं हम। 100.7 FM।

जी और शामी अवध में मैं इस्तकबाल करती हूँ वनिता आपका। कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग। बहुत खूबसूरत सी शाम कर रही हूँ आपके नाम और आपसे कहूँगी कि 100.7 FM रेनबो जो आपने ट्यून किया है तो आपको बिल्कुल भी हम क्या कहें, हाँ बिल्कुल आपको हम परेशान नहीं करने वाले, अच्छे अच्छे गाने सुनाने वाले हैं और कुछ अच्छी बातें भी करने वाले हैं। भाई अच्छी बातें तो आज वैसे भी दिन ही इतना अच्छा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और कितने सारे पौधे पूरे प्रदेश में, पता है 5 करोड़ पौधे आज प्रदेश में लगे भाई इस खास दिन पर। और इसी के साथ साथ दमदार अंदाज में थोड़े देर सही, 3 दिन देर सही मगर केरला में पहुँच गया मानसून। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि और क्या क्या खबर है हम आपके पास, हमारे पास। हाँ हाँ आप भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं हमें, एंड एट द सेम टाइम हम तो बताने के लिए यहाँ बहुत कुछ बैठे ही हुए हैं। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और धड़कन लखनऊ की जो है उसके साथ ताल से ताल मिलाते चलिए।

इस गाने को सुनते ही मुझे कोई और गाना याद आ गया जिसको कि मैंने क्यू कर लिया ऑलरेडी, और मुझे इस गाने में ऑब्वियसली बहुत सारे लोग थिरक रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो इस दौर का, इस दशक का सबसे सुपरहिट गानों में से एक गाना है डांस फ्लोर पर थिरकने के लिए। बट मुझे इसके बाद इसको सुनते ही जो गाना याद हमेशा बार बार आता है और अभी फिर याद आया जिसको मैंने क्यू कर रखा है, अनडाउटेडली आप जगह कंपेरिजन करेंगे तो आप इसको पहले नंबर पर ही रखेंगे। फिलहाल तो हम आपको बता दें कि हमारे शहर में कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है और कहाँ कहाँ की हवा सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। तो अगर हम अपने शहर की बात करें, जी हाँ लखनऊ की बात कर रहे हैं शामे अवध में, तो अलीगंज की हवा जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस समय हो रही है। और उसमें हम ये बात कर सकते हैं कि जब AQI लेवल जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पर आ जाता है तो ऐसे में वहाँ पर सांस लेना यूँ समझ लीजिए कि आप जहर उसको निगल रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम हम कई बार सिर्फ एयर पोल्यूशन पर ही इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं बट हम बिल्कुल गौर नहीं करते कि जो साउंड पोल्यूशन है, जो नॉइज़ पोल्यूशन है, वो भी कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो ऐसे में आलमबाग को सबसे ज़्यादा शोर वाली जगह बताया गया है। आई एम श्योर कि वहाँ पर क्योंकि बसों का आवागमन है, वाहनों का बहुत ज़्यादा आना जाना है और बार बार आता है जाता है ये शोर जो है, मतलब इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि आना जाना लगा है और जाम बहुत ज़्यादा वहाँ पर लगता है। इसके अलावा वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं सड़कों के, चौड़ीकरण भी हो रहा है, इससे भी जो है पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पूरे शहर में इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन है। और किस किस एरिया में वो तो हमने आपको बता दिया सबसे ज़्यादा, बट आप भी बचे नहीं हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा शहर है हमारा कि हम अलीगंज में अगर हवा सबसे ज़्यादा जहरीली है तो हम यहाँ बैठे हैं हुसैनगंज में या विधानसभा मार्ग पर तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं जी, नुकसान सबको पहुँचता है, कहीं कहीं दूर तक पहुँचता है, हवा में सब कुछ तैर कर इधर से उधर जाता है। और अगर आलमबाग की बात करें तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से भी, और कहीं से भी शोर जो है ना, मतलब वो बहुत, उसका डेसिबल अगर बहुत हाई होता है तो वो कहीं भी दूर तक जाकर नुकसान करता है। तो प्लीज अब की जब आप ट्रैफिक में फंसे हो और पीछे से पौं पौं पौं बजा रहे हो ना हॉर्न रेड लाइट पर भी, तो जरा सोचिएगा कि आपको भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट वेरी वेरी फ्रेंडली फॉर एनवायरमेंट, सो सेव एनवायरमेंट एंड सेव योरसेल्व्स।

क्या बात है, गाना एकदम सुपर डुपर हिट है ना। बताइए, मैंने गलत कहा था कि सही कहा था कि ये हमेशा उससे तो ऊपर ही रहेगा? चलिए, कंपैरिजन हम लोग करने लग जाते हैं ना, क्या है, फितरत है इंसान की। वैसे बहुत ही बेहतरीन काम मेट्रो ने किया है, हमारी लखनऊ मेट्रो ने। मेट्रो से सफ़र करने वाली महिला यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन तक बिल्कुल सेफ साउंड पहुँचाने के लिए आज ही से महिला राइडर वाली ईवी बाइक सेवा की शुरुआत हो चुकी है भाई। और ये जो फीमेल हमारी जो हैं यात्री हैं, जो उनके केवल 15 रुपये में

किलोमीटर तक की दूरी तय करने का उनको सुअवसर प्राप्त हुआ है। और मेट्रो अपने 4 स्टेशनों से महिला विशेष ईवी बाइक सेवा, उसको पता है क्या उन्होंने नाम दिया है, माई दीदी, माई दीदी मतलब मेरी दीदी की शुरुआत आज से कर चुका है। और सेवा के शुभारंभ के अवसर पर ये 5 तारीख से लेके 13 जून तक ये ऑफर जो है ये सबके लिए है, उन फीमेल्स के लिए है जो यात्रा करेंगी, और उनको ये सुविधा जो है जी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएगी। और महिलाओं की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यूपी मेट्रो फीडर सेवा माय दीदी ईवी बाइक सेवा शुरू कर रही है, आज से शुरू कर चुकी है। तो कितना अच्छा दिन जब पर्यावरण दिवस पर ये बहुत ही बेहतरीन सा काम कर रहे हैं हमारे मेट्रो वाले। तो और आपको बताएं कि हमारे प्रबंध निदेशक जो हैं मेट्रो के, उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय, आईटी कॉलेज, भूतनाथ और कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन पर ये फीडर सेवा उपलब्ध है। और इन मेट्रो स्टेशन्स पर माय दीदी फीडर सर्विस का स्कैनर लगाया गया है, और स्कैन करके ही महिला यात्री अपनी राइड बुक कर सकती हैं। उनके पास कुछ मिनट में ही महिला राइडर वाली ईवी बाइक सेवा

फीमेल्स के लिए है जो यात्रा करेंगी और उनको ये सुविधा जो है जी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएगी। और महिलाओं की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यूपी मेट्रो फीडर सेवा माय दीदी ईवी बाइक सेवा शुरू कर रही है, आज से शुरू कर चुकी है। तो कितना अच्छा दिन जब पर्यावरण दिवस पर ये बहुत ही बेहतरीन सा काम कर रहे हैं हमारे मेट्रो वाले। तो और आपको बताएं कि हमारे प्रबंध निदेशक जो हैं मेट्रो के, उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय, आईटी कॉलेज, भूतनाथ और कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन पर यह फीडर सेवा उपलब्ध है और इन मेट्रो स्टेशंस पर माय दीदी फीडर सर्विस का स्कैनर लगाया गया है और स्कैन करके ही महिला यात्री अपनी राइड बुक कर सकती हैं। उनके पास कुछ मिनट में ही महिला राइडर वाली ईवी बाइक सेवा उपलब्ध होती है और हर मेट्रो स्टेशन पर 6 ईवी बाइक महिला राइडर के साथ उपलब्ध हैं। शुभारंभ के दिन आज यानी कि इस बेहतरीन दिन पर सेवा का उपयोग करने वाली पहली 10 महिला यात्रियों को उपहार भी दिए गए। क्या बात है, मतलब एक तो उपहार फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो फीडर बस सेवा, मतलब फीडर सेवा जो मिली उनको बाइक राइडर्स की, फीमेल बाइक राइडर्स की, और उसके साथ साथ उपहार भी मिले, वाह वाह। तो आपको बता दें कि वैसे लखनऊ मेट्रो से इस समय हर दिन करीब 88,000 लोग सफ़र कर रहे हैं और जिनमें बड़ी संख्या में हमारी फीमेल्स भी शामिल हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी कमेंडेबल फ्रॉम मेट्रो, लखनऊ मेट्रो। आप लोगों को हम थैंक यू कहेंगे, बींग अ फीमेल तो मैं सिर झुका कर आपको धन्यवाद करूँगी, प्रणाम करूँगी कि इतना अच्छा सा आपने काम किया है और एक बार फिर हम टेंगा दिखाएंगे, ये हमारे लिए है ये राइड अपने मेल काउंटर पार्ट्स को। और शाम्यवध में जनाब आप सुन रहे हैं मुझे यानी वनिता को, 6:26 आप हैं आज मेरे साथ यानी वनिता के साथ। कीप एंजॉइंग, कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

अभी सर्दियों में ओढ़ी हुई हल्की शॉल, ठिठुरती ठंड में जलता अलाव, कड़कती धूप में गदराए गुलमोहर अमलतास, या फिर तपती जमी पर बारिश का एक कतरा। हां मैं हूं रजनीगंधा। सतरंगी चैनल का एक ऐसा एहसास जो है हर दिल के लिए खास, सिर्फ 100.7 FM पर हर रात 10 से 12। रजनीगंधा।

हाँ भाई, थिरक रहे हैं कि नहीं आप? अरे वीकेंड एकदम लगा हुआ है बिल्कुल। किसी किसी का तो सैटरडे जो ऑफ होता है ना, मुझे लगता है क्या बढ़िया काम है यार। हैं, बहुत सारा काम कर लेते हो आप, मस्ती ज़्यादा कर लेते हो, सो भी ज़्यादा लेते हो, और ये मुफ्त में मिल जाता है आपको सैटरडे संडे के साथ फ्री, है ना? दिल मुफ्त में मिलता है कि नहीं पता नहीं, जब दिल देंगे या लेंगे तब ही पता चलेगा। आप बताइएगा अगर आपको मुफ्त में मिल रहा हो तो। वैसे मुफ्त में कुछ भी दुनिया में मुझे तो नहीं लगता कि मिलता है, और ये जो पढ़ाई है ना, इस पर तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तभी जो है ये मेहनत रंग लाती है। तो मुफ्त में कुछ नहीं मिलता बच्चा जी, बच्चा तुम्हारी बात कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने राष्ट्र गौरव सहित अन्य विषयों की परीक्षाओं का कार्यक्रम अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। सुन रहे हो बच्चा? स्नातक दूसरे, चौथे और ओल्ड स्टूडेंट्स की राष्ट्र गौरव और एनवायरमेंट स्टडीज़ की परीक्षा 12 जून को सुबह 8:30 से 10 बजे तक होगी। और वहीं MBA टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट दूसरे सेमेस्टर और मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट दूसरे सेमेस्टर बैक पेपर एग्जेम्प्टेड की परीक्षा 12 से 24 जून तक संचालित की जाएगी। BBA टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 से 24 जून तक। MA पॉलिटिकल साइंस दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 से 24 जून तक। MA पॉलिटिकल साइंस दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 से 24 जून तक आयोजित की जाएंगी। और सुनिए, लखनऊ विश्वविद्यालय ने LLB 3 और LLB इंटीग्रेटेड दूसरे सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम कल जारी कर दिया। LLB 3 वर्षीय और 5 वर्षीय दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 से 25 जून तक आयोजित की जाएंगी। विस्तृत समय सारिणी यानी कि आपको पूरी टाइम टेबल जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, वहां पर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये सूचना बिल्कुल पक्की है, आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि परीक्षा नियंत्रक ने हमें बताया है, मतलब हमें नहीं, हमने जहां से ये न्यूज़ ली है वहां पर ये लिखा था, तो हम ऑथेंटिक सोर्स से आपको बता रहे हैं। तो बच्चा पढ़ाई कर लो और उसके बाद अच्छा अच्छा रिजल्ट ले आओ, फिर ये मौसम भी अच्छा लगेगा, ये पर्यावरण भी अच्छा लगेगा और ये गीत भी अच्छा लगेगा। शामी अवध में जो अब मैं बजा रही हूँ, वनिता आपके साथ हूँ मैं, 6:38 मिनट हो गए, ठीक, ओके, सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: सात रंग का इंद्रधनुष है, सात सुरों की सरगम है, सात जन्म है, सात समंदर, साथ हमारा हर दम है। जिंदगी के सतरंगी रंग, FM रेनबो के संग।

6:56 वक्त कैसे झमाझम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इतना सारा समय आपके साथ हमने बिता दिया और चलते चलते फर्स्ट क्लास हमको जो बात लगती है ना शामी अवध में, वो बात कहना चाहूँगी कि अपने अवध की जो भाषा है वो बहुत प्यारी है और इसमें जो छलकता है ना अपनापन, वो अवध के लोग ही समझ सकते हैं। और अभी अपने शहर में श्रीराम कथा करने के लिए पद्म विभूषण रामभद्राचार्य जी आए थे और उन्होंने भी कहा कि अवध की इस भाषा में मातृत्व का अनुपम वात्सल्य अच्छा लगता है। और वो किस शब्द पर आकर उनका दिल अटका जब वो महतारी शब्द की बात कर रहे थे। जी हाँ, जब हम व्याख्यान करते हैं अपने श्री राम की बाल लीला का तो वहाँ पर हर्षित महतारी जो शब्द आता है ना, वो एकदम मन को प्रसन्न कर देता है और उसी के लिए उन्होंने लिखा। तो मुझे लगा शामी अवध में इस बात को आप तक पहुँचाकर आपसे भी पूछते हैं कि कितना जानते हैं आप अपने अवध को, कितना जानते हैं आप अपने लखनऊ को जो शामी अवध रोज सुनते हैं। तो ज़रा सा ध्यान दीजिए इस भाषा पर जो कहीं हो ना जाए और ये ममत्व, ये अपनत्व कहीं चला ना जाए। जिस तरह से पर्यावरण को सहेज रहे हैं उसी तरह से अपनी बोली भाषा सबको, अपने खान पान को, अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को, सबको संभालने की, अपने लोकगीतों को, जी इन सबको संभालने की बहुत ज़रूरत है। और इसी खूबसूरत से नोट के साथ मैं वनिता इजाज़त लूँगी। आज के शामी अवध से आप बने रहिए क्योंकि अगले घंटे भी मैं रहूँगी आपके साथ न्यूज़ ब्रेक के बाद।

विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृहद पौधारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार देश को एथेनॉल हब बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। स्थानीय सांसद व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लखनऊ में बीजेपी नेता अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचकर उनके पति स्वर्गीय प्रतीक यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी आज से 21 जून तक जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 2024 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में आज सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की पत्रावली पर विचार करते हुए रिवीजन याचिका में बहस के लिए अगली तारीख 25 जून निर्धारित की है। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के पात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं 7 जून से 30 जून 2026 तक प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। पीलीभीत में 25 किलोमीटर लंबाई में प्रदेश की पहली और देश की छठी लेपर्ड सफारी बनाई जाएगी। इसका शिलान्यास 1 जुलाई से शुरू हो रहे वन्य जीव सप्ताह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित होगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

तो इतना सुंदर सा गीत और इस गीत के बाद इतनी सुंदर सुंदर आपकी बातें हमको सुनने को मिलेंगी, मगर हम उसका इंतज़ार करें उसके पहले कुछ लोगों ने मेल बरसाना शुरू कर दिया है जी। और इसमें अमन नवाब जो हैं वो संडीला से हमें मैसेज कर रही हैं, मतलब मेल कर रही हैं। हेलो डियर वनिता दी, मे बी आफ्टर 6 मंथ्स, ओके आप गेस कर रही हैं, तो मैं आपको बता दूँ 7 महीने बाद आई हूँ। बहुत दिनों बाद दीदी, कहाँ थी आप, मैंने आपको बहुत मिस किया। भैया थे यहीं पर, बस मिल गए अभी अचानक से। आप कैसी हैं, खैरियत से हैं, इतना टाइम ना लगाया करिए, हमसे मिलने जल्दी आया करिए जी। लॉट्स ऑफ लव दीदी, थैंक यू सो मच अमन, बहुत प्यारा सा आपने मेल भेजा, स्वीट सा, और बहुत सारी मोहब्बतों के साथ भेजा। और मुझे लगता है कि मैं इतने सारे प्यार का जवाब किस तरह से दूं आप लोगों को, और इतने प्यारे प्यारे जो गाने आप लोग कभी कभी फरमाइश भी कर देते हैं, और कभी कभी जो है हम अपनी तरफ से जब बजाते हैं तो वो भी आप बहुत ही प्रेम से हमें बताते हैं कि हाँ हाँ प्लीज़ आपने जो बजाया ना बड़ा अच्छा लगा, ये जो बात कही आपने बड़ी अच्छी लगी। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम आपसे रूबरू होते हैं, कभी मेल से कभी फ़ोन के ज़रिए। तो बस आप नंबर मिलाएं, जल्दी से हमसे बात करें, और या फिर मेल करें तो हम उसमें भी आपका मेल पढ़ देंगे भाई। फ़िलहाल तो ये ट्रैक आपके लिए

0: tinha fodinha.
1: FM रेनबो सुबह 6 से रात 12 बजे तक हर घड़ी हर पल आपके साथ आपका सच्चा हमसफर।

जी। और हेलो एफएम में हमारे साथ कोई श्रोता हैं जो जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, जो भी श्रोता हैं प्लीज़ ज़रा हेलो हेलो कर लें तो हम भी हेलो हेलो कर लें आपके साथ, और उसके बाद हम आपकी से बातें करने के साथ साथ आपकी फरमाइश भी ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपसे बात तो नहीं हो पा रही है, राइट? और अगर नहीं हो पा रही है बात, तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं, हमें तो आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। तो एक काम करते हैं कि एक अच्छा सा गाना और आप तक पहुँचा देते हैं, और देख लेते हैं इस बीच अगर कोई हमारे पास मेल आया हो तो वो भी चेक कर लेते हैं भाई। ओ हो, बड़े सारे मेल हैं भाई। तालिब अंसारी जी ने हमें मेल भेजा है गुड इवनिंग के साथ कि वनिता मैम 7 मंथ के बाद आई हैं, हम कुछ नहीं लिखेंगे इसके आगे बिकॉज हम नाराज़ हैं। अरे बाप रे, इतनी नाराज़गी। मोहम्मद आसिफ आपने क्या लिखा है भाई? हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं दीदी, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहा हूँ, रहने वाला राजा कटरा अहमदपुर बाराबंकी का हूँ। मेरे पिछले प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा आपको। अच्छा, ये आपने लिखा कि पिछला प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा। शैलेश कुमार जी नहीं, आपने जो है नीरू शर्मा रूपपुर चंदेला से बोल रही हैं। सर झुकाकर सलाम करती हूँ, दिल से दुआ मांगी आपके नाम करती हूँ, अगर स्वीकार हो तो मुस्कुरा देना वनिता दी, ये प्यारी शाम आपके नाम करती हूँ। नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसी हो वनिता जी? 2 दिन पहले आपको याद कर रहे थे और हम बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ भी हैं, इतने दिन बाद क्यों आई है, भगवान सब लोग गुस्सा क्यों है। और अब फिर रोशनी चौरसिया है जो हैं वो कह रही हैं कि प्लीज़ फ़ोन कॉल भी शामिल करिए। बिल्कुल उसी की कवायद चल रही है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम आपसे किसी तरह से जुड़ जाएं। सावित्री देवी ने मुझे मेल किया था थोड़ी देर पहले और उन्होंने पूछा था, बहुत दिन से आपका इंतज़ार कर रही थी, आपकी आवाज़ सुनकर मैं इमोशनल हो गई हूँ, खुशी से ज़्यादा तो आंखें नम हो गई, मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इतना भी कोई प्यार कर सकता है हमसे। और आप भारतपुर बरगदी पोस्ट अर्जुनपुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से प्रोग्राम सुन रही हैं सावित्री, थैंक यू सो वेरी मच। और हम कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं कि आपसे हम फ़ोन से जुड़े, नाराज़ आप बिल्कुल ना होइएगा क्योंकि भाई फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही है, तो हम मेल से तो आपसे जुड़े ही हैं। और वैसे भी धड़कन लखनऊ की है तो धड़कन से धड़कन तो जुड़ी ही है ना। अशोक राज जी नमस्कार, आपने भी भेजा है और पता भी आपने भेजा है अपना, रायपुर उदारा मितौली लखीमपुर खीरी से, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है।

है और आपने कुछ गाने बताए हैं और आपने लिखा है कि अजय राय बलिस्टर राज उत्तम राज कुछ नाम है। अच्छा अच्छा आपने डेडिकेट किया होगा। तो एक काम करते हैं कि बढ़िया सा गाना आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद लौटते हैं और फिर आपके हमारी कवायद चलती रहेगी, कोशिश रहेगी आपसे हम फोन से जुड़े। फिलहाल तो ये मस्त वाला ट्रैक आपके लिए।

0: डे डे डे हेलो हेलो हेलो। हाँ
1: हेलो
0: जी, पहला पहला कॉल
1: जी
0: मुबारक
1: जी
0: आपको। कौन बोल
1: नमस्कार,
0: रहे
1: गुड
0: हैं?
1: इवनिंग
0: वेरी गुड इवनिंग। कौन बोल रहे हैं बताइए जल्दी से।
1: जी। विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी जिला सीतापुर।
0: जी नमस्कारम। और आपका गाना हम निकाल चुके हैं, जल्दी से जो कहना कह डालिए, वक्त बहुत कम है हमारे
1: बहुत
0: पास।
1: टाइम आज गड़बड़ चल रहा, मतलब ट्रांसफर नहीं हो पा रही, तो मित्र लोग नाराज ना हो बता रहे हैं
0: हाँ हाँ बिल्कुल। थोड़ी
1: जी।
0: देर में हिंदी में समाचार होंगे, प्रादेशिक हिंदी समाचार।
1: आशिकी फिल्म का
0: तो
1: गाना है,
0: जी बिल्कुल
1: काला मैं क्या बताऊं तुझे,
0: बिल्कुल।
1: और
0: तो
1: दोस्तों को डेडिकेट करते।
0: हाँ हाँ जल्दी से डेडिकेट करिए, थोड़ा सा कम सा वक्त है, जल्दी
1: विनीत
0: से बोलिए
1: सीतापुर से
0: आप।
1: हैं, ओमकार
0: हाँ
1: सीतापुर से हैं,
0: हाँ
1: माँ परवीन अंसारी सीतापुर से हैं,
0: जी
1: और सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से हैं, नवनीत हरकेश लखनऊ से हैं, पिंकी पिंकी राय बरेली से हैं, संतोष मौर्या हरदोई कोथावा से हैं, और ममता
0: चलिए
1: हरदोई से हैं,
0: जी,
1: संजू हरदोई से हैं, जितने सुने सभी का।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। और

0: आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जहां जल्दी ही आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी में समाचार।
1: सात सुरों की सरगम है, सात जन्म है, सात समंदर, साथ हमारा हर दम है जिंदगी के।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का किया आगाज, कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ, कहा वायु प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन, अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बृहद पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 के लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
3: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ मां के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
2: कार्यक्रम में विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंध परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही श्रावस्ती स्थित गुलेरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच MOU का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायो प्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा।
4: जब हम गन्ने से बायो प्लास्टिक बनाएंगे तो हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होगी और हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनते। साथियों, पीएलए दुनिया के सबसे सस्ते बायो प्लास्टिक में से एक है, और जब यह डिस्पोज होगा तो यह कचरा नहीं खाद बनेगा, फर्टिलाइजर, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, यानी कि हर तरीके से फायदा ही फायदा, कहीं से कोई नुकसान।
2: बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी

0: आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्रभूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि ये उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुराताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सुराताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आज हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़

0: करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आज हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने हिस्सा लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि आज बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी चर्चा की गई।
2: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की कि तो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए क्योंकि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो। उसमें
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी आज से 21 जून तक जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
3: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। आज एक पेड़ माँ के नाम, तो आज यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 24 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किए गए। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पूर्वी जनपदों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का किया आगाज। कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा बायो प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित

0: और ये दिल का आलम बताने के लिए हमारे साथ कौन है, लखनऊ की धड़कन के साथ। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, आपको आवाज आई हमारी, गुड, हमको तो आ गई भाई, है ना।
1: हाँ जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है।
0: हाँ तो बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, फटाफट।
1: मैं श्री बुलारे गिरी ग्राम दरी पोस्ट नीलवा जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ।
0: अरे नाम तो बता दीजिए।
1: वही तो बता रहा हूँ, नाम ही बता रहा हूँ, शिव दुलारे गिरी।
0: शिव दुलारे, अच्छा ओके। आपने एक सुर में बताया ना, तो मुझे लगा अभी तक आप एड्रेस ही बता रहे हैं।
1: मैं पूरा एड्रेस हमने बताया था।
0: बिल्कुल पूरा एड्रेस ही बताना चाहिए, वरना पता गलत हो जाएगा तो पहुंचेंगे कैसे, है ना।
1: हाँ जी
0: हाँ जी, तो बताइए करते क्या है जी।
1: जी मैं यही खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: तो इस समय क्या चल रहा है खेत वेत में सीन।
1: इस समय जी गन्ना चल रहा है।
0: गन्ना, आहा। अच्छा ये बताइए, आपका गन्ना चूसते हुए कभी कोई दांत उखड़ा है?
1: जी
0: गन्ना चूसते हुए कभी कोई दांत हिला विला है आपका?
1: नहीं, कभी नहीं हिला है
0: अच्छा, एकदम चौचक।
1: जी।
0: हमको तो बहुत डर लगता है, अगर हम गन्ना चूसेंगे तो पक्का निकल आएगा एक आध।
1: नहीं नहीं निकलेगा नहीं।
0: अच्छा अच्छा, मतलब आप अपने खेत में ऐसा गन्ना उगाते हैं कि जिसको हम जो है अगर चूसेंगे तो मेरा दांत नहीं हिलेगा, ये गारंटी आप लेते हैं, है ना।
1: मैं गारंटी लेता हूँ।
0: ये हुई ना बात, तो फिर तो पता आपने एकदम सही बताया, अब तो पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि गन्ना चूसे हुए जमाना हुआ भैया, बचपन में चूसा था कभी, है ना। चलिए तो आपने एक अच्छी बात ये बताई कि हम अपने मन से गाना सुना दें, तो बिल्कुल हम अपने मन से गाना सुना देंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे आपका। कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से कह डालिए। और
1: कहना क्या है, कहना यही है कि जो रोज रोज फोन लगाते हैं तो किसी दूसरे को भी मौका दें,
0: अच्छा
1: दूसरे का भी फोन लगे आपसे बात हो जाए।
0: अच्छा ठीक है, तो मतलब आपकी बहुत दिन बाद बात हो रही है, इसका मतलब
1: बहुत दिन बाद बात हो रही है।
0: तो आप बाकी लोगों से नाराज है कि फोन को बिजी किए रहते हैं। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद शिव दुलारे जी।
1: नाराज नहीं है, उनसे यही कहना हमारा है कि जो मतलब दूसरे को भी मौका दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों ने सुन लिया, धन्यवाद, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो है बहुत सारे लोगों का मेल आ चुका है, और ये कुछ लोगों ने मुझे कंफ्यूज किया है रत्ना से, तो मैं बता दूं कि भाई मैं वनिता हूं, और गुड इवनिंग किन्हीं गुलफसा सिद्दीकी ने संडीला से मेल भेजा है, और फिर उसके बाद राजकिशोर जी ने भी पर्यावरण को बचाने के लिए बात करी है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार करें, पानी बिजली की बचत करें, कचरे का सही तरीके से निपटान करें, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लोग भेज देते हैं तो अच्छा लगता है। छविराम जी ने हमें भेजा है फरुखाबाद से मेल, है ना, और नियमित श्रोता बोल रहे हैं, इन्होंने ये भी बताया है। और मेरा फ़ोन नहीं लगता है 3 महीने से, तो इसीलिए इन्होंने मेल कर दिया। वकील अहमद जी ने लिखा है कि बहुत दिनों के बाद आई हैं, जल्दी जल्दी आया करिए, आवाज़ आपकी अच्छी लगती है। धन्यवाद भैया। और आम की बाग में है, गन्ने की सिंचाई हो रही है, टेबल में नहाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने ट्यूबवेल लिखने की कोशिश करी है, जो कि टेबल हो गया है। चलिए टेबल पर चढ़कर ट्यूबवेल से नहाइए, और क्या हम कहेंगे। और ये आप जो हैं चाचा अनीस अहमद बबलू यादव इरफान वकील अहमद मंसूरी कटका हथुरी जिला सीतापुर, इतना बड़ा वाला एड्रेस भेजा है आपने, है ना। और ये जितेंद्र नामदेव बबलू नामदेव अंजू नामदेव खनक नामदेव ने ग्राम पोस्ट खन्नौधी से लिखा है कि दूसरे का नाम कम लें, क्योंकि वो खुद फ़ोन लगाते हैं। कुछ श्रोताओं से इन्होंने विनम्र निवेदन किया है ताकि दूसरे श्रोता को भी मौका मिले, जैसे कि अभी हमारे ये श्रोता बोल रहे थे, है ना। और तेलंगाना हैदराबाद से नमस्कार भेजा गया है मुझे, और भाई संतोष जी ने बताया प्रोग्राम अच्छा लग रहा है दीदी, पूजा भारद्वाज का नाम ले लीजिए, मेरी पत्नी का आए है, पत्नी का नाम ले लिया, आज खाना बढ़िया वाला मिलेगा आपको, पक्की बात है ना। और श्री गणेशाय नमक इन्होंने भेजा है भाई, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानू शंकर भैया पप्पू पासी मनीष नीरज बंधु, अरे इतना सारा लिख देते हैं आप लोग, हम भी कन्फ्यूज आ जाते हैं भाई। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, कोई भी गाना सुना दीजिए। चलिए ऐसा है ना, हम आप कोई भी गाना सुनवा देते हैं, और उसके बाद जो है लौट कर आते हैं, तब आपसे हम और बातें करते हैं।

0: और कौन से श्रोता हैं फोन पर? हेलो,
1: जी नमस्ते जी,
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: उज्जैन से? क्या बात है, दिल खुश कर दिया
1: हाँ
0: आपने प्रेम जी।
1: जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हैं। और आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जी, फिल्म का नाम है मोहब्बतें और गाने के बोले चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं।
0: और
1: जी
0: आप और क्या खास कहना चाहते हैं?
1: जी मैं आकाशवाणी लखनऊ और रेनबो सुनता रहता हूँ मोबाइल ऐप से। और आपको बताऊँ कि 3-4 महीने से रेगुलर रेनबो ऐप से मैं जुड़ा हुआ हूँ।
0: 3-4 महीनों से?
1: हाँ जी, अभी भी नया श्रोता बना हूँ मैं।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, और जैसे कि आपको बताऊँ, आकाशवाणी लखनऊ में भी मैं कॉल लगाता हूँ जब दिन में प्रोग्राम आता है ना, कुछ तुमको कुछ हम कहें कार्यक्रम।
0: हाँ,
1: हाँ जी, उसमें भी पार्टिसिपेट करता हूँ। उसमें भी दीप्ति जोशी से मेरी कई बार बात हो चुकी है। उसके अलावा जितने भी आरजे आते हैं ना, बहुत सारी बात मैंने कर रखी है वहाँ पे। जी
0: जी, मगर अच्छा लगा कि आप यहाँ जुड़े और आपका फोन भी लगा और आप एकदम नए नए श्रोता हैं, ये सुनकर और भी अच्छा लगा।
1: बिल्कुल,
0: और
1: ये
0: जी
1: अलका सिंह जी है ना, रेनबो में आते हैं कार्यक्रम देने के लिए,
0: जी जी
1: उनसे भी मेरी 2-3 बार बात हो चुकी है।
0: चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कुछ
1: जी बस बस,
0: किसी
1: आपसे पहली बार बात हो रही है ना।
0: जी बिल्कुल, हमारी पहली बार बात हो रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम तो आ ही रहे हैं बहुत महीने के बाद और आप 3-4 महीने पुराने श्रोता हैं, तो बट
1: जी
0: ऑब्वियस है
1: जी
0: कि पहली बार बात हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। किसी विशेष को सुनाना चाहते हैं तो जल्दी से नाम ले दीजिए।
1: जी बिल्कुल, हमारे एक दोस्त हैं मिंटू तिवारी जी, अभी अभी वो हमारे नए दोस्त बने हैं, रेनबो सुनते हैं वो भी। और वो बोलते हैं कि मेरा कॉल नहीं लगता है, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि आप बार बार प्रयास करिएगा, आपका कॉल जरूर लगेगा।
0: क्या बात है, तो ये महाकाल की नगरी से फोन करें तो ना मिले, भला ऐसा कैसे हो सकता है। जय
1: जी
0: महाकाल।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री महाकाल। और एक बात बताऊं मैं आपको,
0: हाँ
1: जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा कॉल नहीं लगता है, लेकिन कहा जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश किए जय जयकार नहीं होती।
0: जी, बहुत बहुत
1: जी
0: धन्यवाद इतनी बढ़िया बढ़िया बातों के लिए। और चलिए अब आपका गाना आपके लिए।

0: बिल्कुल यही प्यार है, इसीलिए आप जुड़ जाते हैं हमारे साथ 7:51 हेलो एफएम पर आप हैं हमारे साथ। हेलो, कौन है भैया आप? हेलो हेलो
1: नमस्कार,
0: कैसे हैं, कहाँ से हैं?
1: मैम मैं सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ, ब्रह्मा पोस्ट परसेंडी कैसरगंज बहराइच से।
0: सत्यम बहराइच से है ना, कट शॉर्ट करके बात कर लेते हैं जी, तो बताइए क्या खास कहना चाहते हैं आज?
1: वो शिकायत करते हैं थोड़ा दो बता रहे हैं उनकी कॉल लगती है, लेकिन जो लोग ईमेल करते हैं वो शिकायत करते हैं तो हमें बुरा लगता है।
0: अच्छा, तो चलिए गुस्सा जो है पीकदान में थूक दीजिए। और अब हमको जो है गुस्सा आएगा तो क्या होगा, क्योंकि आपकी आवाज ही नहीं मिल रही हमको। सत्यम जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सद्दम सत्यम सत्यम बोल रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं मिल रही है हमको, तो हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि इस वजह से हमको फोन काटना पड़ा, क्योंकि आपकी आवाज हमको नहीं मिल रही और बाकी लोगों को भी खासा मुश्किल हो रही होगी जब वो सुन रहे होंगे आपकी आवाज, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। और ये अरुण जी जो है, देखिए कितने सुंदर नाम है इनका, अरुण मित्र नाम है इनका। तो मित्र कैसे हैं आप? लखीमपुर खीरी से आपने हमें मेल किया है और सॉन्ग भी बड़ा सुंदर सुनना चाहा है। अमन कनौजिया, सौरभ गुप्ता, थैंक यू मैम, और आपके रेगुलर लिसनर हैं ये भी इन्होंने बता दिया है भाई। और अकबर आजम, अकबर अंसारी, चौकबंदी चौखंडी बाराबंकी से, प्रोग्राम बहुत अच्छा करती हैं आप और सॉन्ग भी लिसनर अच्छे अच्छे सुन रहे हैं, लेकिन हम कॉल लगा रहे तो कॉल उठ नहीं रही है। आपकी शक्ल हमको अच्छी नहीं लगती, उसमें शक्ल दिख रही है कि हम नहीं उठा रहे, समझ गए जाओ आप लोग कहते तो हमें सच में ऐसा लगता है कि अरे भैया ना उसमें नाम दिख रहा है, ना दाम दिख रहा है, ना शक्ल दिख रही है, हमको क्या पता आप फोन कर रहे हैं और हम नहीं उठा रहे हैं। तो अब ये देखिए किसी की भी कॉल उठ जाए वो हमें क्या पता। तो आपने लिखा कि ये चीज़ अच्छी नहीं होती, तो हम भी बता रहे हैं कि ये भी बात अच्छी नहीं होती कि आप ये शिकायत करते हैं। हाँ नहीं तो और आपके आने से श्रोताओं में खुशी की लहर, मीठी बोली के कारण कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे फोन कभी भी नहीं लगते अच्छा, ग्राम अमृता मोहली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा जी, मतलब आपने नाराजगी भी जता दी और तारीफ भी कर दी, ये बढ़िया बात करी आपने। और सफ़र कर रहे हैं राधे श्याम जी कासगंज से, प्रोग्राम मस्त लग रहा है, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक्स, वेरी वेरी थैंक यू। आप लोग अच्छी बातें कर लेते हैं, अच्छा लग जाता है, ज़्यादा बातें कई लोग नहीं करते हैं। महोना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब से सुधांशु ग्राम भगवतीपुर से बोल रहे हैं राधे राधे, तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, मुझे गाना सुनाइए। अच्छा, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी कि आपको मेरी आवाज़ में गाना सुनना है? देखिए हम शुरू हो जाएंगे फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए भाई, मगर बहुत सारे मेल्स पढ़ दिए, एक फ़ोन जिसमें कि आवाज़ ऐसे करके आ रही थी, और फिलहाल तो तुम तक हम ये गाना पहुंचा रहे हैं जो आप में से किन्हीं एक की पसंद का है।

0: भाई ये पहुंचेगी पार कैसे नाजुक सी नैया, ये मैं पहुंच ही नहीं पाई नितिन तक, नितिन इतनी देर से एक घंटे से मेरे बगल में बैठे और मैं नितिन को फोन करके कह रही हूँ नितिन तुमको प्रोग्राम करना है, कहाँ हो? तो कह रहा है मैं तो यही हूँ। ये हर कुछ दिन पे शक्ल बदल लेते हैं भाई, है
1: जी हाँ।
0: हाँ मतलब इतना सोच के बता रहे, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया क्या?
1: नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये शक्ल दिखेगी तो है नहीं, अब सबके मन में उत्सुकता जाग गई होगी
0: कि कैसे लग रहे हैं,
1: कैसे लग रहे हैं हम।
0: हाँ तो बहुत सारी धाड़ी है तो, मूछ है और हाँ। बाल बिखरे हुए हैं, अभी कुछ वक्त पहले ये बिल्कुल साफ सुथरे से दिख रहे थे, कुछ भी नहीं था चेहरे पर।
1: तो अब आप लोग हमारी आवाज के साथ में चेहरा भी देख सकते हैं अपने मन की आंखों से।
0: तो नितिन बस होंगे थोड़ी ही देर में आपके साथ, फिलहाल तो मैं वनिता इजाजत लूंगी तुम तक के साथ ब्यूटीफुल ट्रैक, और आपसे बाय बाय कहूंगी, जल्दी ही फिर आएंगे, अब इतना लंबा वक्त बिल्कुल नहीं लगाएंगे, यूं ही बुलाते रहिए, यूं ही हम आते रहेंगे, सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है, सात सुरों की सरगम है, सात जन्म है सात समंदर, साथ हमारा हर दम है। जिंदगी के सतरंगी रंग FM रेनबो के संग।
1: ले जाए जाने का हवाएं, हवाएं, ले जाए तुझे हवाएं, हवाएं।
2: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 294 करोड़ की लागत से 75 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने आवास योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को चाबी एवं चेक देकर सम्मानित किया। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन परियोजनाओं से बलरामपुर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायोयुग ग्रीन कमांड

2026 का शुभारंभ किया। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार देश को एथेनॉल हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृहद पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 के लोगो का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ करने की घोषणा कर दी है। पात्र परीक्षार्थी कल से 27 जून तक परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हमारे दिल की धड़कनों पर आपकी आवाज आई कि आपको हमारा इंतजार है। कुछ कहो कुछ समझो वाली क्विक बंदियों की हर धड़कन तलबगार है। ये रुत जब गुलमोहर कह रहे हैं सुर्ख जमी से मोहब्बत का अफसाना, इसी दिलकशी का मेला सजाकर हाजिर ये दिलजू आबशार है।

कलम गिरती है कागज पर, कलम गिरती है कागज पर, स्याही फैल जाती है। जो लिखा कुछ नहीं पढ़ना, मनाही फैल जाती है। हमारे साथ में रहना, हमी से अफसुर्दा भी रहना। इतख्तो ताज झूठे हैं, मुनादी फैल जाती है। कलम गिरती है कागज पर, स्याही फैल जाती है।

पता, उसके चेहरे की रोशनी कुछ ऐसी है, दिल नहीं देखा जाता, उसके चेहरे की रोशनी कुछ ऐसी है। यूं ही नहीं कहते उसे शीरी जबां, उसके अल्फाज में चाशनी कुछ ऐसी है। वो कह तो देता है कि कोई मरासिम अब ना निभाए जाएंगे, वो कह तो देता है कि कोई मरासिम अब ना निभाए जाएंगे, मगर तलाश लेता है वो तीरगी में भी उसका हाथ, उसकी आंखों की रोशनी कुछ ऐसी है। दिल नहीं देखा जाता, उसके चेहरे की रोशनी कुछ ऐसी है।

नहीं थी क्या जो तुमने पूरी तरह से इन्हें फेर लिया है? आंखें ही थक गई थी क्या जो तुमने पूरी तरह से इन्हें फेर लिया है? ये रात कैसी है कि हमें छोड़ तुमने हर किसी का खबरों खैर लिया है? खबरें सुनकर ही कांप जाते हैं पांव, न जाने क्यों अब तो उम्र है, सफर है या डर है, न जाने किस किस से हमने बैर लिया है। आंखें ही थक गई थीं क्या जो तुमने पूरी तरह से इन्हें फेर लिया है।

जानकर जमाने वालों ने इश्क को इश्तहार कर दिया है, जानकर जमाने वालों ने इश्क को इश्तहार कर दिया है। मन में छिपाए रहने वालों को कैसे बेकार कर दिया है, जो कहा नहीं गया वो हुआ ही नहीं है ये मानने लगे हैं सब, जो कहा नहीं गया वो हुआ ही नहीं है ये मानने लगे हैं।

सब इस कदर इम्तहान लिखे हैं इश्क के कि जिंदगी को ही कोहसार कर दिया है, जानकर जमाने वालों ने इश्क को इश्तहार कर

ये बात किसने कही है जो हम पर इल्जाम हो गई, ये कैसे पल भर में ही जिंदगी की शाम हो गई, जो जा रहा है उसे रोकने के लिए जतन करने गए थे, हमारी बेनियाजी कैसे खबरे आम हो गई।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: 8:44 और 57 सेकेंड्स। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों,

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव

को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव।

0: विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कहानी सुनाएगा डिजिटल.
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
2: रात के नौ तो बज गए हैं, गाने सारे सज गए हैं, पॉप टाइम तो डांस टाइम है, बातें कर कर थक गए हैं, एकदम थक गए हैं. तो 9:56 पर शुरू हो गया है पॉप टाइम ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.

काम की बातें बातें बिल्कुल नहीं करनी, तन्हा अकेली बोरिंग रातें बिल्कुल नहीं करनी, सबको बुला के लाओ डांस करना है, आहिस्ता आहिस्ता वाली बातें बिल्कुल नहीं करनी।

की पार्टी सबके साथ गानों पर सब नाचे आज डीजे कौन है उठाओ हाथ ये तो है FM Rainbow 100.7 और ये वाला गाना बहुत दिनों बाद आपके कानों के बिल्कुल नजदीक।

0: 9:15:30 हो चुके हैं और पॉप टाइम अपने बिल्कुल टॉप टाइम पर चल रहा है। तस्मे वाले जूते सब उतार के नाचेंगे, ड्रम्स पे थिरकने वाले गिटार पे नाचेंगे, धड़कन लखनऊ की बीट पे जब आएगी लखनऊ वाले नाचेंगे, हिसार वाले नाचेंगे।
1: People on the floor.

डांस पार्टी के लिए जो सबसे तगड़े गाने हर ओर धूम मचाते रहे हैं पिछले कई बरसों से, उन्हें हम पॉप टाइम यानी पॉपुलर टाइम में लेकर आते हैं, वही वाली ढूंढ ढाड़ के लिस्ट। तो अब देर किस बात की है, चलिए इस वाले गाने पे करिए साड़ी गली विच कमरिया ट्विस्ट।

कानों के भीतर की एनर्जी को अपने पांवों में थिरकने जरा दीजिए। अब कोई नहीं कर रहा डांस, उनको भी झिझकने जरा दीजिए। आप झूमिए, करते रहिए, सारी दुनिया को अपने डांस से इंस्पायर। और बिना किसी देरी ये वाला गाना जरा जोर से बजा लीजिए।

पॉप टाइम के गानों पर डांस तैयार कर लिए तो आपके कदमों में होगी चैंपियंस वाली ट्रॉफी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स प्ले अ म्यूजिकल एट्रोसिटी।

पर्यावरण दिवस पर एक एक पौधा लगाए हैं और उसका ख्याल रखेंगे। इंद्रपाल मिश्रा जी ने ग्राम अमृता मोहली सीतापुर से हमें लिख के भेजा है। आशा, अवनीश, विनीश, अक्षत, गरिमा और रजनी के साथ बताइए कितना पौधा लगाए ये लोग हैं, लिख के भेजिएगा हमको। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम घोरवाल, सचिन घोरवाल, अमन घोरवाल, दीपांशु घोरवाल, प्रोग्राम के सभी सॉन्ग्स इन्हें पसंद आ रहे हैं और ये इन्होंने दो सॉन्ग बजाने के बाद ही लिख के भेज दिया था। हिमांशी यादव डांस करने लग गई हैं, ऐसा उनके पापा राजकमल यादव जी ने बताया हमें। ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से, और ये भी पूछा है कि हम कैसे, हम अच्छे हैं। और अगर वो डांस कर रही हैं तो उनकी फोटो खींचिए और सबको दिखाइए।

नमस्कार, एफएम रेनबो लखनऊ, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। अरविंद गोविंद प्रतिमा प्रतिष्ठा तन्वी किरण पांडे दीपा श्याम कुमारी वाराणसी उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं और इन्होंने सब्जेक्ट में मेरा फेवरेट काम किया है, यानी प्रोग्राम का नाम पॉप टाइम सबसे ऊपर लिख रखा है। नवनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर। पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाले सरजी को गुड इवनिंग। सरजी लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको बहुत सारी गुड इवनिंग। आपकी आवाज, आपका अंदाज बहुत सुपर हिट, वेरी वेरी स्वीट, अच्छा लगता है। भोजपुरी गाना तनी बजा दीजिए तब मजा आ जाए। भोजपुरी गाना के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरोही नामदेव, सौम्या नामदेव, ग्राम खन्नौधी जिला शहडोल मध्य प्रदेश से लिखे हैं हमको कि एफएम रेनबो को धड़कन बनकर दिल में समाया है तुझे, हर सांस के साथ खुद में बसाया है तुझे, बंद आंखों में भी चेहरा तुम्हारा रहता है, इस कदर अपनी रूह का हिस्सा बनाया है तुझे। मतलब एफएम रेनबो को ये इन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोई अपने बारे में न समझ ले जी, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, ऐसा भी लिख के भेजा इन्होंने। बाबू अंसारी निखिल सर को मैसेज भेजे हैं नितिन के प्रोग्राम में। तो निखिल सर, अगर आप सुन रहे हैं तो आपके बाबू अंसारी जी ने आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी चिट्ठी खत भेजा है और इसमें बहुत सुंदर डांस करने वाले मीम भी हैं। फैज अंसारी, कुलदीप गुप्ता, महेंद्र दीपन, हरिकेश के साथ इन्होंने ये हमें भेजा है देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से। तो आपका संदेश निखिल सर तक पहुँच गया होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, पॉप टाइम अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं। वकील अहमद मंसूरी कटका हथुरी जिला सीतापुर से, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशन सिद्दीकी, अहमद नवाब, सबके साथ मिलकर के ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमें भेजे हैं। शुभ दिन कहाँ है, अब तो रात हो गया। इस सवेरे वाला मैसेज जो तुम भेज रहे हो ना, है पाप पड़े तुमको। ठीक है, रणधीर गुप्ता जी शाम के मैसेज में शुभ दिन का है लिख रहे हैं। किनारों पर पहुंचकर भी करार, काहे दुखी दुखी वाला शायरी काहे भेजते हैं जी। किनारों पर पहुंचकर भी करार नहीं मिलता, जो भीतर ही छुपा है वो बाहर नहीं मिलता, हमें तो डूब कर तैरना इस बहते दरिया में, जो बीच में हो दरिया के वो इस पार या उस पार नहीं मिलता। आनंद तिवारी दारुगिया मल्लावा हरदोई उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं और लिखा है इन्होंने हमारी फेवरेट लाइन सबसे नीचे लिखी है जी। हाँ जी, तो इन्होंने लिखा है कि आज तो डांस करने वालों बल्ले बल्ले, नंबर एक प्रोग्राम, और दो ठो टिक भी मारे हैं पॉप टाइम ऊपर लिखे हैं सब्जेक्ट में। बाकी आप जो हमको मैसेज नहीं भेज रहे हैं और ये जो जावेद अख्तर जी पुराना मैसेज ही भेज दिए हैं, आप सबको बहुत बहुत सारा प्यार, वापस लौटेंगे और आपसे और बातें करेंगे। तब तक मैसेज नया कर लीजिए और हमारे दिल के बिल्कुल करीब भेज दीजिए, क्योंकि हमको करनी है आपसे गल्ला गुड़ियाँ, पर अब हमारे पास गल्ला बची नहीं है, तो आप अपनी तरफ से लिख के भेजेंगे तो वही गल्ला आप तक पहुँचा देंगे। हैं जी, हाँ जी,

गुड इवनिंग प्री आरजू सर, कैसे हैं आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा पेश कर रहे हैं आप तो आज एकदम से पॉप टाइम प्रोग्राम में धमाल मचा दिए सर। बहुत सुंदर मेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये लिखा है मैं अजय कुमार सिंह जी ने सीतापुर से, इतनी सुंदर बातें किए हैं आप तो आपको हमारी तरफ से भी बहुत

बहुत बहुत बहुत बड़े वाला थैंक यू। प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले भैया जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको भी मनोज जी हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की प्रस्तुति जबरदस्त, पूरा गर्दा सॉन्ग है भाई, मजा आ रहा है। मेरे गांव में बारिश आगे चला भी गया है, बारिश चला गया, मेहमान चला गया जैसे। छत में बैठे ठंडी हवा में आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहा हूँ। मेरे साथी लोग नदी किनारे आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं, दिलीप, रमेश, महेत्रु और छत्तीसगढ़ जिला बालोदा बाजार ग्राम तारा शिव मोहल्ला ठाकुर चौक से मनोज विश्वकर्मा जी की खूबसूरत कलम से निकला हुआ ये संदेश हम तक पहुंच गया है। हेलो नितिन भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। एमन नवाब ने हमें लिख के भेजा है, पूरे आधे घंटे बाद बोल रही हूं, गाने बहुत अच्छे हैं, गजलें भी बहुत अच्छी थी आज, आपकी लाइंस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं आप, फैबुलस। दो तीन दिन से पता नहीं क्या हो गया था, रेडियो पर रेनबो नहीं बज रहा था, आप आए और आज रेनबो आया है, बहुत बढ़िया जी है। आपने एक खबर सुनाई, हमारा दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है, तो एमन ये बात आपने बता दी है सारी दुनिया को कि रेनबो जो है वो रेडियो पे इस समय बजने लगा है, तो बहुत अच्छी बात है और सब लोग सुन ही रहे हैं। आजाद सिमरी से ओमकार, सीतापुर से शमा परवीन, अंसारी सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, ममता हरदोई से, संतोष मौर्य हरदोई से, विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाले सर जी को गुड इवनिंग, शुभरात्रि, सादर प्रणाम करता हूँ। यही वाला जो है आपका, मेरा नाम पहले ईमेल में गलत पढ़ दिया था। अच्छा, आई एम सो सॉरी, अगर आपका नाम मैंने गलत पढ़ दिया है तो आई एम सो सॉरी विनीत जी, हमारी तरफ से ये माजरत स्वीकार कीजिए आप। आदरणीय आरजे निखिल सर जी, सादर नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र देपन है और मैं राजस्थान के नागौर जिले के रूड़ गांव से हूँ। आज रात पहली बार आपके प्रोग्राम पॉप टाइम से जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। सच कहूँ तो आप इतने शानदार गाने बजा रहे हैं, मैं तो गाने सुनने में इतना खो गया था कि मुझे ये ख्याल भी नहीं रहा कि मुझे आपको संदेश भी भेजना है। मेरे प्रिय मित्र बाबू भाई अंसारी जी ने मुझे विशेष रूप से रात 9 बजे आपके शो को सुनने के लिए कहा था। उनकी सलाह पर मैंने आपका शो सुनना शुरू किया और यकीन मानिए आपका अंदाज और गानों का चयन लाजवाब है। इतनी दूर राजस्थान में बैठकर आपके शो का आनंद लेना वाकई में एक सुखद अनुभव है। आप यूं ही मुस्कुराते रहें और बेहतरीन संगीत के माध्यम से हम जैसे श्रोताओं का मनोरंजन करते रहें, शुभकामनाएं। आप दूर कहाँ हैं सर? आप तो हमारे बगल में बिल्कुल पहलू में बैठ के, जहाँ दिल होता है ना, वहीं बैठ करके प्रोग्राम सुन रहे हैं। वैभव प्रकाश सिंह नागपुर महाराष्ट्र से लिखते हैं, पॉप टाइम प्रोग्राम मस्त लग रहा है, आरजे जी का स्टाइल पॉप टाइम में कहर भर पा रहा, कहर है जी, कहर, ये लिखा है वैभव प्रकाश सिंह जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इतने प्यार से लिखने के लिए, और महेंद्र देपन जी आपका इतना प्यारा मेल पढ़ने के बाद आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना सुनिए, गुनगुनाइए हमारे साथ।

विजय सिंह दीपू इटहुआ कैसरगंज बहराइच। गुड इवनिंग नितिन भैया, खेत में गन्ने की सिंचाई कर रहा हूँ और कार्यक्रम सुन रहा हूँ। आई होप कि सिंचाई में आपको मजा आ रहा है। मोनू सेठ जी लिखते हैं सुपर्ब और हिट प्रोग्राम, तो थैंक यू सो मच मोनू भैया लिखने के लिए। बहुत दिनों बाद आपका मेल पढ़े हैं। रणधीर गुप्ता जी, आपका मैसेज हमें मिल गया। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, ओखला संगम विहार दिल्ली से शुभ संध्या रेडियो मित्र जी लिख रहे हैं और बहुत पसंद आ रहा है आपको प्रोग्राम, इसके लिए बहुत बहुत बहुत ढेर सारा शुक्रिया आपको। राही लिखती हैं, गुड इवनिंग सर जी, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ईमेल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तसल्ली से, सबने अपनी अपनी हाजिरी लगवा दी है, मैं अकेले ही क्यों पीछे रहूं। आई एम राही फ्रॉम लखनऊ। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत जोर जोर से झूम रहे हैं, मुझे लग रहा है आज पूरे घर में तहलका मचा दूंगी, मैं नाच नाच कर तोड़ फोड़ कर डालूंगी। ये ना कीजिएगा, अपने घर का सामान थोड़ी तोड़ा जाता है, मतलब दूसरों घर का सामान भी नहीं तोड़ना, सामान किसी घर का नहीं तोड़ना, खुद को बचा के रखना है। डांस कीजिए, कोई मुझे पकड़ लो, नहीं तो गिर जाएंगे। तो गिरिएगा नहीं, है ना, पूरे परिवार के साथ सुन रही हो तो सुनते रहिए और हमारे साथ गुनगुनाती भी रहिए, ढेर सारे गाने हैं ना, सब लोग पूरे परिवार के साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पॉप टाइम का मतलब ये पॉपुलर सॉन्ग्स ऐसे जो आपके दिल में उतरे हुए हैं, हम तो बस उन्हें प्ले करके एक बार आपको याद दिला देते हैं। सबके होते हुए भी इंसान जब अकेला हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, वही करना चाहिए जो आप इस वक्त कर रहे हैं, यानी हमें मेल लिखनी चाहिए और हमारे साथ गाने गुनगुनाने का ये काम करना चाहिए। अजीज अहमद जी, पता ग्राम वपूस तिहार यूपी 34 से हमें प्यारे से मेल के साथ अपना दोस्त बना चुके हैं, तो हम आपके दोस्त हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, कहां और कहां, बस यहां। ये है 100.7 FM रेनबो पॉप टाइम प्रोग्राम, मस्त लग रहा है और आरजे जी का स्टाइल पॉप टाइम में कहर भर पा रहा है। एक बार फिर से हम आपका मेल पढ़ दिए वैभव जी, एक ही दिल कितनी बार लेंगे। अनुज लिखते हैं, गुड इवनिंग नितिन सर, आपकी आवाज सुनकर हम चौंक गए, बहुत दिन के बाद आए हो प्रोग्राम में, ये किसी और ने नहीं कहा था, आपने कह दिया तो ये बात भी पूरी हो गई। श्रीनगर लखीमपुर खीरी से, मुझे इस फिल्म से ये वाला गाना सुनवा दीजिए। आप तो इतने पुराने लिसनर हैं हमारे, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ये वाला प्रोग्राम जो है ना फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है साहब, इस वाले प्रोग्राम में हम चाह कर भी गाना आपके लिए नहीं प्ले कर सकते। अनुराधा लिखती है कि मैं गांव कट्टर गिलौला श्रावस्ती से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, दोनों दीदी ममता दीदी और साधना दीदी भी प्रोग्राम सुन रही हैं, पूरी फैमिली भी सुन रही है, मम्मी डैडी जूही शिवम भाई गाने का आनंद ले रहे हैं, तो गाने का आनंद यूं ही उठाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एक गाना उसके बाद समाचार और उस पार आपका फेवरेट प्रोग्राम रजनीगंधा और कहां बस यहां। ये 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

पॉप टाइम यहीं तक, लेकिन कहीं जाइएगा मत, हम वापस यहीं से मिलेंगे आपको एक समाचार और उस पार रजनीगंधा।

नमस्कार, रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स देशों के संस्कृति कार्य समूह की बैठक में शामिल होने वाराणसी पहुंचे प्रतिनिधियों का आज शाम नमोघाट पर भव्य स्वागत किया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने काशी के जनप्रतिनिधियों के साथ सभी विदेशी मेहमानों का अंगवस्त्र पहनाकर अभिनंदन किया। इसके बाद ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने गंगा नदी में क्रूज यात्रा का आनंद लिया। क्रूज से उन्होंने काशी के ऐतिहासिक घाटों, देव दीप्यमान वातावरण और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आज अपने सरकारी आवास पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आम का पौधा लगाकर सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कुकरैल में पौधारोपण कर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। वहां पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की स्थापना की और कपूर का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। सभी ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां दी। मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेशवासियों को 5 संकल्प भी दिलाए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अयोध्या में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माझा जमथरा में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रकृति संरक्षण के साथ साथ मातृत्व सम्मान का भी प्रतीक है। देवरिया में जिले के प्रभारी मंत्री व स्वतंत्र प्रभार परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने 5.27 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य का वृक्षारोपण कर शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये वही रात है जब शहर की सड़कों के किनारों पर बसे गुलमोहर और अमलतास अपनी उदास सी रंगीनियों से बजाफ्ता कोशिशें करते हैं कि जिंदगी को अतरंगी कर दें। कभी सड़क पर बेतहाशा दौड़ते ट्रैफिक से खुद को बचाने के लिए एक किनारे होकर अगर आप जहां तक नजरें जाती हैं वहां तक देखें तो बहुत मुमकिन है कि एक दो जुगनू दमकते हुए दिखाई दे जाएं। एक नजर उनकी ओर जाती है तो फिर वो ख्यालों की उंगलियां थाम कर जहन के उन हिस्सों को जगाने भीतर ही उतर पड़ते हैं जहां कई बरस पहले खुले आसमान के नीचे हमने कई ख्वाब पाले थे, मगर फिर क्या हुआ, फिर जिंदगी हो गई। इन्हीं सब के साथ एक और रात का सफर शुरू करते हैं, कुछ दिल फरेब बातों और दिलकश नगमों के साथ, मौसीकी की दुनिया का सबसे दिलकश प्रोग्राम रजनीगंधा लेकर हम हाजिर हैं। 10:05 और 7 सेकंड्स हो चुके हैं। 100.7 FM रेनबो पर यह है धड़कन लखनऊ की।

दिन से रात तक का सफर, कितने सारे उतार चढ़ाव से निकलकर यहां तक पहुंचा है। सवेरा हुआ तो अचानक से ठंडी ठंडी हवा ने अधखुली आंखों को फिर से मूंद दिया। सूरज जब जागकर सबको उठाना चाहता था, जब वो चाहता था कि रात के ख्वाब रात के वक्त के लिए मुंतकिल कर

दिए जाएं। तभी कुदरती हवाओं ने हुक्म सुनाया, अब्र भी पानी लेकर आया कि ख्वाबों की तामीर में अभी वक्त है, इंसान को जरा और वक्त गुजारने दो सरहाने पर घुले मीठे ख्वाबों में, जिंदगी की कुछ बेहतर तरतीब बिठाने में। लेकिन फिर वो नींद आई ही नहीं और ख्वाब मुंतकिल ही हो गए।

ख्वाब मुंतकिल कैसे ना हो, दिन भागता रहा और हम कोशिशें करते रहे कि किसी तरह, कभी दो जानू होकर कभी नाखूनों से पकड़कर दिन को बस थाम लिया जाए। दिल भर कोशिशों का जमा खलीते में कहीं छिपा लिया जाए, मगर दिन इतना आसान कहां होता है। और जब तक दिन के साथ की गई जद्दोजहद खत्म हुई, तब तक रात घिर चुकी थी। उम्मीदों की जगह नताइज ने, रिजल्ट्स ने कब्जा कर लिया था। जिंदगी अपनी चमक तलाशने के लिए उस जगह आ चुकी थी जहां उसके इंतजार में रजनीगंधा बाहें पसारे तैयार था। आज रजनीगंधा में मौजूए महफिल ख्वाब और इश्क, 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जब इश्क के ख्वाब देखे जाते हैं तो इन आंखों को मूंद पाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? अब जाकर किसे पूछें कि मोहब्बत की दिलकश रानाइयों में खोई हुई रात नींद को छिपाकर भला कहां रख देती है? किस किस जतन से तकिए को मोड़कर सोने लायक मौके बनाए जाएं? हर तरह का आराम ख्वाबगाह तक खींच कर ले आया जाए। गर्मियों की हड्डी पिघला देने वाली आग को हड्डियों को कड़का देने वाली शीत में बदल दिया जाए। लेकिन अगर नींद ही नदारत है तो बस सिरहाने लगे तकिए पर निशान बनते हैं। ये निशान पहले नींद गायब करते हैं और फिर ख्वाबों तक की भी कोई राह हमें नहीं बता पाते। और हम इश्क के मारे हुए हम ख्वाबों की ओर बस आंखियों के झरोखों से देखते रह जाते हैं।

जो ख्वाब बिल्कुल सच का सा मुअम्मा ओढ़ कर आते हैं, वो भी हमेशा याद नहीं रहते। शायद यही वजह है कि आंखें खुलने के बाद ख्वाबों का तذکرہ करते हुए अक्सर यह नुक्ता हम चूक जाते हैं कि सारे ख्वाब खूबसूरत नहीं होते। और न सारे ख्वाब सच होते हैं। वैसे ही जैसे हमारे सारे ख्याल खूबसूरत या सच नहीं होते। कई बार मन में चल रही उथल पुथल रात की तारीकी में और गहरी हो जाती है और इसे बेदारी में यानी जागी हुई अवस्था में मन का वहम मानने वाले दानिशमंद भी अक्सर ख्वाबों को सच मान बैठते हैं। और वो ख्वाब जिनमें डर घुला मिला हो वो तो फिर जिंदगी की राह में कई कदम आगे बढ़ के दिन को भी कैद करने में कामयाब हो जाता है। इससे बचने का तरीका यही है कि ख्वाब को बस ख्वाब मानकर भूल जाया जाए। पर इतना आसान है क्या, सोचिएगा। फिलवक्त ये प्यारा सा नगमा।

कई बार रात के ख्वाब जाने अनजाने न जाने कितनी सारी मुश्किलात में घेर लेते हैं हमें। जहन के चारों ओर एक मुहासरा सा डाल देते हैं उन अनचिन्ही अनजानी घटनाओं का, जो वैसे तो कुछ नहीं है लेकिन अगर सच हो जाए तो बस। किसी से बिछड़ने का डर है तो कहीं कुछ छूट जाने का भय, और दिन के वक्त ये न जाने डर कहां दिमाग में किस कोने में कौन सी लहरों पर झूम रहे होते हैं। काम में जूझते वक्त उनका होना न होना बहुत मानी भी नहीं रखता, क्योंकि दिन तो बस काम को मंजिल तक पहुंचाते पहुंचाते बीत जाता है। मगर फिर भी कभी कभी तो दिल में

कभी कभी आपको भी लगता होगा ना कि दिन किस कदर मसरूफ हो गया है, कि हर सांस एक दौड़ का हिस्सा है, इसमें दो सांसों के बीच भी कोई वक्फा नहीं है। और एक लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छा भी है। ऐसे में हर ख्याल पर गौर नहीं किया जाता, गौर करने के लिए वक्त ही कहाँ है। हर सेकंड किसी नई उम्मीद से वाबस्ता है, हर मिनट ऐसी 60 उम्मीदों की पोटली कांधों पर टांगे बस सरकता जा रहा है, किसी तरह घिसटता जा रहा है, किसी तरह मुस्तकबिल की ओर, जो न जाने है या है ही नहीं, मगर फिर भी ये दिल उस मुस्तकबिल के बगैर कहीं लगता ही नहीं।

रात घिरते ही सारे खौफो खदशात को किसी रकीब की तरह जहन तस्वीर में बदल देता है। जो ख्याल दिन में झटक कर उतार दिए जाते थे कंधे से, अब वो जिंदा जाविदा होकर कंधे से आंखों की ओर दौड़ लगाने लग पड़ते हैं। और आंखों के पीछे खिंचे पर्दे पर न जाने कैसे उनमें बस जान ही तो पड़ जाती है। ख्वाब जिनकी तरबियत हम अपने ख्यालों में आने वाली लगभग हर बात से करते हैं। अच्छा बुरा जो भी ख्याल हमारे जहन को कभी सजाता है तो कभी भरम में रखता है, वही तो ख्वाब के लिए कच्चे माल यानी ईंधन का काम करता है। ख्यालों की डोर जितनी सधी हुई लगती है उतनी ही बेसुधी से उड़ती है ख्वाबों की पतंग। वो जिन्हें हमने दिल में कहीं बिठा कर रखा है वो कब हमारे दुश्मन हो जाते हैं पता भी तो नहीं चलता।

नमस्कार, रात्रि के 11 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव रखा है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायो प्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्नाव में विकासखंड नवाबगंज के मखदूमपुर वन ब्लॉक में वृहद वृक्षारोपण अभियान के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कर हरित पर्यावरण का संदेश दिया। पीलीभीत जिले में पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव मिश्रा के निर्देशन में क्राइम ब्रांच ने फर्जी कागजात से GST बनाकर ठगी करने वाले 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर अन्य लोगों तक पहुंचने के प्रयास कर रही है। भारत एशिया कप U-18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के कागामिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ख्वाबों को पूरा करते करते अक्सर एक थकन तारी हो जाती है। इश्क में भटकते हुए मुसाफिर को भी तो कोई पनाह, कोई एक छांव चाहिए ही होती है। जहां खुद पर लगातार काबिज होते शुभहें न हो, जहां कमजोर करते हुए बजाहिर दोस्तों की ओर से आते फिक्रे न हो, जहां हिसाब मांगती उम्मीदें ना हो, जहां सवाल पूछती कोशिशें ना हो, जहां बस सुकून हो, जहां एक चुटकी दिलकशी हो, जहां एक पैकेट बस दिलजोई का सब सामा हो, जहां हर नगमा ख्वाब और इश्क का कुल जमा हो। कहां है वो जगह? यही है वो जगह है 100.7 FM रेनबो, वो जगह है धड़कन लखनऊ की, और वो समा है रजनीगंधा।

जब तक जिंदगी में इश्क की ओर भागना है, कोई मंजिल तमाम रास्ते पुकारती रहती है, एक लक्ष्य की ओर लगातार एक दौड़ चलती रहती है, तब तक एक उम्मीद बनी रहती है। और जब तक ये उम्मीद बनी रहती है, जिंदगी का तवाखुन संतुलन बना रहता है। मंजिल को दूर से देखते रहना, उसको पाने की चाहत में हर रोज़

हमारी दौड़ को ईंधन मिल ही जाता है। और तब तब भागते हुए कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मालूम है कि ये प्यार अमर है।

उसे प्यार सभी का अमर होता है। वो जो चला गया है उससे हमारी मोहब्बत कम थोड़ी ना हो जाती है। नुक्ता वहां आता है जहां लोग अमरत्व का मतलब सदाबहार होना समझ लेते हैं। बस यही वो गलती होती है जो अक्सर प्रेम के बदलते रूप को समझ नहीं पाती। यहां वो सारी मुश्किलात जन्म पाती हैं जिनके साथ होने वाली जंग के लिए हम जहनी तौर पर तैयार नहीं होते। ये प्रेम हमेशा किसी को देवता बनाकर नहीं किया जा सकता। कई बार हमें पहले खुद को इंसान समझना होगा और फिर उन्हें भी जिनसे हमें प्रेम है। कई बार उन्हें देवता बनाकर हम उनके साथ ही ज्यादती कर रहे होते हैं।

किसी इंसान को इतने ऊंचे पेडिस्टल पर बिठा देने के बाद अक्सर हम उसके इंसानी पहलू को अनदेखा करना चाहते हैं। हाँ, इश्क हमेशा रहेगा, हमेशा था भी, लेकिन इश्क हमेशा यकसा नहीं रहेगा, ये बदलेगा, इसमें ढेर सारे बदलाव आएंगे। कभी रोमानियत का मुलायमियत से भरा हुआ जुनून होगा, तो उसके साथ जोखिम पर जोखिम उठाने, चोट पर चोट खाते रहने की कुव्वत भी होगी। एक गैर मुमकिन लगती तलाश में जुटे रहने का दम होगा और एक बगैर किसी सबूत का भरोसा भी होगा। लेकिन इश्क हमेशा वैसे का वैसा नहीं होगा, इसका रूप बदलता रहेगा और उसके साथ जुड़ जाना समझौता भी है और समझदारी भी। आप क्या चुनेंगे?

जब जब ख्वाब टूटते हैं तो अक्सर हम ख्वाबों की रंगत के बारे में सोचने लग पड़ते हैं। जब भी किसी से सवाल पूछा तो जवाब आया कि ख्वाब तो ढेरों रंग खुद में समेटे रहते हैं, कुछ सतरंगी कुछ अतरंगी। लेकिन ख्वाबों को अगर समझने की कोशिश की जाए, कुछ कयास यहाँ वहाँ लगाए जाएं, तो अक्सर ये नतीजा मिलता है कि ख्वाब हमेशा खलाओं से पैदा होते हैं। एक खालीपन है ज़िंदगी में जिसे भरने के लिए इंसान ख्वाब देखता है। दिन में हम जिन ख्वाबों की ओर बेसाख्ता दौड़ पड़ते हैं वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात से जन्मे होते हैं, उनकी ओर भागना बंद नहीं किया जा सकता। हर कदम एक चाहे अनचाहे मंजिल की ओर बढ़ते जाने की गारंटी ही तो है, साथ ही हर कदम एक गारंटी है रहती दुनिया तक हमारे भागते रहने की। इस बीच कोई साथ आएगा और कोई साथ बस छूट जाएगा, उसके लिए हम सोगवार नहीं रह सकते। वो गम, वो खला, वो दर्द महसूस करना जरूरी है, मगर हर वक्त मुंह लपेट कर पड़े भी तो नहीं रहा जा सकता। अगर दिल खिलौना नहीं होता तो बार बार लोग तोड़ते क्यों भला।

इश्क एक कुदरती एहसास है और हर कुदरती शय की तरह ये तब तक ही इश्क रहता है जब तक इसमें बाहरी कोई मिलावट ना हो। इसमें कुछ मिला और तुरंत ही इसकी फितरत बदल जाती है, फिर इश्क इश्क नहीं रहता। कहने वाले कहेंगे कि इश्क अगर बदल जाता है तो इश्क किसी का भी इश्क हमेशा इश्क नहीं रहता है। अब कहने वालों को हम क्या कह सकते हैं? कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर कुछ इश्क में मिलावट है तो फिर वो इश्क नहीं है।

इश्क हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा शुरुआत में था। नहीं नहीं शिकायत नहीं है, सच। वैसे तो कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा शुरुआत में था, लेकिन इश्क 100% कुदरती है ना, तो वक्त और उम्र के साथ ढेर सारे बदलाव इसके गिर्द एक मुहासरा डाल ही देते हैं, इसे घेर ही लेते हैं। तो किस्सा कोता ये कि अगर इश्क है तो उसमें किसी से भी पहली सी मोहब्बत की मांग जायज नहीं है। हाँ, इसके बदलाव के हिसाब से किए गए आपके एडजस्टमेंट्स हमेशा आपको रूमानी बनाकर रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने ये दावा कर रखा है कि इश्क हमेशा वैसे का वैसा ही रहेगा, तो जरा सोच समझ कर ही कदम आगे बढ़ाइएगा। ये बदलेगा, ये उतना ही सच है जितना ये कि दिन बदल कर रात होती है और रात बदल करके दिन हो जाता है। मगर जिद की डोर थाम कर बैठे लोग अक्सर बदलती हुई गोधूली को देख नहीं पाते, भाप ही नहीं पाते, और फिर इल्जाम तराशी पर उतर आते हैं और सच के साथ होने के बावजूद हर बार हारता है इश्क।

रात और दिन की तब्दीलियां जहनो जिस्म को आराम देने के लिए जरूरी थीं। शायद कुदरत ने इन्हें इसीलिए गढ़ा भी होगा। लेकिन दो पांवों पर चलकर दुनिया नापने की कसम खाए हुए इंसान ने, जिसे सिर्फ और सिर्फ मंजिल को सर्फ करने से इश्क है, उसमें अगर कुछ टूट जाता है तो टूट जाए, कुछ छूट जाता है तो छूट जाए, उस इंसान ने आराम को सबसे पहले त्यागा। उसने वक्त को बांटने वाली इकाई के दोनों हिस्सों पर कब्जा कर लिया और फिर ख्वाबों का पीछा करने के लिए भागने लगा। लेकिन कुदरत से कोई जीता है भला? एक दिन है जिसमें ख्वाबों के पीछे भागते रहना है, एक रात है जिसमें ख्वाबों से भागते रहना है। जिंदगी के यही दो पहलू क्यों आए हमारे खाते में? और ये दोनों भी तो अपने अपने वक्त के बस गुलाम हैं। और शबो रोज इस जंग में पिसता रहता है हमारा मन। वो तलाशे तो क्या और कैसे जाने कि जो तलाश थी मिल गई है क्या? नहीं, क्योंकि मन के भी तो कई हिस्से हैं और हर हिस्से की तलाश उतनी ही फर्क है जितना रात तो दिन की अपनी रंगत में फर्क है। मन की जो तलाश पूरी हो जाती है वो अच्छे ख्वाबों की तरह, पल पल बदलते हुए इश्क की तरह, हमें हमारी जिंदगी की सारी वक्त समझाने के लिए मुकम्मल लगती है। उस पूरी तलाश से हम सीख सकते हैं वो जिम्मेदारियां जो जीते हुए लोगों के हिस्से में आती हैं। हम उस असर को संभाल सकते हैं जो किसी की जिंदगी में जीत की आमद के साथ शामिल हो जाता है। आखिर किसी भी दौड़ को जीतने वाले के हिस्से में बेशुमार उम्मीदें भी तो आती हैं। लेकिन हर किसी की दौड़ फीते को तोड़कर नहीं खत्म होती, कुछ में बस सांसें टूटती हैं, बदन टूटता है, टखने जवाब दे जाते हैं। ऐसे में मंजिल की आस में मिली नाव

अक्सर बैलेंस बस बिगाड़ देती है। लेकिन फिर रात में शिगाफ पड़ती है और उधर पूरब की ओर सूरज चमकने लगता है और जिंदगी को जीने के लिए ख्याल मजबूत होता है कि एक हार वो एक हो, 1,000 एक हो या 1,00,000 एक हो, एक कोई हार आखिरी नहीं हो सकती। बस खुद को आगे बढ़ाते रहना है, हर रात को खाने वाले सवेरे की तरह और सवेरे का नाश्ता करने वाली रात की तरह, बस लगातार आते रहना है।

एक के बाद एक जब जिंदगी में ख्वाब टूटते हैं, तभी तो मालूम होता है कि मन की हर तलाश मुकम्मल नहीं हो सकती। कुछ तजस्सुस, कुछ तलाशें, कुछ यूं होती हैं ताकि हम खसारे को, नुकसान को बर्दाश्त

करना सीख सकें, हम ये जान सकें कि हमारे साथ नामालूम कितने लोगों के हिस्से में बेपनाह दर्द आए हैं। अगर हम उन्हें जरा बेहतर ढंग से समझ सकें और जिंदगी के ख्वाब और इश्क का हर हिस्सा बांट सकें, तो शायद हर हजीमत, हर हार जो फतेह में दरीचा बनाकर न जाने कैसे बस चली ही आती है, उसका डर खत्म हो सकेगा। हम उसे वैसे ही फेस कर सकेंगे, उसके सामने वैसे ही बगैर घुटनों के कांपे खड़े हो सकेंगे जैसे हम जीत में खड़े होना चाहते हैं। लेकिन ये सब कहने का मतलब ये खतई नहीं है कि ये बहुत आसान है मुश्किल, पर फिर आसान जिंदगी चाहिए किसे।

हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ख्वाब और इश्क अपने सबसे चटकीले रंगों के साथ हाजिरी लगाएं और आपकी ज़िंदगी ख्वाबों की ओर से हमेशा उजास से भरी हुई और इश्क की ओर से हमेशा समृद्ध रहे। रजनीगंधा यहीं तक। शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब खैर।

नमस्कार, रात्रि के 12 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक खुले रहेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं जो 15 मार्च से आरंभ हुई हैं, केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। पद्म पुरस्कार, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृहद पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 के लोगो का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने हिस्सा लिया। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 2 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और यह सामान्य से लगभग 1 डिग्री अधिक था। सूर्योदय 5:12 पर और सूर्यास्त 6:58 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन प्रातः 7 प्रसारित किया जाएगा 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हो चुके हैं। हमारी सभा यहाँ समाप्त होती है। प्रातःकाल 5:50 पर पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद। से लगभग 1 डिग्री अधिक था। सूर्योदय 5:12 पर और सूर्यास्त 6:58 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन प्रातः 7 प्रसारित किया जाएगा 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हो चुके हैं। हमारी सभा यहां समाप्त होती है।